शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल के प्रोग्राम में दोस्तों मैं आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है सुरेश सुब्रमण्यम सर। बाकी जाहिर से बात है मैं सुरेश सुब्रमण्यम सर से ही प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन है वो।
2: नमस्कार समीर जी, आपको और आपके जो श्रोता हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं बंबई में हूं और आई एम 64। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। लगभग अभी क्वालिफाई किए हुए आज समझ लीजिए कितने 45 साल हो गए। 45 साल नहीं, सॉरी, अबाउट 42 इयर्स। और लगभग 33-34 साल तक मैं सीए का प्रैक्टिस करता रहा और लगभग समझ लीजिए अभी आज एक 10-11 साल पहले मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उतरा फॉर चिन्मया मिशन। तो चिन्मया विश्वविद्यापीठ करके एक यूनिवर्सिटी था जिसकी आइडिया से लेकर उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लाके उसमें जो इनिशियली जो लोग टॉप लीडरशिप बैठाना था वो सब करने के बाद में मैं वहां से निकल पड़ा। और पिछले अभी 8 सालों से मैं अपना एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ जिसका नाम है शुक्त स्वरा करके एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ। शुक्त इन मराठी मीन्स शुद्ध, स्वर जो हम बोलते हैं, जो गाते हैं। तो मेरा पूरा ध्येय यही है कि जो हम करते हैं, जो हम बात करते हैं, जो हम गाना गाते हैं वो शुद्ध हो। तो इस प्लान से ये एक प्लेटफॉर्म बनाया था शुक्त स्वरा। और ये एक मेरे एक पिताजी के नाम पे एक फाउंडेशन बनाई है मैंने, जो चैरिटेबल फाउंडेशन है उसी के अंदर है। जो आज पिछले 8 साल से मैं जो भी कर रहा हूँ सारा का सारा उसी फाउंडेशन में है। इट इज ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एट लार्ज। और अभी फिलहाल में अगर मैं क्या कर रहा हूँ बताऊं तो मैं लोगों को गाना सिखाता हूँ एक इसी प्लेटफॉर्म में। मैं लगभग अभी तक 250-300 स्टूडेंट्स मुझसे सीख चुके हैं और रेगुलर मेरे क्लासेस चलते हैं हफ्ते में। मंथली एक बार तो स्टूडेंट्स का एक शो होता है और मतलब समझ लीजिए साल में 10-12 शोज तो हमारे होते हैं, म्यूजिक शोज होते हैं। और उसके अलावा मैं कॉलेजेस में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स से बच्चों को, मतलब बच्चे मतलब 18 साल से 20 साल के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाउ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कैन इम्पैक्ट देयर लाइफ, अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए कैसे वो काम आएगा, उसके लिए एक कोर्स चलाता हूँ विच इज कॉल्ड इंडियन इथोस इन प्रैक्टिस। और इसके अलावा एडल्ट्स के लिए मैं रेगुलरली टॉक्स करता हूँ। हर महीने एक टॉक सेशन मेरा चलता है विच इज कॉल्ड वॉक द टॉक सीरीज। और इसमें जैसे कोई भी टॉपिक हो जिसमें हमें

0: रुचि हो या फिर किसी में किसी की शंका हो उसको लेके चलते हैं, जैसे डर है या फिर गुस्सा है, एंगर है। अभी हाल फिलहाल में मन की तीन क्वालिटीज उसको लेके एक टॉक लिया था। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में जो जीवन में हमें काम आएगा, जो हमसे जीवन साक्षात कर जीवन को अच्छा हम कर सकते हैं उसके लिए कुछ टॉक्स है वो करता हूँ। सो दिस इज माई लाइफ टूडे इन मुंबई।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा साधुवाद, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया है आपका सुरेश सर। अभी तक आपने जो कुछ भी बताया ना, मुझे तो उसमें सारा अध्यात्म, सारी स्पिरिचुअलिटी सुनाई दे रही है, आपकी कसम। देखिए ना, आपने म्यूजिक की बात करी, आपने उस यूनिवर्सिटी की बात करी या शायद उस कॉलेज की बात करी जहां पर आप इंडियन सिस्टम्स पढ़ाने के लिए उसको पूरा एस्टैब्लिश किया आपने। फिर आपने बात करी उस संस्था की जहां पर आप संगीत सिखा रहे हैं जो कि शुद्ध स्वर है, बिल्कुल शुद्ध स्वर। अब हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते भी हैं कि म्यूजिक या संगीत अपने आप में ही एक मेडिटेशन है, आध्यात्म है, क्योंकि जब व्यक्ति संगीत से जुड़ जाता है तो फिर वो गलत सोच ही नहीं पाता ना। तो जब गलत नहीं सोच पाता तो आदमी शुद्ध हो गया ना, व्यक्ति शुद्ध हो गया।
0: सही है।
1: वही तो स्पिरिचुअलिटी है, हम उसी के बारे में तो आज बात करने वाले थे। तो आप ही ने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए कि मैं उन्हीं के ऊपर आपसे घंटों बात करता रह सकता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने अभी कहा कि आप कुछ टॉक्स देते हैं इंडियन ईथोस के ऊपर, एम आई राइट सर, है ना?
0: यस यस यस, सही है।
1: उसमें जो आपने दो तीन सब्जेक्ट्स के नाम लिए, मैं पर्सनली आपसे मतलब रादर मैं ये टॉक्स जरूर अटेंड करना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। क्योंकि अगर मैं इस वक्त पूरी जो हमारे सुनने वाली जनता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर मेरे मन में कोई एक प्रॉब्लम है तो हो सकता है हमारे सुनने वालों के मन में भी हो, तो वो चीज अगर हम यहां बात कर लेंगे तो उनके लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी, मेरे लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी।
0: सही बात है, सही बात है, सही बात।
1: चलिए अभी तो हम लोग टच करते हैं अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को। तो जितना आपने बताया सुरेश सर, उसी के हिसाब से, आपके हिसाब से अध्यात्म की परिभाषा क्या है?
0: तो आप इस वाक्य को ही ले लीजिए, अध्यात्म, इसको अगर दो भाग करेंगे, एक तो अध्या और दूसरा आत्मा। जो अध्या उसका मतलब होता है फर्स्ट, आत्मा जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपनी अंतरात्मा है, जिसको अंतरात्मा कहते हैं हिंदी में, साधारण लैंग्वेज में हम कहते हैं अंतरात्मा कहते हैं। तो दी इनर सेल्फ, जिसकी वजह से मैं हर चीज अपने जीवन में महसूस कर पाता हूं। यदि वो जीवन का जो इनर सेल्फ, वो जो इनर सेल्फ है अगर नहीं होता तो मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता हूं। मेरे हाथ हैं लेकिन मैं किसी को छू नहीं सकता हूँ, मेरी जीवा है लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ, मेरा नाक है लेकिन मैं कुछ सूंघ नहीं सकता हूँ। मतलब द कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ विच वी आर अलाइव इज माई इनर सेल्फ, ये हुआ आत्मा। और जो अध्या फाउंडेशन फर्स्ट, उसको एक्चुअली कहा जाता है फर्स्ट है, जो फर्स्ट इज ऑलवेज द फाउंडेशन, तो उसके बगैर मैं हूं ही नहीं। तो जिसके बगैर मैं नहीं हूं, मैं रह के भी मैं नहीं हूं, दैट इज अध्यात्म। तो उसका उसकी जानकारी यदि ना हो तो जीवन जी के क्या लाभ। तो उसका जानना जरूरी है कि मैं क्या हूं, हु एम आई, एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं, अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हो, मैं कहूंगा मैं सुरेश सुब्रमण्यन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये फलाना करता हूं, डिमका, ये मेरा विजिटिंग कार्ड हुआ। लेकिन ये मैं नहीं हूं, मैं इसके अंदर हूं। उसको जानने के लिए अगर मैंने चेष्टा ही नहीं की तो इस जीवन का क्या लाभ। तो दिस इज अध्यात्म मेरे हिसाब से।
1: बहुत बहुत सुंदर सुरेश सर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरे मन के ही सारी बातें कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप सिर्फ मेरे लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी कसम। द वेरी फर्स्ट थिंग, जितना मैं समझा था, जितने भी मैंने लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को सुना, जैसे मीना मैम ऑफकोर्स, संजीवनी जी हैं, बहुत सारे लोगों को सुना मैंने, तो टाइम एंड अगेन अध्यात्म की जो डेफिनेशन निकल निकल के आ रही थी वो यही थी कि अपनी आत्मा का अध्ययन। वी नीड टू यू नो लर्न अबाउट अवर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद बात करें ना। तो वही चीज आपने बहुत खूबसूरती से कुछ अलग शब्दों में हमें बताई, लेकिन मुद्दा यही है कि हम अपने आप को तो पहचाने। सेकंड, बहुत बहुत ही मजेदार बात कही आपको आपने, जिस वजह से मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूं एंड आई एम हाईली हाईली इंप्रेस्ड। सर, काफी समय पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, द आई फैक्टर, वैन मूडी एक प्रीचर है, उन्होंने ये लिखी थी द आई फैक्टर। मैं इस बुक के टाइटल से अट्रैक्ट हो गया था। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड ये आई फैक्टर क्या चीज है, और जाहिर सी बात है आपने जो बात कही ना प्रिसाइसली बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड उसमें ये चीज लिखी हुई थी, और इसके बाद मैंने उसको अपनाया। सालों साल गुजर चुके हैं, मैं लोगों को छेड़ने के लिए पूछता भी हूं, लेकिन आज आप में मुझे पहला व्यक्ति मिला है जिसको एक्चुअली उसका मतलब पता है। वो ये कि जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो, तो आप बोलते हो कि आप सुरेश सुब्रमण्यम साहब हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं किसी से भी पूछता हूं कि आप कौन हो, तो वो कहते हैं मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आर्मी पर्सनल हूं, मैं पुलिस वाला हूं। मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई साहब ये वो काम है जो आप करते हो, दिस इज आपने इसको बहुत खूबसूरती से कहा कि दैट इज माई विजिटिंग कार्ड, ये वो काम है जो आप करते हो, एक्चुअली आप कौन हो?
0: करेक्ट।
1: तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने काम को ही अपना समझ बैठते हैं।
0: सही बात है, सही बात है। लोगों में यही यही एक गलत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा, तो मैं कौन हूं, अभी इसमें दो फ्रेजेस के साथ में, इंग्लिश की फ्रेजेस के साथ में आपको इसकी इसका एक कुछ रिलेट कर पाऊंगा मैं। इफ यू से आई थिंक सो आई एम, आई थिंक सो आई एम, अभी इसको रिवर्स कीजिए, आई एम सो आई थिंक।
1: ओके,
0: थिंकिंग इज एन एबिलिटी, मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, मतलब वैसे प्राणी है और उसमें बुद्धि है, तो बुद्धि के हिसाब से वो सोच सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये सोच सकता है। लेकिन मैन इस वो है, तो आई एम सो आई थिंक, मैं हूं तभी तो मैं सोच पाता हूं। क्या मैं सोचने की वजह से मैं हूं? अक्सर लोगों में यही धारणा है, ये सोचते हैं, जब भी आप किसी को पूछते हैं कि आप कौन हो, तो ये सोचते हैं कि मैं कौन हूं। अच्छा, मैं सोइंसो का बेटा हूं, अच्छा मैं सोइंसो का भाई हूं, अच्छा मैं सोइंसो काम करता हूं, अच्छा मैं सोइंसो मैंने काम पढ़ाई की है। दे आर ऑल यूर एक्सटेंशंस, दे आर नॉट यू।
1: अमेजिंग, ये बिल्कुल ही एक नई बात आपने बताई। सर देखो दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिएगा जो सुब्रमण्यम सार साहब ने बताई है।
0: यू डोंट, आप मुझे आराम से सुरेश जी कहिए, क्योंकि सुब्रमण्यम इज माई फादर्स नेम।
1: ओह ओके, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू योर फादर ऑफ कोर्स सुरेश जी,
0: एब्सोल्युटली।
1: हम सोचते नहीं है कि हम क्या हैं, हम हैं इसलिए हम सोचते हैं। वाह क्या बात कही, बहुत खूब। चलिए सुरेश जी, बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुन के अब मैं वापस आता हूं आपके पास।
0: जरूर जरूर जरूर, मैं भी एंजॉय करूंगा।
1: तो दोस्तों, हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। सुरेश जी, जैसे आपने बताया कि आपने दो संस्थाओं का स्थापना की, एक तो वो वाली जिसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें आप इंडियन सिस्टम्स वगैरह को पढ़ाने की आपने बात की, दूसरे आपने बात करी कि शुद्ध संगीत का आपने जो विद्यालय या एकेडमी ओपन की। तो जाहिर से बात, आप शुद्ध संगीत की बात कर रहे हैं, प्योर चीज की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें ना सुरेश जी आज के जमाने में हुई हैं, टुडेज वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न एरा। जाहिर सी बात है, कोई एक एरा आया था जब एग्रीकल्चर था, फिर कोई एक एरा आया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन था, फिर आज का एरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो मुझे उससे रिलेट करके बताइए सुरेश जी, सही रहेगा ना, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा गुडी गुडी और थियोरेटिकल बातें ना करके बिल्कुल प्रैक्टिकल आज के जमाने से जुड़ी हुई बातें करें,
1: बिल्कुल तो सही बात,
0: ज्यादा रेलिवेंट रहेंगी कि आज का जमाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आज का जमाना है यूथ का, वो हमेशा ही होता है। आज का यूथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्लीटली मर्ज्ड है, डिप्ड है। मोरओवर मुझे ऐसा लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज गॉन इनटू देयर डीएनएस। तो आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, शुद्ध स्वर जो आपने बोला ना, वो सब हम आज के यूथ में कैसे इनकॉर्पोरेट करें? देखिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ये कहें कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तो पेश कर दिया, ले लो, नो, वी नीड टू टेल देम इट इज गुड फॉर यू। हाउ, कैसे करें सुरेश जी?
1: ये अभी आपको जो बताऊंगा ये पूरा मेरे अनुभव से बताऊं।
0: ऑफ कोर्स,
1: जैसे मैंने कहा कि मैं एक कॉलेज में एक कोर्स चलाता हूँ विच इज कॉल्ड इंडियन इथोस इन प्रैक्टिस। और इसके जो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने अटेंड किया है वो सारे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के हैं, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के हैं, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के हैं, या मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है। मतलब समझ लीजिए जो एज ग्रुप है उनका 18 से लेके 20 21 तक होगा, उससे ज्यादा नहीं। अभी आज के तारीख में अगर हम यूथ की बात करें तो बाय द एज ऑफ 16 मोस्ट यंगस्टर्स हैव अ विंडो टू एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हो उसका सबसे बड़ा क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट है वो मोबाइल फोन।
0: करेक्ट,
1: क्योंकि वो उसके बगैर कोई भी यंगस्टर तो जीता नहीं है, क्योंकि दैट इज लाइक देयर विंडो टू द लाइफ, टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर फैमिली, टू देयर म्यूजिक, टू देयर नॉलेज, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट दे कनेक्ट विद इज थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट। आप राह चलते यदि देखोगे ज्यादातर आपको यंगस्टर्स ईयरफोन पहने हुए मोबाइल को नीचे देखते हुए रस्ते में बाई चांस नीचे कोई चीज पैरों के नीचे आ गया तो भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका पूरा अटेंशन मोबाइल में रहता है। और मैं जब वॉकिंग करता हूं तभी भी देखता हूं सवेरे मेरे लोकेलिटी में कि वो दे कैनॉट वॉक स्ट्रेट बिकॉज देयर फोकस इज ऑन व्हाट इज इन देयर हैंड। ये एडल्ट्स का भी है, मैं बच्चों को सिर्फ नहीं बोल रहा, एडल्ट्स का भी है। तो दैट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अभी जब भी मैं इन बच्चों को, लगभग 2,500 स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूं अभी तक, तो ये कोर्स जो चलाता हूं इसमें उनको परिचय देता हूं कि हमारी परंपरा कहां से शुरू हुई है, जो 5,000 6,000 7,000 साल पहले जो हमारी परंपरा है वो क्या है। और लेकिन वो जैसे आप कह रहे हो कि थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, एंशियंट नॉलेज ऐसे नहीं, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। जैसे यदि आप कहोगे कि भगवत गीता क्या है, ज्यादातर लोग उसको एक भक्ति का किताब मानते हैं, अध्यात्म का किताब मानते हैं, और उसको लाल कपड़े में लपेट के वो अपने जो मंदिर है वहां पे रख देते हैं। उसको खोल के यदि पढ़ें तो समझ में आएगा कि उसका एक एक शब्द, उसमें एक एक जो अनुभव दिया गया है, वो हर चीज हमारे आज की जिंदगी में बहुत रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स की ही बात करूंगा, सबसे ज्यादा डर स्टूडेंट्स को क्या लगता है? फेलियर का। तो फेलियर के डर से क्या करते हैं, जो प्रिपरेशन है ना वो प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि अंदर डर बैठ गया है। अंदर यदि डर बैठ गया है तो प्रिपरेशन के वक्त यही सोचेंगे कि ये गलत आएगा, ये चैप्टर फलाना सही, मुझे समझ में नहीं आता है, ये सब्जेक्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरा दोस्त जो है मुझसे बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता हूं। ये सारी चीजें माइंड को मडल कर देती हैं। तो जो सफाई होनी चाहिए मन में जब अभ्यास करते हैं वो सफाई नहीं हो पाती। और जब सफाई नहीं होगा प्रिपरेशन के वक्त, तो ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन होगा वो कॉम्प्रोमाइज होगा, ऑब्वियसली जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा, होने की संभावना है। लेकिन यदि अगर वो समझें कि जो तीव्रता उनको उस प्रिपरेशन में लानी चाहिए, उस वक्त मन एकदम साफ रखना चाहिए, उसके लिए क्या क्या हमारा प्रिपरेशन, मतलब माइंड को कैसे प्रिपेयर किया जाए, वो यदि वो समझ गए तो उस प्रिपरेशन में उनको सफाई मिलेगी। प्रिपरेशन सफाई साफ होगा तो अपने आप अपना अटेम्प्ट जो है, एफर्ट है, वो साफ होगा। एफर्ट यदि साफ होगा तो सक्सेस भी आएगा। जाहिर सी बात है, समबडी विल बी लिटिल मोर टैलेंटेड, लिटिल मोर कैपेबल देन समबडी एल्स। तो जो मार्क आएंगे उसमें ऊपर नीचे होगा, लेकिन सक्सेस तो आएगा ना। और टू दैट आइडिया ऑफ व्हाट आर द पाथ टू सक्सेस यू विल अंडरस्टैंड। सिमिलरली व्हेन यू फेल, अभी बचपन में हम लोग बच्चों को साइकिल सिखाते थे, तो साइकिल सिखाते वक्त क्या करते थे, पिताजी या माँ पीछे साइकिल की सीट को पकड़ के उसको बोलते थे पेडल करो पेडल करो। और जब पिताजी या माँ उसको साइकिल की सीट को छोड़ देते थे, वो बैलेंस डगमगा जाता था, बच्चा गिर जाता था, बच्चा रोएगा, लेकिन माँ बाप बोलते हैं दोबारा बैठो दोबारा चलाओ। तो वो चलाते चलाते बच्चा सीख जाता है कि कैसे साइकिल करना है। ये एक प्रमाण अगर हम जिंदगी में लाएंगे कि फेलियर इज डेफिनेटली पॉसिबल इन लाइफ, बट फेलियर के बाद में मेरा एफर्ट मैटर करता है कि मैं कैसे सक्सीड करूं। तो मेरे एफर्ट पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे सक्सीड करूंगा। ये जानकारी, ये बुद्धि, ये विवेक

0: एक जो अगर मन में आ जाता है, इसके लिए अध्यात्म बहुत काम की चीज है। अध्यात्म समझ में आएगा तो अपने आप ये इसका हम लोग उपयोग कर पाएंगे।
1: यू राइट, वेरी ट्रू। यहां पर वी आर डिस्कसिंग सुरेश सर, तो एक जो बात मेरे दिमाग में आ रही है, आपने गीता का जिक्र किया और आपने वहां पर बड़ी खूबसूरती से ये बात कही कि लोग अगर लोग या कोई बच्चे भी अगर उसको पढ़े तो एक एक शब्द उसका जो लिखा हुआ है उसका रेलेवेंस आज के टाइम पर भी है। और उसके बाद आपने बतलाया कि बच्चे डर जाते हैं, इस वजह से वो प्योर हार्ट से या कंप्लीटली पढ़ नहीं पाते और वहां पर गड़बड़ होती है। तो जो चीज मुझे सुनाई दी ना, वो गीता का जो सार है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो जाहिर सी बात है मुझे ऐसा लगा, इफ एट ऑल आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, मुझे ऐसा लगा आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई बच्चा पढ़े लेकिन डरे नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा। एम आई राइट सर?
0: टू सर, बिल्कुल सही बात है।
1: बच्चा पढ़े, खुल के पढ़े, लेकिन ये बात दिमाग में ना रखे कि क्या रिजल्ट आने वाला है, जस्ट उसको पढ़े। लेकिन होता क्या है ना सर, प्रैक्टिकल लाइफ में इस बच्चे को पढ़ाई करके अपना करियर भी बनाना है, अपना परिवार भी चलाना है, दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। उसे साधु संत नहीं बनना पढ़ाई लिखाई करके।
0: सही बात है, सही बात है।
1: अब उस काम के लिए, उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस पर्पस के लिए उसको उस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे कि रिजल्ट उसके अच्छे आए, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड रिजल्ट मांगता है। दर्द की बात है, थोड़ा सा ये आयरनी है कि हमारी जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है ना वो मार्क्स को अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है, तो इसलिए माँ बाप भी अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बच्चा भी प्रेशराइज्ड रहता है कि साहब मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अब पढ़ाई ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं, तो डर पैदा हो जाता है। तो सर इस चीज को एलिमिनेट करना या इस चीज को उस बच्चे को समझाना कि बच्चे डरो मत, निकाल दो डर को, तुम अच्छी तरीके से पढ़ो, उससे जो भी रिजल्ट आएगा उससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, तुम्हारा परिवार चले। इतनी छोटी उम्र के बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर, नहीं आता। मुझे आपको आ रहा है आज, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी दुनिया देख ली। माई पॉइंट वॉज, इस ही चीज को आपने बताया, आपके इतने स्टूडेंट्स आपने इंडियन इथोस के ऊपर पढ़ाए, हाउ फार एक्चुअली, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये सक्सेसफुल रहा?
0: सक्सेसफुल तो बहुत रहा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स को अटेंड करने के बाद में उनको वो रिपोर्ट किसको देते हैं, मैं तो विजिटिंग फैकल्टी हूँ, मैं तो उनका परमानेंट लेक्चरर तो हूँ नहीं, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट इतना ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स को अटेंड करते हैं उनका फीडबैक जाएगा उनके जो टीचर हैं क्लास में, उनका जो कोऑर्डिनेटर है, टीचर दी प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर या फिर उनके प्रिंसिपल, उनसे मुझे फीडबैक आता है कि बच्चों को इंडियन नॉलेज सीखने के लिए, उनके पास इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का एक पूरा कोर्स है जो कोई और सिखाता है, क्योंकि उनका देयर इज अ यूनिवर्सिटीज बिल्ट करिकुलम, तो वो चलाना है उनको, ये जैसे वेद क्या है, ये जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, हर चीज के बारे में इंडियन नॉलेज के लिए एक करिकुलम है, वो सिखाते हैं। तो प्रिंसिपल जो मुझे कहते हैं उसमें से मुझे समझ में आता है कि उसमें उतना उनको इम्पैक्ट नहीं होता जितना आपके कैप्सूल्स में होता है, जो कैप्सूल्स में आप उनको सिखाते हो कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, वो जिया जाना चाहिए थियरी में नहीं है, वो जिया जाना चाहिए अपने फेलियर से, अपने सक्सेस से, अपने परिश्रम से, हम जो सीखते हैं उस सब को एक एक स्टेप करके समझना है, क्योंकि यू कैनॉट क्लाइंब, जैसे अभी स्नेकर लैडर है हमारे यहाँ, हम बचपन में खेलते थे, वो भी एग्जाम्पल उनको देता था। स्नेकर लैडर में कैसा है, आप कॉइन डालोगे लैडर आ गया, ऊपर चले गए, कॉइन डालोगे आगे स्नेक आ गया, नीचे उतरोगे, लाइफ इज लाइक दैट। तो वो करते करते करते करते आप जब भी 100 में पहुंचोगे टॉप में, दैट इज व्हेन यू आर सक्सेसफुल। ये गीता का सारांश भी यही है कि तुम केवल और केवल ये समझो कि जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा काम है, तो आज की तारीख में बच्चों का काम क्या है,
1: पढ़ाई करना,
0: उनका जैसे आपके पढ़ाई करना, क्यों करना पढ़ाई, सिर्फ इसलिए करना कि आपको ऐसे काम में लगना है जिससे आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी सुखी बना सको। तो ये करने के लिए आपको अभी पढ़ाई करना, हम लोग कह रहे हैं कोई बच्चा क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। अभी जैसे सचिन तेंदुलकर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन स्कूल, ही वाज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। तो पढ़ाई वो करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, पढ़ाई वो करो जिसमें तुमको लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, तो उस फील्ड में अपने आप को झोंक दो। जब तक तपोगे नहीं तब तक बाहर से निखर के सोना बन के आओगे नहीं,
1: right.
0: तो तपना जरूरी है, तपने के लिए आप तैयार रहना चाहिए। अभी आपको दो फ्रेजेस हिंदी में बताता हूं, ये समझ लीजिए, इसमें अंतर भी मैं बच्चों को भी बोलता हूं ये चीज। एक है अपना जो मन है उसको खालिस्तान से खुला स्थान बनाइए।
1: वाह,
0: अभी खाली है क्योंकि उसमें जो ज्ञान चाहिए वो नहीं है, वो खाली है, उसको खुला स्थान बनाओ, मेक इट ओपन। वंस इट इज ओपन यू विल स्टार्ट रिसीविंग थिंग्स एंड देन यू विल नो उसमें सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे लिए फायदेमंद क्या है, मेरा क्या नुकसान करेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एक चीज है। और दूसरा है फ्रॉम उपाध्याय टू स्वाध्याय। उपाध्याय जो अपने को अपने शिक्षक सिखाते हैं उनके साथ में बैठ के जो हम सीखते हैं,
1: करेक्ट।
0: स्वाध्याय जो हम सीखते हैं उसको अपने जीवन में कैसे काम में लाते हैं। तो ये बच्चों को सिखाना जरूरी है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई थियरी नहीं है, इसमें कोई हाई फंडा फिलोसफी नहीं है, ये आप लेके आओ अपने आप में फर्क पता चल जाता है छोटी चीज में। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको बोलता हूँ कि टीम में तुमको एक प्रोजेक्ट दिया है, टीम प्रोजेक्ट दिया है, जाहिर सी बात है टीम प्रोजेक्ट में कोई ज्यादा काम करेगा कोई कम काम करेगा, क्योंकि क्षमता उनकी अपनी अपनी अलग है, लेकिन टीम प्रोजेक्ट है। जब ये आप टीम का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करोगे तो जो सबसे वीक है या फिर वीकर में से जो एक दो जन को चुनो जो उसको प्रेजेंट करेंगे, दैट मेक्स द प्रोजेक्ट एज अ टीम प्रोजेक्ट। इसका मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कलाम साहब का। कलाम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था जब इंडिया का जो पहला स्पेस लॉन्च व्हीकल निकला था, सो एट दैट टाइम दी लॉन्च ओवर श्रीहरिकोटा द लॉन्च कोलैप्स्ड। ये लोग सब साथ में थे, कलाम साहब बॉस वॉज विक्रम साराभाई, सतीश धवन, सॉरी सतीश धवन वॉज देर एंड हिज बॉस वॉज विक्रम साराभाई। सो धवन टोल्ड कलाम साहब दैट यू गो, आई मीन धवन वेंट टू द प्रेस इंटरव्यू, सेड वी हैव फेल्ड बट वी हैव नॉट लॉस्ट होप। फिर दोबारा उन्होंने लॉन्च किया व्हीकल को, जब भी सक्सेस हुआ ही टोल्ड कलाम, ही वॉज जूनियर, यू गो एंड टेल द प्रेस दैट वी सक्सेडेड। ये अंतर होता है टीम वर्क का। तो ये जब स्टूडेंट समझ जाते हैं, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ साथ में रहना, साथ में एक दूसरे से जो जो सीख मिलती है उसको अपने जीवन में, बेसिकली हाउ इट कैन मेक अ डिफरेंस टू माय लाइफ, दैट्स इट।
1: राइट, अमेजिंग, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो दोस्तों प्रैक्टिकलिटी की तरफ ही चलिए। चलिए सर, यहां पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर एक बहुत प्यारा सा भजन हम सुन लेते हैं, एंड देन वी विल कम बैक फॉर डिस्कशन।
0: श्योर श्योर।
1: तो दोस्तों हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया।

0: बहुत खूब सुरेश सर, अब बिल्कुल दूसरी प्रैक्टिकल बात करता हूं। हम लोग यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, तो मुझे कुछ मेथड्स बताइए कि कोई भी बंदा, चाहे मैं हूं चाहे कोई यूथ हो, घर पर कहीं पर भी, ट्रेन में कहीं पर भी, उन मेथड्स को यूज कर ले और इन सब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़े। तो सबसे पहला मेथड जिसके बारे में मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं वो है मेडिटेशन। सो हाउ शुड वी डू इट? देखिए, मेडिटेशन के ऊपर हजारों किताबें अवेलेबल हैं, हर गुरु अपने अपने तरीके से मेडिटेशन के बारे में बताता है। मेरा मानना भी यह है पर्सनली कि मेरा अपना मेथड है मेडिटेशन का, किसी और का दूसरा होगा, मेरी माँ का दूसरा है, मेरी वाइफ का दूसरा है, मेरे बेटे का मे भी कुछ अलग होगा, लेकिन फिर भी मेडिटेशन का, देखिए इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मेरे मेथड से कुछ लोग कन्विंस ना हो, लेकिन हो सकता है आपके मेथड से कन्विंस हो। तो कम से कम अपन हम अपना मेथड, जैसे आपने बताया ना, कैप्सूल की तरह बताएं तो सही लोगों को। सो टेल मी अ मेथड विच शुड बी एक्सट्रीमली सिंपल और आज की जनरेशन उसको कर सके, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग बेटर। मेडिटेशन का मेथड बताइए सर।
1: देखिए, अलग अलग किताबों में, अलग अलग ट्रेडिशंस में, अलग अलग तरीके से मेडिटेशन को बताया गया, और अक्सर जो मिसकंसेप्शन है कि मेडिटेशन इज समथिंग टू डू विद प्रेयर, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मेडिटेशन इज ओनली समथिंग टू ट्रैवल इनवर्ड्स, इट्स अ रोड टू ट्रैवल विद इन यू। अभी वो रोड अलग हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बता रहे थे योर सन मे बी हैप्पी टू लिसन टू सम म्यूजिक इन विच देर इज मेडिटेटिव म्यूजिक,
0: करेक्ट।
1: फॉर एग्जांपल आई डू सम सेशंस ऑन मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, तो सन मे बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, माय वाइफ मे बी इंटरेस्टेड इन डूइंग मेडिटेशन थ्रू व्हाट इज टॉट इन अवर योगा क्लास, आई मे बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो मेरे जीवन में जो मेडिटेशन का जो मुझे क्या बोलते हैं जो इट मेड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी वॉज विपश्यना। विपश्यना इज अ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड इसमें सिंपल सी बात है कि जो चीज जैसा है वैसा उसको स्वीकार करने का तरीका है,
0: राइट सर।
1: बट हाउ डू यू डू इट ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल? देखिए, व्हेन वी आर ऑल अलाइव, हम जिंदा है, तो हम जिंदा है तो हमारे साथ एक चीज है जो हमारे साथ जिंदगी भर चलेगा और वो है हमारी सांस।
0: ओके,
1: सांस रुक गया तो जीवन खत्म। सो फ्रॉम द टाइम आई एम बॉर्न टिल द टाइम आई डाई देर इज ओनली वन थिंग विच इज परमानेंट विथ मी एंड दैट इज माई ब्रेथ। अगर वो ही नहीं

0: है तो मैं नहीं हूं, तो उसको ऑब्जर्व करना, शुरुआत वहां से होती है, विपश्यना में शुरुआत वहां से होती है। तो मैं अभी स्कूल में, अभी जैसे कॉलेज में लेक्चर्स भी लेता हूं, तो उनको मैं एक छोटा सा एक क्या इंट्रो इसमें देता हूं कि उनको 15 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस का अनुभव लेने को कह रहा हूं। अनुभव, डोंट ब्रीद, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अभी ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश में ही हम समझते हैं कि मन में इतने सारे विचार आते हैं, इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स सो मेनी थॉट्स कम टू अवर माइंड, दिस इज अ नेचर ऑफ अवर ह्यूमन माइंड। तो उसकी उसका जो अटेंशन है हमको ट्रांसफर करना है, कहां पर? सिर्फ अपनी सांस में। सांस में कहां पर? जहां से सांस बाहर निकलती है और अंदर जाती है, विच इज अबव द अपर लिप, अपर लिप और नोस्ट्रिल के बीच वाला जो हिस्सा है वहां पे ही सांस बाहर आती है, वहीं से अंदर जाता ही है। सिर्फ और सिर्फ वहां उसको ऑब्जर्व करो, एंड दैट इज अ लेसन, बिकॉज हर बार मन भटकता है, मन हमेशा भटकता है, मन का नेचर ऐसे ही है ना, क्योंकि इट कैन नेवर स्थिर तो रहता ही नहीं है। कोई विचार आएगा, तो विचार आएगा तो क्या करोगे? स्माइल एट यूर सेल्फ, फूलिश फेलो, यू आर मेंट टू फोकस ऑन दी ब्रेथ। तो वो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस होता है उसकी तीव्रता बढ़ती है, जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती है, मैं सिर्फ उसको विपश्यना को कैप्सूल में बताता हूं, जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती है हम उसका जो ब्रेथ का जो अटेंशन है वहां से लेके वी टेक इनसाइड अवर नॉस्ट्रिल्स एंड ग्रेजुअली वी ट्रांसफर दैट अटेंशन टू ऑल ओवर अवर बॉडी, एंड व्हेन वी डू दैट साइंटिफिकली वी अंडरस्टैंड, जो हम साइंस में सीखे थे फ्रॉम स्कूल, कि द बॉडी इज 67% वाटर एंड ओनली 33% मास। जो फ्लूइड्स है अंदर, वो अंदर एक तैर रहे हैं, वो दे आर मेकिंग डिफरेंट सेंसेशंस इन अवर बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस, नथिंग इज परमानेंट। वो कहीं दर्द होता है, कहीं एक खुशी की अनुभूति होती है, कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ग्रॉस है, बहुत भारी है, ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस विल कम, देन यू अंडरस्टैंड दैट नन ऑफ दीस आर परमानेंट, द ओनली परमानेंट थिंग विथ यू इज योर ब्रेथ, एंड दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि यार जब मैं हूं तभी तो सब कुछ कर सकता हूं, तो मुझे जानना, मतलब बेसिकली इट इज अ वे टू ट्रैवल इनसाइड, मुझे जानना जरूरी है कि बाकी सारे इम्परमानेंट है, एवरीथिंग एल्स इज इम्परमानेंट। तो व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट कोई फेलियर है, दैट इज इम्परमानेंट, कोई किसी ने मुझ पर गुस्सा कर दिया, दैट इज परमानेंट, मुझे नौकरी मिल गई, ये जो अभी मिला है दैट इज नॉट, दैट इज टेम्पररी, आई एम सॉरी, मुझे नौकरी मिल गई है वो भी टेम्पररी है क्योंकि मैं कहीं और नौकरी करूंगा,
1: करेक्ट,
0: मुझे आज ये सैलरी मिला है, कल के बाद में एक साल बाद में रेज मिलेगा, दैट इज टेम्पररी, दैट समथिंग एल्स विल बिकम माय सैलरी। तो हर चीज जो है पासिंग है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, उसको समझने के लिए मेडिटेशन इज अ टूल। तो उसको टूल की तरह यदि ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे भी हमारे लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस आएगा, वी अंडरस्टैंड दैट दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो टेम्पररी, आया गया, कुछ और आएगा जाएगा। तो ये बुद्धि के स्तर पर हम लोग उसको जान पाएंगे और उसको जीवन में क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली लेके आना है। एक समझना इज वन थिंग, अगर मैं कोई अच्छी बात आपको कहूं, आपकी बुद्धि से आप उसको बोलोगे यार बहुत अच्छी बात है आपने कही, जब तक मैं उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करूंगा, छोटी छोटी चीजों से, हम इसको चींटी देखते ना सर, चींटी अपने आप में एक शुगर का छोटा सा क्रिस्टल है ना, वो लेके नहीं जा पाएगी, तीन चार चींटियां लगेंगी एक शुगर क्रिस्टल को लेके जाने के लिए, और एक पूरा उनका झुंड लगेगा लगभग एक टीस्पून शुगर लेके जाने के लिए, और वो क्या करते हैं, एक अपने बिल में जाके, एक अपने होल में जाके उसको छुपाते हैं, सो दैट एट अ टाइम व्हेन दे नीड फूड दे कैन पिक इट अप। तो वो चींटी से हमको सीखना चाहिए कि लिटिल बाय लिटिल इफ यू स्टार्ट वर्किंग एनीथिंग इज पॉसिबल।
1: राइट, ब्यूटीफुल, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। एक नया ही आयाम, एक नया ही होराइजन हमारे सामने खुल रहा है। दोस्तों, जैसा शुरुआत में ही सुरेश सर ने कहा कि सारी की सारी बातचीत अपने आप को समझने की ही है, ये भी जो अभी अभी सुरेश सर ने कहा वो भी उसी का एक कड़ी है। सोचते चलिए, यहां पर रुकते हैं हम सर और एक प्यारा सा भजन और फिर वी विल कम बैक। तो दोस्तों हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया।

0: राइट सर। सुनिए सर, आपसे बातचीत का ये दौर, मेरी इच्छा तो ये है चलता ही रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मेरे दिमाग में आ रही हैं, फॉर विच आई एम सीरियसली एंड जेन्युइनली थैंकफुल। लेकिन बस प्रोग्राम की टाइमिंग का भी एक रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मैं एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि फर्ज कीजिए मेरी तो समझ में आ गया, मैंने आपसे बातचीत की, लेकिन मेरे से आपकी बातचीत बहुत सारे लोगों ने सुनी है। हमारी बातचीत को सुनकर अगर किसी को भी लग जाए कि ऑल राइट डन, आज से मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस शुरू करूंगा जैसा सुरेश सर ने कहा, तो मुझे दो तीन आसान स्टेप्स बताइए किसी भी साधारण, बिल्कुल साधारण व्यक्ति के लिए, लेमैन जो बहुत ज्यादा गूढ़ न सोच पाता हो, उसके लिए तीन चार स्टेप्स बताइए कि वो क्या करे और प्यार से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़े।
1: दो एग्जाम्पल दूंगा सर, दो एग्जाम्पल इज द वे वी कैन लर्न। अभी अध्यात्म ऐसी चीज है जिसको, अगर जैसे शुरुआत में हमने कही थी कि इट इज अबाउट लर्निंग अबाउट यूर सेल्फ, अपने आप को जानने के लिए है, तो ये अपने आप को जानने के लिए नॉलेज एक्चुअली बहुत आसान है, यही जानना है ना। बट इसके बावजूद भी इसमें इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, इतने सारे लोगों ने बोला हुआ है, इतने सारे लोग अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्यों? इट बिकॉज इवन दिस सिंपल थिंग is very difficult for an average person to practice. और क्योंकि वो उनको difficult है करके उनको जब भी लगता है तो उससे पीछे हट जाते हैं, बोलते क्या अच्छा खासा तो जी रहे हैं यार, खाओ पियो मौज करो, है ना, खाओ पियो मौज करो, दोस्त है करो, टाइम पास करो। तो एक एक, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि when should I turn to spirituality? ये एक प्रश्न पूछा जाता है, तो अक्सर क्या आंसर क्या आता है? आफ्टर रिटायरमेंट। क्यों? रिटायरमेंट के पहले आपको अपने आप को जानने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि आप तो वही हो जो बचपन में जो पैदा हुआ था अपनी मां के कोख से, आप तो वही हो ना। जब आपकी चिता जलेगी या फिर आपका आपको अंदर दफनाया जाएगा, आप तभी खत्म हो जाओगे ना। उसके बीच में आप तो वही हो ना। आपको जानने के लिए आपको आपकी आपको चेष्टा कभी करनी चाहिए, जहां जागे वहां सवेरा, जैसे कहते हैं ना वो जब जागे, कहावत है ना, जब जागे जहां जागे वहां सवेरा। सो वेयर एवर यू आर, वॉट एवर टाइम यू रियलाइज दैट मैं अभी अपने आप को जानना चाहता हूं, उस वक्त शुरू करना है। तो क्या शुरू करना है? दो एग्जाम्पल देता हूं सर। अभी हमारे गांव में, मैं साउथ से हूं, हमारे गांव में, मैं इवन इन नॉर्थ इंडिया इट विल बी द केस, जो फसल चावल का जो फसल है ना, चावल की फसल के बाद में दी हस्क एंड राइस आर सेपरेटेड, और उस राइस को एक बड़ा सा एक बैरल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि साल भर अपने कुकिंग के लिए वो बैरल की जरूरत है। तो एक टीम होता है जो उसको राइस को छांट के हस्क निकालता है, पत्थर निकाल, कंकर निकालते हैं और उस राइस को बैरल में डालने का काम है। और बैरल के नीचे से छोटा सा एक कॉर्क जैसे रहता है, उस कॉर्क को निकाल के एक बर्तन में जितना अपने को चावल चाहिए पकाने के लिए वो लेके वो कॉर्क बंद कर देते हैं। दिस इज हाउ पीपल यूज राइस एट होम, करेक्ट? अभी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हम राइस भरते जा रहे हैं, कोई नटकर बालक जैसे मैं हूं, वो कंकर जो सेपरेट किया था उसको निकाल के उस चावल के बीच में डाल देता है, और हम नीचे से खोल रहे हैं, नीचे से खोल रहे हैं, फिर भी चावल निकल रहा है, क्योंकि चावल पहले से डला हुआ है। फिर मेरी माँ है जो समझ लिया गया ये नटकर बालक ने कंकर डाल दिया, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि वापस वहां से छाटना मुश्किल है, तो ऊपर से माँ ने फिर से चावल डाल दिया। लेकिन अभी मैं, जब भी मैं नीचे से खोलता हूं, कंकर निकलते हैं क्योंकि मैंने बीच में डाला हुआ था। Your life is also like that. आप जिंदगी में जितनी अच्छाइयां भरते जाओगे, उन अच्छाइयों का फल आपको regularly मिलते जाएगा। So first and foremost is make sure that जो आप कहते हो, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, we are all good. गांधी जी की तीन बंदर नहीं, चौथा बंदर भी है जो सोचता है वो। तो everything that comes in contact with your senses, वो सारे अच्छे हो। बाई चांस गलत भी आ सकता है ना, गलत आप किसी के बारे में सोचोगे, गलत कुछ करने के लिए जाओगे, उसका भी आपको परिणाम आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल, जब वो कॉर्क खुलेगा और उसका परिणाम निकलना है तो निकलेगा ही निकलेगा। ये साधारण सी बात यदि समझ लेंगे तो यू विल स्टार्ट इन अपने गुण में, यू विल स्टार्ट फिलिंग योर लाइफ विथ ओनली गुड थिंग्स, गुड पीपल, गुड थॉट्स, गुड एक्शंस, यू विल स्टार्ट डूइंग दैट और उसका आपको ब्लेसिंग मिलते ही जाएगा। ये एक बात है। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं दूसरा, कि आपने अपने फिजिक्स में हम लोगों ने देखा प्रिज्म, त्रिकोण, ट्रायंगुलर ग्लास क्यूब, प्रिज्म कहते हैं उसको। वो प्रिज्म को यदि हम उसके जो तीन कोने हैं उसको मान लें कि एक कोना है मेरा बॉडी, एक कोना है मेरा माइंड, तीसरा कोना है मेरी बुद्धि, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये अगर हम साफ रखेंगे, इफ माई कीप द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माई लाइफ, इसको हम साफ रखेंगे तो जो अनुभव मुझे बाहर से आता है वो जब भी निकलेगा मेरे से, जब भी बाहर निकलेगा वो रंगीन निकलेगा। द प्रिज्म विल रिसीव सनलाइट एंड इट विल गिव आउट अ रेनबो। सो सिंपल थिंग यहां से शुरू करें कि मैं अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने शरीर को जितना हो सके मुझसे शुद्ध रखूंगा, ताकि जो अनुभव मुझे बाहर से आएगा, सूरज की रोशनी जो बाहर से आएगी, वो मेरे से जब बाहर निकलेगा, मुझसे जब भी बाहर निकलेगा वो रंगीन होगा। दिस टू सिंपल थिंग्स यू स्टार्ट विद, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट इज गुड फॉर यू, धीरे धीरे धीरे धीरे, बिकॉज धीरे धीरे ही होता है ये, एक साथ में ओवरनाइट तो होता नहीं है। तो दिस स्लो प्रैक्टिस विल मेक अस लीड टुवर्ड्स दैट पाथ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सिंपल, जैसा मैंने रिक्वेस्ट की थी सुरेश सर से, सुरेश सर ने उसी हिसाब से बिल्कुल सिंपल मेथड्स बताए हैं। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस या बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, बात सुनने में कई बार थोड़ा मदरहुड स्टेटमेंट जैसी लगती है, लेकिन है तो यही सच्चाई। तो अपना के तो हमें देखना पड़ेगा, नहीं अपना के देखा था तब भी वही एक एक एक परसेप्शन बना था, एक बार अपना के देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है। सुरेश सर आपका बहुत बहुत आभार है कि बिल्कुल ही ओपन आज के परस्पेक्टिव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज के से रेलिवेंट बातें आपने आज हमें बताई हैं, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स मेडिटेशन एंड टूवर्ड्स प्रैक्टिसिंग इट। जाहिर से बात है जो भी इस प्रोग्राम को सुनकर, अगर आप, मैं मानता हूं लोगों, दोस्तों, कि अगर आपको 1% 2% भी इसमें से अटक जाता है ना, तो एंटायर प्रोग्राम इज वर्थ इट। बस यही हमारा पर्पस है। सुरेश सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू वेरी मच समीर जी, थैंक यू वेरी मच समीर जी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपसे बात कर सका और आपके श्रोताओं से बात कर सका, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
0: थैंक यू।
2: ओम भास्कराय नमः।
0: दोस्तों इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर, आपकी तनुषा। आज की बातें इधर की उधर की लेकर चलेगी हमें मुंबई की गलियों में। जी हाँ, हमारा बम्बई, जहाँ भीड़ है, धूल है, जोश है, और एक हांडी हवा में लटक रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस गाने के बिना आज दही हांडी का वो माहौल बिल्कुल अधूरा लगता है, वो गाना फिल्म की कहानी में पहले था ही नहीं। जी हाँ, ना स्क्रिप्ट में था, ना पहले से प्लान्ड था, बस एक दिन एक गाड़ी में जाते हुए एक आवाज सुनी और बॉलीवुड को मिल गया अपना एक अमर दही हांडी गीत। साल था 1963, फिल्म थी ब्लफ मास्टर, और फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर जी। जी हाँ, अब शम्मी कपूर नाम ही काफी है, एनर्जी फुल ऑन, जोश फुल ऑन, और अगर किसी चीज की जिद कर लें तो फिर बस करके ही रहेंगे। एक दिन शम्मी कपूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई और म्यूजिक कंपोजर आनंद जी की गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके कानों में पड़ गई दही हांडी की असली आवाज। ढोल ताशे नगाड़े, लोगों की चीख और पुकार, गोविंदा गोविंदा। और शमी जी ने गाड़ी तुरंत रुकवाई। उन्होंने कहा, मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही गाना चाहिए अपनी फिल्म में। सोचिए, अब हम किसी गाने को सुनकर कहते हैं वाह क्या कॉम्पोजिशन है, लेकिन यहाँ तो गाना बना ही सड़क पर चलती हुई जिंदगी को देखकर। अब गाना तो बन गया, राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे वो अल्फाज, गोविंदा आला रे आला, और मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने उसमें जान फूंक दी। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई, गाना सिर्फ एक गाना नहीं था। शम्मी कपूर जी चाहते थे रियल भीड़ के बीच रियल दही हांडी के माहौल में हांडी को तोड़ना। और दोस्तों, ये था 1963। आज की तरह कोई सेफ्टी हार्नेस नहीं थे, VFX नहीं थे, कंप्यूटर से हवा में लटकती बॉडीज नहीं थी, ग्रीन स्क्रीन नहीं थी। आज होता तो प्रोड्यूसर झट से बोलता, सर पहले इंश्योरेंस करा लीजिए। लेकिन उस वक्त शमी कपूर की जिद के सामने डायरेक्टर मनमोहन देसाई परेशान हो गए। सोचिए उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, हीरो को कुछ हो गया तो। लेकिन शमी जी तो शमी जी थे, गाना होगा और ऐसे ही होगा। शूटिंग गिरगांव की सड़कों पर होनी थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि शमी कपूर जी आज यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ी, सड़कें भर गईं, ट्रैफिक रुक गया, हर तरफ लोग ही लोग।
अब आप मुझे बताइए, आज अगर किसी फिल्म स्टार की शूटिंग देखने के लिए ट्रैफिक के 6 घंटे रुक जाएं, तो सोशल मीडिया पर कितने मीम्स बनेंगे और क्या बवाल होगा। लेकिन उस वक्त लोग बस देखना चाहते थे, बस एक झलक शमी कपूर जी के, और इसी भीड़ को संभालने में बाल ठाकरे जी ने मदद भी की। ट्रैफिक को मैनेज किया गया, रास्ते बनाए गए, डाइवर्जन्स किए गए, और फिर कैमरा रेडी, म्यूजिक रेडी, शम्मी कपूर जी भी रेडी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस गाने के लिए कोई कोरियोग्राफर नहीं था। अब जरा इमेजिन कीजिए, आज फिल्म में डांस सीक्वेंस होता है तो डांसर्स रिहर्सल्स करते हैं, स्टेप्स डिसाइड होते हैं, कैमरा एंगल्स डिसाइड होते हैं, काउंट होता है 5, 6, 7, 8। लेकिन गोविंदा आला रे आला में रियल क्राउड था, रियल लोग थे, रियल सेलिब्रेशन था, म्यूजिक बजता था और लोग अपने आप झूम उठते थे, कैमरा बस उन्हें कैप्चर करता था। यानी स्क्रीन पर जो एनर्जी आप देखते हैं इस गाने में, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो मुंबई की असली फेस्टिव एनर्जी थी। और शायद इसीलिए गाना इतना ज्यादा जिंदा लगता है, क्योंकि उसमें कोरियोग्राफी कम, जिंदगी ज्यादा है। अब जरा मोहम्मद रफी साहब की आवाज याद कीजिए, गोविंदा आला रे आला। जी, आवाज में तो शरारत थी, वो मस्ती थी, वो खुशी थी, वो चैलेंज था। जैसे रफी साहब सिर्फ गा नहीं रहे, खुद दही हांडी में खड़े होकर आवाज लगा रहे हों। और शमी कपूर जी का अंदाज, बस वो तो पूछे मत, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो पागलपन था जो कहता था चीख चीख के, दही हांडी ऊपर है तो हम भी ऊपर ही जाएंगे। आपने कभी सोचा है कुछ गाने इतने सालों बाद भी इतने जिंदा क्यों रहते हैं? इसीलिए नहीं कि उनकी धुन अच्छी होती है, मुझे लगता है कुछ गाने हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। आपने पहली बार वो गाना कब सुना याद भी नहीं रहता, लेकिन जैसे ही ढोल बजेगा गोविंदा आला रे, आपके पैर रिदम पकड़ लेंगे अपने आप, चाहे आप डांसर हैं या 2 लेफ्ट फीट। बचपन की दही हांडी याद आ जाएगी, मोहल्ले की भीड़ याद आ जाएगी, पानी की पिचकारी, ढोल, मटकी और वो एक आवाज, गोविंदा। यही तो गाने की असली ताकत होती है दोस्तों, वो सिर्फ सुना नहीं जाता, वो जिया जाता है। सोचिए, एक गाना जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, एक गाड़ी में अचानक आई आवाज से शुरू होता है, एक एक्टर की जिद ने उसे जन्म दिया, एक लिरिसिस्ट ने उसे लव्स दिए और रफी साहब ने उसे आवाज दी, मुंबई की सड़कों ने उसे अपनी एनर्जी दी और एक रियल क्राउड ने उसे वो रूह दी जो आज भी जिंदा है। इसीलिए शायद गोविंदा आला रे सिर्फ एक फिल्म सॉन्ग नहीं रहा, ये दही हांडी के माहौल का हिस्सा बन गया, एक तरह का फेस्टिवल एंथम बन गया। तो अगली बार जब आप दही हांडी में ये गाना बजता सुने, एक पल के लिए सोचिएगा जरूर 1963 की मुंबई यानी बंबई की वो सड़क, वो भीड़, वो ढोल, वो कैमरा और बीच में शम्मी कपूर जी। और याद रखिए, कभी कभी बॉलीवुड की सबसे यादगार चीजें प्लान करके नहीं बनती, कभी एक अचानक सुनी हुई आवाज, कभी किसी की पागल सी जिद और कभी बस सड़क पर चलती हुई जिंदगी, ये सब मिलकर बना देती है एक ऐसा गीत जो 60 साल बाद भी लोगों को नचा दे। तो बताइए, आपके लिए दही हांडी का असली एंथम क्या है? और हाँ, अगर गोविंदा आला रे आला बजते ही आपके पैर भी थिरकने लगते हैं, तो समझ लीजिए
गोविंदा सच में आ गए। मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, आपकी तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। मिलते हैं फिर किसी एक और कहानी के साथ, तब तक जोश बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए, और जब ढोल बजे गोविंदा आला रे आला नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक घर में डाकू घुसी आए। उन्होंने घर वाले को बोला, देखो हम डाकू हैं, लूटने आए हैं, लेकिन बंदूक भूल आए हैं। तो घर वाले ने कहा, अरे तकल्लुफ की कोई बात नहीं, आपको जो लूटना लाटना है वो लूट लीजिए, लेकिन दिखे ईमानदारी से अगली बार बंदूक ला के दिखा दीजिएगा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM और मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, आपकी आरजे तनुषा। आज की बात शुरू करेंगे हम एक अजीब सी जापानीज कहावत से, अ ड्रैगन्स हेड बट अ स्नेक्स टेल, यानी शुरुआत ड्रैगन जैसी जबरदस्त और अंत सांप की पूंछ जैसा फीका। थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन जरा अपनी जिंदगी देखिए, कितनी चीजें हैं जो हमने बड़े जोश से शुरू की हूं, कल से जिम, कल से डाइट, रोज सुबह 5 बजे उठेंगे, इस बार बुक पूरी पढ़ेंगे, अब रोज कुछ नया सीखेंगे, पहले 3 दिन वाह क्या डिसिप्लिन है, चौथे दिन अलार्म बजता रहता है, और हम अलार्म को देखते हैं, अलार्म हमें देखता है, और दोनों डिसाइड करते हैं 5 स्नूज़ फेस्ट और फिर कल ही मिलते हैं ना, आज क्या जल्दी है। यही है आज की कहानी, एक जापानीज प्रोवर्ब जो बहुत सिंपल तरीके से एक बहुत गहरी बात करता है, अच्छी शुरुआत जरूरी है लेकिन असली कमाल है अंत तक बने रहना। इस कहावत में ड्रैगन का हेड एक ऐसी शुरुआत को बताता है जो बहुत इंप्रेसिव हो, कोई बड़ा आइडिया, बड़ा जोश, बड़ी अनाउंसमेंट, बड़े सपने, और फिर स्नेक्स टेल, मतलब शुरुआत के मुकाबले एंड में बहुत ही कमजोर हो जाना। जैसे कोई बोले मैं 1 महीने में पूरी लाइफ बदल दूंगा और 1 हफ्ते बाद लाइफ वही, बस व्हाट्सएप स्टेटस बदला हुआ। हमारी प्रॉब्लम अक्सर शुरुआत नहीं होती, हम शुरू करने में बहुत अच्छे हैं, नई नोटबुक, नया पेन, नया टाइम टेबल, नया जिम मेंबरशिप, नई डायरी, और डायरी के पहले पेज पर लिखा होता है न्यू बिगिनिंग्स वेलकमिंग, उसके बाद 40 पेजेस खाली। और हम रुक क्यों जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, नया काम इंटरेस्टिंग लगता है, नया बिजनेस आइडिया एक्साइटिंग लगता है, नई एक्सरसाइज रूटीन हमें मोटिवेट करती है, लेकिन कुछ दिन बाद रूटीन आ जाता है, थकान आ जाती है, दिक्कतें आती हैं, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता और हम सोचते हैं शायद मेरे लिए ये है ही नहीं। यहीं पर कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा शुरू होती है। जापानीज प्रोवर्ब का कहना भी यही है कि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन कमिटमेंट और लगातार मेहनत ही किसी काम को आगे ले जाती है। आज हम सिर्फ काम शुरू नहीं करते, उसका अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, गाइस बिग थिंग्स कमिंग, न्यू प्रोजेक्ट लैंडिंग, समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग सून, और प्रोजेक्ट अभी लैपटॉप में फोल्डर में बना पड़ा है, और फोल्डर का नाम क्या है, final_final_new_last_version। आई एम श्योर इससे बहुत लोग रिलेट करेंगे। हाइप बुरी चीज नहीं है, अपने काम के बारे में बताना जरूरी है, लेकिन कहावत हमें याद दिलाती है कि रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट का ढोल मत बजाइए, क्योंकि जब शुरुआत बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के साथ होती है तो लोगों की उम्मीद भी उतनी बढ़ जाती है, और फिर अगर काम बीच में धीमा पड़ गया तो ड्रैगन का हेड और स्नेक की टेल बन सकती है। चलिए आज रेडियो पर एक ऑनेस्ट सा टेस्ट करते हैं, मैं कुछ बोलूंगी, आप बस मन में ही जवाब दीजिएगा, जिम कितनी बार मेंबरशिप ली, बुक पढ़ी, कितनी बुक्स शुरू करी बट खत्म नहीं करी, ऑनलाइन कोर्स, कितने कोर्सेज आधे पढ़े हुए हैं, सेविंग्स कितने महीने डिसिप्लिन रहा सेविंग्स का, हेल्दी ईटिंग
कितने दिन तक सैलेड ने समोसे को हराया। और सबसे बड़ा सवाल, कोई ऐसा सपना है जो बहुत इंथुजियाज्म से शुरू किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया? अगर जवाब हाँ है तो कोई बात नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों, क्योंकि स्नेक की टेल का मतलब ये नहीं है कि आपको वही एंड एक्सेप्ट करना है। आपकी कहानी दोबारा शुरू हो सकती है, आप ही कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात, कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर दिन बिल्कुल पिच परफेक्ट रहेंगे। कभी एक दिन मिस होगा, कभी दो दिन, कभी प्लान फेल होगा, कभी मन भी नहीं करेगा। लेकिन डिफरेंस यहां है कि आप वापस आते हैं या नहीं। एक दिन एक्सरसाइज मिस हुई, अगले दिन कीजिए। एक दिन राइटिंग नहीं हो पाई, अगले दिन लिखिए। बिजनेस में सेटबैक आया, प्लान देखिए, सुधारिए और फिर से चलिए। क्योंकि सक्सेस अक्सर एक बड़े हीरोइक मोमेंट में नहीं बनती, छोटे छोटे कामों को बार बार करने से बनती है। और दोस्तों, ये प्रोवर्ब सिर्फ प्रोजेक्ट्स और बिजनेस के लिए नहीं है, ये रिश्तों के लिए भी है। पहली मुलाकात में सब बहुत रोजी, बहुत अच्छा होता है। बर्थडे याद, टाइम पर मैसेज करना, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया बाबू ने, फिर कुछ साल बाद, हाँ हाँ ठीक है, और फिर और कुछ साल बाद, सीन सीन सीन करके कोई रिप्लाई भी नहीं। रिश्ते भी कंसिस्टेंसी मांगते हैं। एक बार प्यार करना आसान है, रोज प्यार से और कंसर्न से पेश आना असली काम है। करियर में भी, हेल्थ में भी, पढ़ाई में भी, किसी कला को सीखने में भी, खुद को बदलने में भी, शुरुआत आपको अटेंशन दे सकती है लेकिन कंटिन्यूटी आपको रिजल्ट देती है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, खुद से सिर्फ ये मत पूछिए कि मैं कितने जोश से शुरू कर रहा हूं, ये भी पूछिए कि मैं मुश्किल आने के बाद कितने दिन तक बना रहूंगा। दोस्तों, ड्रैगन का हेड होना अच्छी बात है। बड़ी शुरुआत कीजिए, सपने बड़े रखिए, जोश रखिए, अनाउंसमेंट भी कर लीजिए अगर मन करे तो। लेकिन टेल को भी ड्रैगन के लेवल का बनाने की कोशिश तो कीजिए। वो कहते हैं ना, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। क्योंकि दुनिया आपकी शुरुआत को कुछ दिन याद रखेगी लेकिन आपका अंत ही तय करेगा कि कहानी याद रही या भूल गई। जापनीज कहावत का सार बहुत सिंपल है, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्टेडी, फिनिश वेल। और मेरी तरफ से एक लाइन और, जोश से शुरू करना टैलेंट है लेकिन जोश खत्म होने के बाद भी चलते रहना असली कमाल है। मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, सिर्फ एसेंट रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। आज का सवाल आपके लिए, आपकी लाइफ में वो कौन सा काम है जो ड्रैगन के हेड के साथ तो शुरू हुआ था लेकिन स्नेक की टेल बन गया? और क्या पता आज ही उसकी टेल को फिर से ड्रैगन बना दिया जाए। मिलते हैं फिर, तब तक शुरुआत खूबसूरत रखिए, सफर लगातार रखिए और एंडिंग जबरदस्त रखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक दर्जी बस में सफर करने के लिए चढ़ा, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया और सुना और फिर बोल लगा, ऐसा करो तुम हाथ काटो, गला मैं आके काटूंगा। पूरी बस साफ हो गई।
2: वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।

ट्रक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा। आज की बातें इधर की उधर की में एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शुरू होती है एक चांद से, लेकिन खत्म होती है पेड़ के नीचे। जी हाँ, सोचिए, आपको अगर नासा का स्पेसक्राफ्ट मिल जाए और कोई कहे इसमें क्या ले जाना।

हैं, आप क्या कहेंगे और आप क्या ले जाएंगे? कैमरा, गोल्ड, कोई स्पेशल मशीन या फिर बीज? 1971 में नासा के अपोलो 14 मिशन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन बीजों की कहानी आज भी जिंदा है। साल था 1971। अपोलो 14 मिशन मून की तरफ जा रहा था। तीन एस्ट्रोनॉट्स थे, एलन शेफर्ड और एडगर मिशेल मून के सरफेस पर गए और तीसरे एस्ट्रोनॉट स्टुअर्ट रूसा मून के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट में रहे। रूसा पहले यूएस फॉरेस्ट सर्विस में स्मोक जंपर रह चुके थे, यानी जंगल की आग बुझाने वाले ट्रेन्ड फायर फाइटर्स की तरह, और उनके साथ एक बहुत ही अजीब सा पैसेंजर था, ट्री सीड्स, जी हाँ, बीज, लगभग 400 से 500 बीज, पाइन, साइकमोर, स्वीट गम, रेडवुड और डगलस जैसे पेड़ों के। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ एस्ट्रोनॉट, दूसरी तरफ मून, और एक छोटे से कंटेनर में पेड़ों का फ्यूचर। इन बीजों को मून पर उगाना नहीं था, ये बीज मून की मिट्टी में नहीं डाले गए, इन्हें स्पेसक्राफ्ट के साथ मून के ऑर्बिट तक ले जाया गया और वापस अर्थ पर ही लाया गया। मकसद था देखना कि स्पेस की जर्नी के बाद इन बीजों का क्या होता है, और कंपैरिजन के लिए कुछ वैसे ही बीज अर्थ पर ही रखे गए थे, यानी एक ग्रुप गया मून के चक्कर लगाकर आया और दूसरा ग्रुप यहीं अर्थ पर रहा, और फिर दोनों को कंपेयर किया गया। कितना सिंपल सा आइडिया, लेकिन कितनी खूबसूरत कहानी बन गई इसके पीछे। अब कहानी में ये ट्विस्ट था कि जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर वापस आया, बीजों के कंटेनर को खोलने और साफ करने की प्रक्रिया में कंटेनर टूट गया, सारे बीज इधर उधर बिखर गए, कुछ वैक्यूम के कांटेक्ट में भी गए, और साइंटिस्ट्स को लगा शायद अब ये बीज काम के नहीं रहे। लेकिन प्रकृति ने कहा, एक मिनट, इतनी जल्दी हार मान ली? बीजों को जर्मिनेट करने की कोशिश हुई और सरप्राइज, बीज उगने लगे। फॉरेस्ट सर्विस ने उन्हें ग्रो किया और जो पेड़ उन बीजों से निकले उन्हें कहा गया मून ट्रीज। नासा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनमें से कई सीडलिंग्स बाद में अमेरिका और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए, खासकर 1976 के यूएस बाइसेंटिनियल के आसपास। अब यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मून ट्रीज एक्चुअली मून पर नहीं उगते। नाम मून ट्री है लेकिन पेड़ तो अर्थ पर ही उगते हैं। बस उनकी कहानी में मून का एक सफर जुड़ा हुआ है, एक छोटा सा बीज जो अर्थ पर एक आम सा बीज था, स्पेस में गया, मून का चक्कर लगाया और वापस आकर एक पेड़ बन गया। दोस्तों, कभी कभी लगता है साइंस भी कहानियां लिखती है, बस अपने ही स्टाइल से। आपने कभी किसी पेड़ को देखा है और सोचा हो इसकी कहानी क्या होगी? हम अक्सर पेड़ देखते हैं, छांव मिलती है रुक जाते हैं, फल मिलता है तो तोड़ लेते हैं, पत्ते गिरते हैं तो सफाई कर देते हैं, फूल दिखता है तो झट से तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई पेड़ आपको बताए मैं चांद के पास से होकर आया हूं, तो आप शायद उसके नीचे थोड़ा और देर खड़े रहेंगे। और यही तो मून ट्रीज की खूबसूरती है, वो सिर्फ पेड़ नहीं, वो एक दौर की याद है, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की कहानी है, और इंसान की उस आदत की निशानी है कि हम जहां जाते हैं वहां से कुछ सीख कर वापस आना चाहते हैं। सबसे खूबसूरत बात पता है, ये कहानी 1971 पर खत्म नहीं हुई।
नासा ने बाद में मून ट्रीज की लोकेशंस को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन शुरू में पेड़ों की कोई पूरी सिस्टमैटिक लिस्ट नहीं बन पाई। लोगों ने अपने अपने इलाकों के मून ट्रीज के बारे में जानकारी शेयर की और धीरे धीरे उनकी कहानियां दोबारा सामने आती गईं। यानी कुछ पेड़ हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिले, लोगों ने एक्चुअली उन्हें ढूंढा, पहचाना और याद रखा। कितनी अजीब बात है ना, इंसान मून पर गया लेकिन वापस आकर उसने पेड़ों में अपनी कहानी छोड़ दी। और अगर आप सोच रहे हैं कि मून ट्री की कहानी पुरानी हो गई, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। 2022 में नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के साथ एक नई जनरेशन के ट्री सीड्स भी स्पेस में गए, यानी मून ट्रीज का दूसरा चैप्टर भी शुरू हो चुका है। पहले बीज अपोलो के साथ गए थे, अब नई पीढ़ी आर्टेमिस के साथ। सोचिए, एक बीज की कहानी कितनी दूर तक जा सकती है। मुझे इस कहानी में सबसे खूबसूरत चीज साइंस से भी ज्यादा ये लगी कि इसका मैसेज क्या है। हम अक्सर सोचते हैं बड़ा काम मतलब बड़ी चीजें, रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट, मून लैंडिंग, लेकिन कभी कभी एक बहुत बड़ा सपना एक बहुत छोटे बीज में छुपा होता है। एक बीज को देखिए, ना उसमें आवाज है, ना शोर है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, वो बस चुपचाप मिट्टी में पड़ा है। और फिर वही बीज एक दिन पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है आपके सामने, छांव देता है, हवा देता है, फल देता है, फूल देता है, सुंदरता देता है और अपने साथ एक कहानी लेकर खड़ा रहता है सालों तक। दोस्तों, अगली बार जब किसी पेड़ के नीचे खड़े हों, तो एक पल के लिए ऊपर देखिए। हो सकता है वो मून ट्री ना हो, लेकिन वो भी किसी कहानी का हिस्सा जरूर है। किसी ने बीज बोया होगा, किसी ने पानी दिया होगा, किसी ने उसे बचाया होगा, और आज वो किसी और को छांव दे रहा है। अपोलो 14 के वो बीज हमें एक सिंपल सी बात याद दिलाते हैं, सफर चाहे कितना भी दूर हो, वापस आकर कुछ उगाना चाहिए। और शायद जिंदगी में भी हम सबको अपना एक छोटा सा मून ट्री जरूर लगाना चाहिए, ऐसा कुछ जो हमारे बाद भी, बहुत सालों बाद भी जिंदा रहे। मैं हूं आपकी तरानों की हम सफर आज तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की और उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांत्या भील 90.8 FM। अब मुझे जरूर बताइएगा, अगर आपको कभी किसी एक चीज को मून तक भेजने का मौका मिल जाए तो आप क्या भेजेंगे? एक फोटो, एक लेटर, कोई याद, कोई एक इंसान, या आप भी एक बीज भेजेंगे? मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ। तब तक पेड़ लगाइए, कहानियां बचाइए और आसमान की तरफ देखना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, चाय की दुकानों पर आजकल चाय के कप इतने छोटे होने लगे हैं कि लगता है चाय नहीं पिला रहे हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक था भिखारी। रेलवे में सफर करते हुए भीख मांगने के दौरान एक बार एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे यार तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे पाऊं। सेठ बोला, देखो जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं भाई। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुमको बदले में कुछ दे पाऊंगा। तभी स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर

अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे, तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया। उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए खुद को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और समझने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, यदि लोग गलतियों से सबक लेते हैं तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझमें कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

मैं बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लड़कों और लफंगों के साथ रहा। मैं महज 7 साल का ही तो था, लेकिन तकरीबन जवान हो चुके लड़कों से मेरी दोस्ती रही। उनके साथ ही क्रिकेट खेला, अखाड़ों में कुश्ती लड़ी, वर्जिश की। अपने उस्ताद के पैरों और पीठ पर सरसों का तेल मला, कुछ दाव लगाने सीखे और फिर उस्ताद के कहने पर पास के गांव में लगने वाले मेले में आयोजित दंगल में भाग लेने जाता था। उन दिनों 3 रंगों की लंगोट हुआ करती थी, लाल, सफेद और काली। उन 3 रंगों में से मैंने अपने लिए लाल रंग की लंगोट चुनी। लफंगों के साथ जंगल में खूब भटका। ज्यादातर दोपहरें पेड़ों पर गुजारी, कबूतरों के पीछे भागा, तीतर बटेर का पीछा किया, उन्हें कीटनाशक DDT पाउडर खिलाकर मारा, फिर लकड़ी पर सेक के खाया। यही वो दिन थे जब मैंने बीड़ी पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट, फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं, बादलों का धुएं से क्या संबंध है। शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है।

जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में ठूंस दिया जाऊं। खुले आसमान के नीचे मैं अपने घर की टीन की चादरों पर सोए हुए इन्हीं सारी कल्पनाओं में खोया रहता था। कभी आसमान का तारा बन जाता तो कभी जंगल का कोई कांटा। फिर एक दिन मैंने अपने पुरखों से सुना कि मरे हुए लोगों का पेट भरने और उनकी प्यास बुझाने के लिए कौवे छतों पर आते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया, दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं, किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था, अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका। मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान, जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब। राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: एकता और ऐश्वर्या,
3: कैसे हो बच्चों?
4: नमस्ते
3: नमस्ते।
4: अरे वाह,
3: आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हाँ, भैया।
3: लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
4: नहीं, नहीं कुछ नहीं छुपा रहे।
3: नहीं, देखो देखो, ये कुशागर और ये निशांत, इनके इन्हें इनके हाथ में शायद कुछ है। वाह, क्या बात है भाई, है इतने सुंदर फूल। वाह, कितने सुंदर फूल है। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए?
4: ये ऋचा के बाग के फूल हैं।
3: ऋचा के बाग के
5: हैं? हाँ भैया, ये मेरे बाग के फूल हैं।
3: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो तुम, बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए?
5: भैया हम आपको उपहार देना चाहते
3: अच्छा।
5: थे।
3: अच्छा,
5: आप हमें एक कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो।
3: अरे वाह, क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे।
5: ये कौन है भैया?
3: वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए
6: ए ए
3: ए,
6: ए,
3: ए। हाँ शाबाश, ए से एकता और ए से

0: आना है उसे टिकट भी लेना होगा।
1: अरे वाह, टिकट लगा दिया।
0: हाँ, टिकट लगा दिया,
1: उसकी तो कमाई हो गई।
0: बिल्कुल, कमाई हो गई, शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ, ऐसे ऐसे ऐश्वर्या, ऐनक
2: ऐसा
0: ऐसा, और ऐसे ऐलान, ऐसे ऐलान। हाँ, ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला?
3: अब लोग टिकट लेने लगे।
0: बिल्कुल सही,
1: माली काका को भी कमाई हो गई।
0: बिल्कुल, कमाई भी हो गई।
2: अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा।
0: अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा, शाबाश।
1: अब खुश रहते हैं।
0: अब खुश रहते हैं
2: और बहुत सारे फूल खिलेंगे।
0: बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे और हाँ, फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और न ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ, साथ साथ माली काका धन भी कमाने लग गए थे।
1: बहुत खुश हो गए।
2: उनके यहाँ चिड़िया भी आने लग गई।
0: चिड़िया आने लग गई,
2: टूरिस्ट
0: आने लग गए।
1: और उनकी फोटो बाहर छप गई,
0: अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक।
4: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

एकांत में बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ऐसे एकांत और ऐसे ऐश्वर्या और

0: एकता और ऐश्वर्या ने पूछा,
1: काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला,
2: लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: तूतुन की रेल छूट गई, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे सभी।
2: अरे लो आ गए बच्चे, आ गए। नमस्ते, आओ बैठो, चलो अपने जगह पर बैठो।
3: बच्चों आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हम पार्क में खेल रहे थे।
2: अच्छा, तो बहुत मस्ती की होगी तुमने पार्क में, है ना?
3: अच्छा ये बताओ, तुम और कहाँ कहाँ मजे करते हो?
4: झूले पर।
2: अच्छा, और
4: सहेली के घर पे, मामा जी।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ, नानी जी के घर कौन मजे करता है?
4: मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाता हूँ।
2: अच्छा,
4: मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब शैतानी करते हैं और उधर मामा जी भी होते हैं हमारे। अच्छा। और मेरी मम्मी भी होती है।
3: अरे वाह। भाई वाह। अच्छा बच्चों पता है, तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटखट सा बच्चा था जिसका नाम था तूतुन।
2: क्या नाम था?
5: तूतुन।
3: तूतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी तरह।
2: हाँ, और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था।
4: मेरा भी मन नहीं करता आने का। मैं तो सर्दियों में जाता हूँ।
3: तो ठीक ऐसे ही तूतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था, बड़े मजे आते थे उसे वहाँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में तूतुन नानी के घर गया तो छुट्टियां खत्म होने पर तूतुन की मम्मी ने तूतुन से कहा,
2: अरे अरे बेटा तूतुन, कहाँ हो? चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। हाँ भाई, रेलगाड़ी आने वाली है 5:30 बजे, छूट जाएगी, कहाँ हो तूतुन?
3: और पता है बच्चों, 5:30 बजे का मतलब क्या होता है?
2: क्या होता है? हाँ
3: सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूँ, 5:30 यानी 5:30 क्या?
5: 5:30।
3: शाबाश,
2: बिल्कुल सही कहा। और फिर पता है क्या हुआ? जाने की बात सुनकर तूतुन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा,
6: ओहो हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेलगाड़ी छूट जाए, छूट जाए।
2: पर अब क्या हो सकता था, तूतुन को तो जाना था। तो तूतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5:15 पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब तूतुन के पापा बोले,
7: अरे भाई तूतुन जल्दी करो। अरे 5:15 बेटा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए।
2: और सुनो सुनो, आगे सुनो। ट्रेन छूटने की बात पर तूतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा?
8: लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। अरे मजा आ गया, हमारी ट्रेन छूट गई। अब मैं और भी देर तक नानी के घर रह सकता हूँ।
2: तो बच्चों बताओ, क्या तूतुन की ट्रेन निकल गई थी? हाँ
4: नहीं, क्योंकि ट्रेन तो 5:30 निकलनी थी ना। अभी 5:15 ही तो बजे थे।
3: बिल्कुल सही तुमने बताया ईशान। अब ये बताओ, 5:30 का क्या मतलब हुआ?
5: 5:30।
3: शाबाश।
2: और 5:15 का मतलब क्या हुआ?
5: 5:15।
2: बिल्कुल सही,
3: इसी बात पर हो जाए ताली। पर बच्चों तूतुन को ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई।
2: और तब तूतुन के पापा ने तूतुन को बताया,
7: अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 बाकी हैं, ट्रेन 5:30 आएगी, अभी तो 5:15 ही है।
4: अब तो तूतुन दुखी हो गया होगा। मुझे तो जाना होगा,
9: अब तो उसे जाना ही पड़ेगा।
3: अरे नहीं बाबा, सुनो तो सही, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
2: हाँ, क्योंकि ट्रेन तो आई ही नहीं। उन लोगों को बहुत देर तक वहीं इंतजार करना पड़ा।
4: अरे ये कैसे हुआ?
3: यही पूछने तो तूतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुँचे और बोले,
7: स्टेशन मास्टर साहब, ये ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक? हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
4: तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा?
7: स्टेशन मास्टर ने कहा, सर 5:30 का मतलब है 5:30। असल में आपकी गाड़ी 5:30 पर चली गई।
3: क्या?
7: सर देखिए, रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 कहा जाता है, यानी 17 घंटे 30 मिनट। क्या मतलब?
5: 17 घंटे 30 मिनट।
7: शाबाश।
4: 17 घंटे 30 मिनट काफी अजीब सा लग रहा है।
2: हाँ, तुम्हारी ही तरह तुतुन को भी 17 घंटे 30 मिनट सुनकर ना अजीब लग रहा था।
4: पर ऐसा क्यों कहते हैं दीदी?
2: ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग होता है।
3: हाँ, 12 घंटे की घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, इसलिए हमें उसके साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात ये सब लगाना पड़ता है। जैसे सुबह के 9 बजे
2: और रात के 9 बजे,
3: सुबह के 5 बजे
2: और शाम के
5: 5 बजे।
3: शाबाश। अच्छा, सुबह के 11 बजे
5: और शाम के 11 बजे।
3: शाम के 11 बजे नहीं बेटा, रात के 11 बजे। बजाओ ताली इसी बात पर।
4: तो तुतुन की रेल छूट गई थी ना? तुतुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा।
3: हाँ बच्चों, बहुत मजा आया था। लेकिन अब तुतुन ने 24 घंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था।
2: हाँ, और पता है 24 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 13 घंटे।
3: क्या कहते हैं?
5: 13 घंटे।
3: हाँ, यानी 12 घंटे में 1 घंटा और जोड़ दिया तो हो गए कितने घंटे? 13 घंटे। शाबाश। अच्छा गुड़िया, तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं?
4: 4 बजे हैं।
3: 4 बजे हैं, बिल्कुल सही। और शाम होने को है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
4: शाम के 4 बजे हैं।
3: शाबाश गुड़िया, बजाओ इसी बात पर ताली।
2: हाँ, तो अब ये बताओ 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ?
3: बताओ बताओ।
4: 12, 13, 14, 15, 16 बजे हैं।
3: 16 बजे हैं नहीं, 16 घंटे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ बच्चों, 12 घंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हूँ तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा?
5: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे।
3: शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 18 घंटे।
2: तो अब ये बताओ शाम के 6:30 हो तो
4: 18 घंटे 30 मिनट।
3: वेरी गुड।
2: और शाम के 7 बजे? हाँ हाँ, सोचो सोचो।
4: 19 घंटे।
3: अरे वाह, शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हैं। वैसे एक बात है, तुतुन भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार हो गया था। तो इस तरह हुई कहानी खत्म। बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: भूखा अमरूद।

0: Boka Amrud. एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन गिलहरी। दोनों सहेलियां थी। हाँ बच्चों, एक दिन चींची ने गुनगुन से कहा,
1: चलो गुनगुन अमरूद के पेड़ पर चढ़कर खेलें।
0: तो बच्चों दोनों पहुंची अमरूद के पेड़ के पास और बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम यहाँ खेल सकती हैं?
0: अमरूद ने कहा,
2: हाँ हाँ खेल लो, लेकिन ध्यान रहे मेरी टहनिया ना टूटे।
0: चींची चिड़िया हैरान होकर बोली,
1: अरे अमरूद भैया तुम्हें दर्द होता है क्या?
2: और नहीं तो क्या, तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा, हम नहीं तोड़ेंगे टहनियाँ।
0: ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी हैं। और कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी। गुनगुन बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें?
0: ये सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा,
2: मैं अभी भूखा हूँ, तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ, यानी मेरे आहार का इंतजाम करो।
0: हैरान होकर चींची ने पूछा,
1: अरे तुम खाना भी खाते हो?
0: तो अमरूद बोला,
2: इसमें हैरान होने की क्या बात है, खाना तो सभी को चाहिए, खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं। तुम भी तो पहले छोटी नन्नी मुन्नी थी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें दाना ला ला कर खिलाती थी, तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी।
0: ये सुन बच्चों चींची ने कहा,
1: लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है?
0: गुनगुन बोली,
1: और भला तुम खाते क्या हो, हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना।
0: अमरूद ने कहा, बच्चों
2: मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूँ, जब जमीन में पानी डाला जाता है ना, तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती हैं, तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक, पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना, मेरा आहार।
0: गुनगुन ने पूछा,
1: अरे भाई प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना?
0: अमरूद का वृक्ष बोला,
2: जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी, उसी की मदद से पत्तियां मेरा आहार बनाती है। और इसके अलावा जैसे तुम सांस लेती हो ना, मुझे भी चाहिए हवा सांस लेने के लिए।
0: तो बच्चों चींची ये सुनकर बोली,
1: लेकिन अमरूद भैया हमें तो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाना आता ही नहीं, हम तुम्हारा आहार कैसे बनाएं?
0: गुनगुन ने पूछा,
1: और शुद्ध वायु कहाँ से लाएं?
0: ये सुनकर बच्चों पास में खड़ा दूसरा अमरूद का पेड़ गाने लगा,

0: पेड़ की ये बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली,
1: अरे ये तो बड़ी आसान बात है, गज्जू हाथी तो हमारा दोस्त है। दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भरकर पानी।
0: तो बच्चों झट

0: दोनों पहुंची गज्जू हाथी के पास। उनकी बात सुन गज्जू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। फिर वे तीनों चल पड़े अमरूद के पेड़ की ओर। अमरूद के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया, ढेर सारा पानी। बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा, तनों ने पत्ती तक पहुंचाया। सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया। अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला,
1: आओ आओ, तुम भी अपनी भूख मिटाओ, लो ये अमरूद खाओ खाओ।
0: चींची चिड़िया, गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए।

0: ก็ถอนกระเดกโคตรอุสเมนกลาบอมเบโบ
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: एक तिनका।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना।

0: महानगर के एक बस स्टैंड पर संजय अपने पिताजी के साथ बस का इंतजार कर रहा है। संजय स्कूल के लिए बस की प्रतीक्षा में है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ है।
1: भाई साहब, आप किस बस में जाएंगे?
2: कौन से नंबर की बस निकली है अभी?
0: संजय पिताजी से पूछता है,
3: बाबूजी अभी तक बस नहीं आई, कहीं स्कूल को देर ना हो जाए।
4: आती ही होगी बस। अरे देखो ना, अपनी बस के इंतजार में लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं।
3: हाँ बाबूजी, ऐसे में सामने से आती बस दिखाई कैसे देगी?
4: हाँ ये तो है।
0: तभी एक युवक उन दोनों के पास आता है और कहता है,
5: आप दोनों बीच सड़क से हटकर फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी।
3: आप कौन है?
5: मेरा नाम आदित्य है। आप थोड़ा फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी ठीक है, आओ बेटा आओ, इधर ऊपर आ जाओ फुटपाथ पर।
5: भाई साहब, अब आप भी आ जाइए फुटपाथ पे।
6: और क्यों, इतने लोग खड़े हैं और तुम हमसे क्यों कह रहे हो भाई?
5: हाँ हाँ, मैं औरों से भी कह रहा हूँ, आप तो आ जाइए।
7: हम यही ठीक है, आप अपना काम,
5: आप अपना काम करिए। किनारे थोड़ा किनारे आ जाइए आप। भाई साहब फुटपाथ पे आ जाइए आप। बच्चे अब भी आ जाइए फुटपाथ पे। बहन जी फुटपाथ पे आ जाइए आप।
3: बाबू जी देखिए,
5: बहन जी
3: आदित्य भैया एक एक करके सबको कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
4: हाँ, और कुछ लोग उसकी बात मानकर फुटपाथ पर आ भी रहे हैं।
3: पर वो दो आदमी तो अभी सड़क पर ही खड़े हैं।
4: उस युवक ने उन्हें समझाया था, पर वो नहीं माने तो क्या किया जा सकता है।
3: लो, आदित्य भैया तो चले गए।
0: तभी एक बस इतनी तेज गति से आई कि पीछे हटने की कोशिश में बीच सड़क पर खड़े दोनों आदमी गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई।
3: अरे ये देखो, ये क्या क्या हो रहा है? चोट लग गई।
8: नहीं
3: नहीं, कोई उठाओ तो सही है। अरे खड़े हो जाइए खड़े।
4: आपने उस युवक की बात मान ली होती तो ऐसे चोट तो ना लगती।
3: अरे वो भला आदमी तो कितनी बार समझा रहा था मगर यही नहीं माने, अब लग गई ना।

0: संजय स्कूल पहुंचा। वहां अध्यापिका जी कक्षा में पूछ रही थी,
1: बच्चों कल मैंने आपसे कहा था कि आप ग्रुप बनाकर कक्षा के कमजोर बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या आपने ऐसा किया?
2: हाँ, मैंने तो किया है।
1: रानी तुम बताओ।
3: बहन जी, मेरे साथी रमेश ने पढ़ाने में कोई रुचि ही नहीं ली, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं पढ़ाया।
1: रानी, ये तो गलत बात है। देखो, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। हमें केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
3: जी बहन जी।
4: बिल्कुल ठीक, जैसे आदित्य भैया आज बस स्टैंड पर कर रहे थे।
1: आदित्य भैया कौन?
0: तब संजय ने अध्यापिका जी को बताया कि बस स्टैंड पर कैसे आदित्य भैया लोगों को फुटपाथ पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महानगर की एक सड़क पर अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है।
5: भाई साहब, भाई साहब।
6: जी, मुझसे कुछ कहा?
5: जी हाँ, आप ये बताइए कि आज के वातावरण को, अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए?
6: मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए
5: जी,
6: लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में ये सब बहुत ही कम रह गया है। मैं तो कहूँगा सब खत्म हो गया है।
5: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं?
1: अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी, आजकल कुछ ठीक भी है क्या? आप छोड़िए भी, हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पढ़कर, हम तो चलते हैं।
7: रुकिए, ये बेकार की बात नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यूं मुंह फेर कर मत जाइए, आगे बढ़िए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में काम आ जाए। ये समाज सबका है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी ही है।
0: बहाना।

0: उषा जी।
1: जी सर।
0: ये पत्र आज ही भिजवा दीजिए, बहुत जरूरी है ये।
1: सर आज?
0: जी आज।
1: सर आज तो नहीं जा सकता।
0: पर क्यों? अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाक जाती है दोपहर को 3:30 बजे, तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है ना?
1: सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता।
0: पर क्यों?
1: सर अभी तो लाइट ही नहीं है।
0: लाइट नहीं है तो क्या हुआ, इस कमरे में तो काफी रोशनी है, आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं।
1: सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा।
0: पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी।
1: सर इलेक्ट्रिसिटी तो 1 घंटे बाद आएगी।
0: और क्या?
1: तब तक चाय का
0: तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या?
1: सर है तो,
0: पर क्या?
1: तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं।
0: आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा, वो खाली पड़ा रहता है।
1: शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है।
0: चलिए जाने दीजिए उषा जी, आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चाय या अपनी बारी किसी का इंतजार मत कीजिए। आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए। क्या ये हो सकता है?
1: हाँ सर ये तो हो सकता है।
2: काम न करने के इतने बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं।

गए मिल गया चोर। पंख पसारे खड़ा था मोर, पंख उठाए उसने तोर।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काट

0: होता है?
1: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु हैं वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
0: अच्छा, जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा जाता
1: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
0: जी
1: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
0: जी
3: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
4: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
5: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતેં ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટંટ્યા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्या भील 90.8 FM को। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता है, किसान साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं तलहनी फसलों के ऊपर। तो तलहनी फसलों का अगर नाम आया है तो हमारा जो झाबुआ जिला है उसमें अधिकतर हम देखते हैं हमारे यहाँ का किसान जो है मूंगफली की, सोयाबीन की और तिल्ली की खेती करता है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટંટ્યા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मूंगफली का हम तेल निकालते हैं, साथ ही हम उसको स्नैक्स में भी खा रहे हैं, बाजारों में छोटे छोटे पैकेट्स में सिंगदाने हमको मिलते हैं, हम उसको रोस्टेड करके भी खाते हैं, साथ ही हम मूंगफली का बटर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूंगफली से बनी हुई चीज़ों का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम मूंगफली की अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं और कौन सा बीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मूंगफली की खेती में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए आदि जानकारियों को जानेंगे। तो किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं।
7: हमारे देश में तिलहन की खेती की विशेष भूमिका है क्योंकि हमारे रोजमर्रा के खानपान में खाने वाले तेल का इस्तेमाल खूब होता है और तिलहनी फसलों की बात जहां तक आती है, हमारे देश में मुख्य तौर पर मूंगफली, सोयाबीन, तिल आदि तिलहनी फसलों की खेती होती है। इनमें मूंगफली की क्या खास भूमिका है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि मूंगफली का तेल जहां तेल के रूप में इस्तेमाल होता है, वहीं इसके दाने जो हैं वो नमकीन के रूप में खाए जाते हैं। और साथ ही आपको तो पता ही होगा कि आजकल मूंगफली के बटर की मांग भी खूब बढ़ने लगी है।

0: ऐसे में मूंगफली की खेती से किसानों को क्या फायदा हो सकता है, इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किसान क्या करे ताकि उनकी मूंगफली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इन सभी पहलुओं पर आज हम विचार विमर्श करेंगे और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात से बेहतर जगह और भला क्या हो सकती है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम ये पूरी बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर राधाकृष्णन, साथ ही हमारे साथ है राष्ट्रीय कृषि सलाहकार श्री एस के दलाल, इनके साथ ही विशेष मेहमान डॉक्टर एस डी सावलिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि सहायक तकनीकी अधिकारी हैं, साथ ही डॉक्टर आर ए जाट वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान और डॉक्टर रिंकू डे वरिष्ठ वैज्ञानिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान की। और साथ ही बहुत सारे किसान जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पर मौजूद है, तो आप सभी का स्वागत है अपनी तरफ से और इन सभी विशेषज्ञों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बिल्कुल, और इसी तालियों की गूंज के साथ आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
1: हमारे देश में तिलहन की 7 बड़ी फसलें हैं और मूंगफली का इनमें प्रमुख स्थान है। खाना बनाने में मूंगफली के तेल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। एक अनुमान के अनुसार सरकार को हर साल करीब 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल आयात के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। मूंगफली समेत दूसरी तिलहनी फसलों की उपज में बढ़ोतरी उपज और मांग के अंतर को पार सकती है। सरकार और वैज्ञानिक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इस बार मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार बोनस भी दे रही है। दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक ज्यादा उपज वाले बीज तैयार कर रहे हैं, साथ ही वो किसानों से वैज्ञानिक विधि से मूंगफली की खेती करने पर जोर दे रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार और वैज्ञानिकों की ये कोशिशें रंग लाएंगी और मूंगफली भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी।
0: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या वजह है कि अनाज के उत्पादन में हमने जो सफलता हासिल की है तिलहन के मामले में वो बात अभी तक नहीं हो पाई है, क्या वजह है इसकी?
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: तिलहन, जहां तक मूंगफली का बात है, वो रेनफेड है जो बारिश के ऊपर निर्भर है। करीब 80%
0: जी
3: ग्राउंडनट जो है बारिश की वजह हेल्प से ही उगाया जाते हैं। जो बारिश का जो कमियां आते हैं, जो टाइम पर नहीं आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम, जो बारिश कम होने का, ये मेजर कारण है। इसके अलावा कुछ कीट वगैरह भी होते हैं जिसका नियंत्रण का अभी अच्छे तकनीक अवेलेबल है। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम जो है वो ड्राउट का है, जो कम पानी होने का होता है।
0: बिल्कुल दलाल जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ये खाद्य तेल आयात जो है इसे लेकर सरकार को करोड़ों खर्च करना पड़ता है, ऐसे में केंद्रीय कृषि विभाग जो है वो क्या कदम उठा रहा है ताकि जो घरेलू तेल उत्पादन है उसे बढ़ाया जा सके?
4: आपने बिल्कुल सही सवाल किया। भारत के अंदर हम खाद्यान्न तेल जो आयात करते हैं वो उसके ऊपर भारत सरकार का करीब करीब 73,000 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है। हमारी जो पैदावार है जो तिलहन की फसलों से होता है उससे जो हम अपने घरेलू तरीके से जो पैदा कर सकते हैं तेल वो करीब करीब आधा होता है, 50% करीब हम यहाँ करते हैं और 50% हमको आयात करना पड़ता है। करीब 14-15 के आंकड़ों के मुताबिक 17 KG हर एक इंसान जो है पर कैप्टा कंजम्पशन है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि WHO के मुताबिक 10 KG काफ़ी होता है। तो हमारे यहाँ तेल का जो खपत है बहुत ज़्यादा है, जिसको हम इस माध्यम के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि लोग तेल कम खाएं, ये स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, थैंकफुली जैसे हमने 5,000 करोड़ की इस साल पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया है, टोटल हम करीब करीब जो तिलन फसलों के जो हैं वो 19,800 करोड़ का निर्यात भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को काफ़ी इसके जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च करनी पड़ती है, इसलिए हम लोगों को तेल की कम खपत करनी चाहिए। तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई एक कार्य किए हैं, जिसके अंदर ऑयल पाम एक ऐसा वो हमने निकाला है जिसका पोटेंशियल देश के अंदर करीब 19.33 लाख हेक्टर है, जहाँ पे हम पाम ऑयल जो है वो पैदा कर सकते हैं, जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और हमारे खाने की जिसकी कमी है

0: रिकमेंडेशन है कि भी जो जब वो बुआई करता है उस समय पेंडीमेथालिन नामक खरपतवार नाशी आता है उसकी उसकी 900 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर उसकी मात्रा हम बताते हैं, लेकिन कई किसान हैं जो वो नहीं लगाते, इसकी वजह से शुरू में ही खरपतवार आ जाते हैं। फिर बाद में हमारा रिकमेंडेशन है कि बुआई के 20 और 40 दिन बाद वो खरपतवार निकाले, या तो जैसे मजदूर लगा के निकाले या इंटरकल्चरिंग करें, लेकिन कई बार किसान वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि आजकल मजदूरों की काफ़ी कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी हम मूंगफली की उपज में काफ़ी कमी आती है। तो ये कुछ जो इसके अलावा मूंगफली में एक बड़ा जो मुद्दा है वो है पौध संख्या पर हेक्टेयर की।
1: अब अच्छा, इसमें तो उसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से जो उत्पादकता है और उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर सावलिया से यहाँ पर मैं जान लूं कि जैसे कि बातचीत में कई बार ये बात आई है जो कीड़े मकौड़े हैं उससे काफी फसल को नुकसान हो जाता है, ऐसे में किस तरह की वैज्ञानिक विधियां हैं जो किसानों को अपनानी चाहिए?
2: ज्यादातर मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप जो पंचगव्य करके जीवामृत है, ऐसी जो घरेलू उत्पादन हो सकता है, जो गायों की पालन पोषण के साथ साथ उसको दुगना फायदा होता है, दूध भी मिलता है, अपने चारे का भी सही तरह से इस्तेमाल करता है, गोबर मिलता है, तो अपनी जो जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको भी वो मेंटेन कर सकता है, और खुद अपने हाथों से पंचामृत बना के वो अपने खेत में छिड़काव करने से कीड़े मकोड़े भी कीट आते हैं नुकसान करने वाले उसकी संख्या भी कम कर सकते हैं, उससे नुकसान भी कम कर सकते हैं, और जो ये सब

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूंगफली से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: अगर किस्मों की बात करते हैं तो हमारे निदेशालय से जो वेराइटीज है गिरनार 2, ये वेराइटी उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए निकाली गई है। इसी प्रकार से इसी निदेशालय से एक दूसरी वेराइटी है गिरनार 3, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए निकाली गई है। फिर अगर गुजरात की बात करें तो जो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से GG20 वेराइटी है। इसके अलावा एक और अभी नई वेराइटी आई है GJG22। इस वेराइटी के अंदर जो कोलर रोट और स्टेम रोट की समस्या है तो इसमें काफ़ी सहनशीलता है इस वेराइटी में। इसके अलावा फिर अगर एक स्पेनिश जो ग्रुप है बंच ग्रुप, उसके अंदर TG37A वेराइटी है ट्रॉम्बे की, तो वो खरीफ और समर दोनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है। फिर ऐसे ही एक और वेराइटी है GJG31, ये भी स्पेनिश ग्रुप वेराइटी है और ये भी किसानों में काफी प्रचलित हो रही है।
2: जी ठीक है डॉक्टर डे, अब आप मुझे ये बताएं और हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को बताएं कि खाद उर्वरक को लेकर के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को।
3: जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मूंगफली एक लिग्यूम क्रॉप है, तो ये जो लिग्यूम क्रॉप है इसमें राइजोबियम का बहुत

पीसी हमारी है कॉस्ट एंड प्राइसेस वाले, वो उसका मूल्यांकन करते हैं, कीमत निकालते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग जो MSP उसकी डिटरमिन करते हैं। अभी इस बार हमने जो बोनस को मिला के 4450 रुपया इसका MSP रखा है। ये आप जो बात कह रहे हैं, ये किसान कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है।

ये कैसे नया बीज बनाया जा सकता है, साथ ही आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना और इन जानकारियों का सिलसिला आगे चलता रहेगा। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भेली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, हम सुन रहे थे मूंगफली की खेती को लेकर, मूंगफली की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों, चर्चा के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और मूंगफली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को।
1: चलती हूँ और अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल।
2: कपिल वेकरिया मारू नाम। હવે સૌથી વધારે પ્રશ્ન મોટો એ છે, આફલા ટોક્સિન જે ફૂગ બરોબર આપણે જે માર્કેટિંગમાં સૌથી વધારે નડે છે, તો એક ફૂગ ક્યારે આવે, કેટલો સમય માંડવી સુકવવી, આ તે બધી ખેડૂતોને ખરેખર એટલી બધી જાણ નથી, તો એ ખેડૂતોને જાણ કરે, એક એ પ્રશ્ન છે।
1: ठीक है, तो कौन जवाब देना चाहेंगे आप में से?
3: वो किसान जानना चाहता है कि जो अफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम है, वो अफ्लाटॉक्सिन क्या है, वो कैसे आती है, कब आती है और उसको मैनेज कैसे करना है। मैं तो बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अफ्लाटॉक्सिन एक एस्परजिलस फ्लेवस करके एक फफूंद आती है, उसकी वजह से लगता है। वो फफूंद जब लग जाती है तो बीज में वो एक जहर बना देती है, और जो खाने के लिए, उसके लग जाने के बाद खाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो वो न आए, इसीलिए आपको पहले से ही जो आप खरपतवार करते हैं या तो इंटरकल्चरिंग करते हैं, तभी से किसानों को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो पौड़ है, मीन्स मूंगफली का जो पौड़ है, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। वो जमीन में से भी आ सकती है और हवा में से भी वो फफूंद आ सकती है, तो पॉट डैमेज नहीं होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के टाइम भी पॉट डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर डैमेज हुआ तो उसको तुरंत ही अलग करके मार्केट में बेच देना है। और फफूंद हार्वेस्टिंग के बाद,
1: आपका कहना है कि जो दाने हैं मूंगफली के, उसमें किसी तरह का नुकसान उसे नहीं होना चाहिए।
3: देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें फफूंद लग गया है।
1: अच्छा,
3: बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर वो जब लग जाता है तो वो अपने आप ही वो पॉइजन शुरू कर देता है।
1: ठीक,
3: तो उसको आने ही नहीं देना। या तो जब आप स्टोर करो, तो पहले से मैंने बता दिया था कि जो 9% से कम नमी होनी चाहिए, तभी आप उसको स्टोर कर सकते। तब तक आपको फील्ड में उसको सुखाना है, और सुखाने के टाइम जो गोडाउन है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो सब ख्याल रखना है। और बीज
1: बचाव ही जो है वो बेहतर उपाय है। चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। एक सवाल आप भी पूछना चाहते हैं?
4: हाँ, मूंगफली नहीं खेती में हमने मूंगफली पाकते समय सफेद फूग आती है, उसका क्या कारण होता है, उसका क्या इलाज है?
3: जो पाकने के समय आप बता रहे हैं, वो पाकने के समय जब मूंगफली में ड्रॉट पानी की कमी आ जाती है, और वो उसकी फफूंद है वो जमीन में ही रहती है या तो बीज से आती है, जो ड्रॉट ड्राई स्पेल मार देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ये जो फफूंद है वो ऑक्सीजन लविंग, उसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिला और ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि किसान हमारे यहाँ सौराष्ट्र के किसान ज़्यादातर इंटरकल्चरिंग करते हैं, और मैंने देखा है कि कभी कभी तो 62 डेज तक इंटरकल्चरिंग करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि 50 दिन के बाद मूंगफली में इंटरकल्चरिंग न करें तो अच्छा है। और जब ड्राई स्पेल आता है तो फैला के पानी दे दे, और जैसे जमीन दबी रहेगी वैसे कम आएगी, और सोइंग के बाद आप उसे प्लेंकर चला के जमीन को दबा दे।
1: ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर जाट से मैं जानना चाहूंगी, जैसे बातचीत में बात आ रही है कि जो मूंगफली है उसमें उचित नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ऐसे में सिंचाई को लेकर हमें जरूर बताएं किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अंतराल होना चाहिए, या फिर जल की जैसी उपलब्धता है इन क्षेत्रों में जहां पर मूंगफली की खेती होती है, ऐसे में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है?
5: जी, वैसे तो मूंगफली एक सूखा सहन करने वाली फसल है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए हमें कुछ ऐसी फसल अवस्थाएं हैं, उस समय पे पानी की कमी नहीं आनी चाहिए।
1: जी,
5: तो शुरू में तो जैसे फसल की बुआई है उस समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए, ताकि उसका जो अंकुरण अच्छे से हो और हमें पौध संख्या सही मात्रा में मिले।
1: जी।
5: फिर उसके बाद में से फूल बनते हैं, फिर सुइयां बनते समय, फली बनते समय और दाना बनते समय, ये ऐसी अवस्थाएं हैं जब जमीन के अंदर जो मॉइस्चर है, नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि हमें ज्यादा उपज मिले। फिर जैसे इसमें ड्राई स्पेल जब बीच में सूखा आ जाता है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से हम अगर इसमें इरिगेशन देते हैं तो कम पानी में हम ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर इरिगेशन कर सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल ले लेते हैं किसान भाइयों से, कुछ और पूछना चाहेंगे आप सवाल? जी, आपने बताया था आपके पास और भी सवाल है, तो बता पूछिए अपना दूसरा सवाल।
2: જે આપણે આગળ વાત થઈ થોડી વાર પહેલા કે તેલ આપણે આયાત કરવું પડે છે બહારથી, અને અહીંયા મગફળીનો એરિયો ઘટતો જાય છે, એની પાછળના કારણો એવા કંઈક મને દેખાય છે કે ખાતર અને જંતુનાશક દવા બધું બહુ મોંઘું મળે છે. તો એના માટે સરકારને બે સોલ્યુશન કરવાની જરૂર છે. એક તો જે ગમે એ દુકાન માંડીને બેસી જાય, ગમે એ પ્રોડક્ટ લઈને બેસી જાય છે એ બંધ કરાવવું જોઈએ, અને જે એગ્રીકલ્ચરની અંદર ભણેલા વિદ્યાર્થીઓ જે અત્યારે એમનેમ રખડે છે, બેકાર બેઠા છે, એને એને લાયસન્સ આપી અને વ્યવસ્થિત દવાઓ પેસ્ટિસાઇડ જે મળે છે માર્કેટમાં, જે ખાતરો મળે છે એ બોગસ કંપનીના ન હોવા જોઈએ, એવું બધું સરકારે થોડુંક ધ્યાન રાખવું જરૂરી દેખાય છે મને.
3: ઇનકા સવાલ થા કે જો હમારે ગવર્નમેન્ટ બતા રહે, સભી એજન્સીયા બતા રહે કે હમારા ઉત્પાદન કમ હો રહા હૈ, લાગત જ્યાદા લગ રહી હૈ, તો ઉસકી વજહ એક હૈ કે જો જિસકે પાસ નોલેજ નહીં હૈ એગ્રીકલ્ચર કા, વો લોગ દુકાન માંડ કે મીન્સ વો શોપ ખડા કરકે પેસ્ટિસાઇડ બેચતે હૈ, દવાઈયા બેચતે હૈ, ઓર કિસાનો કો કોઈ મિલતી જુલતી દવાઈયા દે રહે હૈ,
1: ઠીક હૈ,
3: તો ઉસકી વજહ સે જો કિસાનો કો લાગત જ્યાદા આ જાતી હૈ, તો ઉસકા સુઝાવ હૈ કે ગવર્નમેન્ટ કોઈ એસા સુઝાવ લગાએ કે જો બીએસસી એજી હે ઓ જિસકો નોલેજ હૈ ઉસી કોઈ લાઇસન્સ મિલે.
1: તો ઇન્હોને જો સવાલ પૂછા હૈ ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણન, ઉસકા ક્યા જવાબ દેના ચાહેંગે આપ?
6: ये जो एग्रीकल्चर इनपुट जो है खास करके केमिकल्स, वो जो है इसके एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसमें कई अच्छे कंपनियां भी है, नए कंपनियां भी है, जो लेस पॉपुलर कंपनियां भी है. अब इस पर जो फार्मर को ये जो मिलते हैं ज़्यादातर ये खरीदी होते हैं जो इनपुट ट्रेड डीलर जो बोलते हैं उसके बेसिस पर है. अभी उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इनपुट डीलर जानबूझ के भी कर सकते हैं या दूसरा उनका अनजान होने के वजह से भी. तो अभी उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में इनपुट डीलर्स के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है जो छुट्टी के दिन चलते हैं, जो इसके पूरा जानकारी देते हैं. इसके अलावा भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो इनपुट डीलर्स को इसको ट्रेनिंग देने के लिए. लेकिन ये जो खरीदी है इसमें एक और चीज़ भी है, किसान का जो क्रेडिट है उसे रिलेटेड भी है, तो उसमें भी इनको जो कुछ प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ट्रेडर जो बोलते हैं वो उसको खरीदना पड़ते हैं कई लोगों को. लेकिन इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने का काफी श्रम चल रहे हैं, और दूसरा इसमें कुछ पॉलिसी चेंज भी जहां तक मैं जानता हूं वो सरकार लाने वाला है.
1: जी बिल्कुल, तो सरकारी प्रयासों के बारे में हमें जरूर यहाँ पे दलाल जी बताएं, और साथ ही जो राष्ट्रीय तिलहन मिशन है सरकार का, ये जो बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसके तहत किसानों को किस तरह की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके बारे में भी हमें बताएं.
7: भारत में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम शुरू किया गया, NMOP शुरू किया गया 14-15 में. उससे पहले 13-14 का तिलहन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने किसानों की मदद से 32.75 मिलियन टन तिलहन फसलों की प्रोडक्शन हमारी हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है. उसके बाद जैसा कि राधाकृष्णन साहब ने बताया था कि ये एक, क्योंकि एक शुष्क एक कृषि के अंदर उगाने वाली फसल है, तो ये बहुत ज़्यादा उस पर बारिश पे डिपेंडेंट रहती है. 13-14 के बाद 14-15, 15-16 में बारिश कम रही और टाइम से नहीं आई, इसकी वजह से इसका एरिया घट गया, जो कि 28 मिलियन टन हेक्टर से वो गिर के 25-26 के करीब आ गया. उधर प्रोडक्टिविटी भी गिर गई, क्योंकि सूखा पड़ा, तो प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है वो कम हुई, जो कि 1168 से गिर के ये 968 आ गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा कट के 25.25 मिलियन टन रहा. इसको रिकवर करने के लिए अभी 16-17 में हमारा फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि हमारी उम्मीद है कि 32.10 मिलियन टन प्रोडक्शन होने की संभावना है. एरिया हालांकि उतना ही है 26, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है, क्योंकि 1225 किलो पर हेक्टर हो गई है. इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे जो तिलहन की फसलों में उत्पादन है वो थोड़ा बड़ा है. इसके अलावा जो किसानों को मदद देने के लिए हम सरकार ने डेमोस्ट्रेशन जो है जो हमने चलाए हुए हैं इनपुट से लेके, क्योंकि जैसा कि अभी सभी और विशेषज्ञ भी बता रहे थे, सीड एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी फसल के लिए, तो एक अच्छी किस्म की फसल का बीज होना बहुत जरूरी है. तो इसकी वितरण पे और इसकी प्रोडक्शन के ऊपर ये हमारे इस NMOP प्रोग्राम के अंडर हम इसके अंदर असिस्टेंस देते हैं, सीड एजेंसीज को बढ़ावा देते हैं, ताकि अच्छी किस्म की फसलों का बीज चेन के अंदर आ सके और किसानों को उपलब्ध हो सके. इनपुट के अंदर हम और इनको प्लांट प्रोटेक्शन की जो दवाइयां हैं, जैसा कि अभी कितने किसान पूछ रहे थे कि उनकी फसल के अंदर बीमारी लगती है, उसको उसका समाधान के लिए हम इसके लिए उसको अनुसंधान अनुदान देते हैं. इसके अलावा मैकेनाइजेशन के लिए,
1: अच्छा,
7: हम लोग इरिगेशन के लिए पावर जो स्प्रे वगैरह पंप है उसके लिए भी अनुदान दिया जाता है इन।
1: ठीक है, यानी कि कई रूप में जो सरकार है वो मदद पहुंचाती है किसानों तक, ताकि वो जो मूंगफली की खेती या अन्य तिलहनी फसलों की खेती की तरफ उनका रुझान बढ़े।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ छावा की आवाज़।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत को जिन्होंने चिकित्सा सेवा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम बनाया है। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूपुर प्रसाद जी की, जिनकी यात्रा उपलब्धियों और समर्पण से भरी रही है। डॉक्टर नूपुर जी न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं बल्कि उनके कार्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। वे नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर रही हैं, उन्हें एशिया रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और खासतौर से कोविड काल में उनके उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए उन्हें नारी शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ और साथ ही चिकित्सा एवं सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें सत्य स्त्री सम्मान से भी नवाजा गया है। और साथ ही ग्रामीण राजस्थान से लेकर बड़े चिकित्सा संस्थानों तक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने हजारों महिलाओं के जीवन को स्वास्थ्य और आशा की नई दिशा दी है। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसी यात्रा को जो चिकित्सा सेवा, संघर्ष और संवेदना से होकर गुजरती है और जानेंगे डॉक्टर नूपुर जी के विचार और जीवन की प्रेरणा है। डॉक्टर नूपुर जी, रेडियो एसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आके।
1: तो चलिए नूपुर जी, शुरुआत करते हैं और स्वागत हम आपका एक बार पुनः करें और शुरुआत फिर ऐसे करते हैं, शुरुआत से ही कर लेते हैं, कुछ आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपके उदयपुर की यादों से शुरुआत करते हैं। किस तरह से जीवन यात्रा शुरू हुई, शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए हमें।
2: देखिए, शुरुआती जीवन बहुत ही सामान्य सा रहा है पर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि एक बहुत ही खुशनुमा और धार्मिक परिवार मेरे को मिला। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और माता जी भी जो थी वो एमए इकोनॉमिक्स थी, तो घर में बड़ा पढ़ाई लिखाई का एक अच्छा सा माहौल रहता था। और क्योंकि मैं थर्ड ऑर्डर चाइल्ड थी तो घर वालों की मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था। एक स्वच्छंद उड़ान के लिए मेरे पास एक खुला आसमान था, जो मेरे को अपने बचपन की सबसे अच्छी उपलब्धि लगती है। और स्कूली शिक्षा मेरी सेंट ट्रेजा स्कूल और आरएमवी स्कूल से हुई है, उदयपुर में ही हुई है। उसमें भी मेरा बहुत जबरदस्त वेरिएशन मिला है मुझे। 8th तक सेंट ट्रेजाज में एक डिसिप्लिन कॉन्वेंट की छात्रा से लेकर के सरकारी स्कूल के खुले मैदान तक का अनुभव मुझे है। 8th तक मेरा पूरा फोकस एक आदर्श छात्रा बनने का रहता था, जिसमें कोशिश होती थी कि 3 मेडल्स जो होते थे वहां पे, फर्स्ट इन क्लास, गुड कंडक्ट एंड मॉनिटर, तीनों मुझे मिले। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहती थी। पर जब महिला विद्यालय के उन्मुक्त वातावरण में आई तो मेरी पर्सनालिटी में एकदम बिल्कुल चेंज आया और मैं एक आदर्श छात्रा से एक एक्सपेरिमेंटेटिव किशोरी के रूप में आ गई। और मेरा फोकस जो पहले जैसे खाली लिटरेरी एक्टिविटीज में होता था, उसके साथ साथ अब ड्रामा में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में एंड इवन नेतागिरी में भी आ गया। और फिर उस स्कूल की मैं प्रेसिडेंट भी बनी, हायर सेकेंडरी स्कूल की। और मेरे इस बदलाव के बारे में माता पिताजी को और घर वालों को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। इसका एक बहुत ही सुंदर वाक्य आपको सुनाती हूँ कि हमारे स्कूल में होता था कि जब भी साल खत्म होता था तो पूरे साल भर की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता था। तो ऐसे में मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया गया। हमारी जब सब लोग आकर के बैठे हॉल के अंदर, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बोला, हमारी छात्र कार्यकारिणी की प्रेसिडेंट और वर्ष सो एंड सो की प्रतिभावान छात्र के माता पिता को मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रसाद को आमंत्रित करती हूँ। और उन्होंने इशारा मेरे पिताजी की तरफ किया। पिताजी दाएं बाएं देखे, क्योंकि वो श्रीवास्तव लगाते थे, ही वॉज नॉट नोइंग कि मिस्टर प्रसाद मैं ही हूँ। और दूसरा उनके लिए नई चीज ये थी कि उनकी बेटी वहां की प्रेसिडेंट है, उन्हें ये भी नहीं पता था। तो मतलब इतना खुला हुआ माहौल मुझे मिला, तो जिसमें मुझे प्रगति करने के पूरे मौके मिले। यही है एक छोटी सी कहानी मेरे बचपन की।
1: बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी कहानी सुन के। और कहानी क्या, मतलब जिस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, एक बिल्कुल एक उन्मुक्त आकाश आपने जिया है, वो बहुत ही खूब से। अब थोड़ा सा आगे चढ़ते हैं। अब ये बताइए कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली में शुरू में ही आपका एक फैसला था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्या ऐसा कोई सपना था, या परिवार वालों ने आपको कहा डॉक्टर बनिए, क्योंकि पहले डॉक्टर और इंजीनियर दो ही बनते थे बच्चे?
2: देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो एक जियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बनने की प्रेरणा मेरे परिवार ने ही दी है, और खासतौर से मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई ने। वो भी कुछ परिस्थितियां के आन पे बनाई थी हमारी, तो इसलिए बनना ही था अपने आप को प्रूव करने के लिए। और एक बार जब उसमें एंटर हो गई तो फिर उसके बाद मजा आने लग गया। तो ये सबका मिला जुला जो था आउटकम था कि मैं डॉक्टर बनी हूँ।
1: चलिए, ब्यूटीफुल। तो आपने आरएनटी मेडिकल कॉलेज, वो भी काफी एक रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां से आपने ग्रेजुएशन किया अपना, और फिर आपने ये डिसाइड किया कि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगी। तो ये किस तरह से हुआ, किस तरह से आपने अपना स्पेशलाइजेशन चुना?
2: देखिए, एक तो पहले उस वक्त ये बड़ा था कि जो टॉपर्स होते थे ना, उनको दो ही सब्जेक्ट लेने होते थे, ये एक ट्रेंड था, आइदर दे गो फॉर मेडिसिन और फॉर गायनी। तो लड़के जो थे वो मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स में जाते थे और लड़कियां गायनी में। तो ये एक एडवांटेज मेरे पास था।

0: उसके साथ ही मेरी एक प्रोफेसर थी डॉक्टर तारा माथुर, वो मेरी एक आइडियल रही है लाइफ में। शुरू से ही मैं उनके जैसे व्यक्तित्व को जीना चाहती थी जिंदगी में। और वो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी और मेरी गाइड भी थी, बाद में मेरी पीजी टाइम में गाइड भी बनी वो। और इसके साथ मेडिसिन में मेरे को सबसे अच्छी गायनी इसलिए लगती थी क्योंकि इसमें जब भी कोई पेशेंट जाता था ना घर, तब हम उसको डबल खुशियां देते थे, जनरली ऑब्स्टेट्रिक पार्ट में, कि माँ भी क्योंकि फर्स्ट टाइम माँ बनी है इसलिए उसको खुशी मिलती थी, और जो उसको एक नया बच्चा मिलता था तो हम एक डबल खुशी के साथ उसे भेजते थे। तो ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग लगा मुझे, तो इसलिए है ऑप्टेड फॉर गाइनी।
1: ये बात तो बहुत खूबसूरत बात बताई आपने कि एक यही एक ऐसी ब्रांच है, ऐसा स्पेशलाइजेशन है जब आप किसी को भी डबल खुशी देंगे। जनरली तो आप बीमारी का इलाज करते हो, वो आदमी अपनी परेशानी लेके आता है, उसका इलाज सर्जन भी करता
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: मेडिसिन वाले भी करते हैं, लेकिन ये
0: जी
1: एक ऐसी ब्रांच में आप उसको पेन से रिलीफ भी कराते हो और जो समस्या होती है वो दूर हो, तो साथ में एक बोनस उसको एक एक बच्चा भी साथ में जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो चलिए इस खूबसूरत बात पे रुक के हम एक गाने का आनंद लेते हैं। एक जो जिंदगी एक नई जो साथ में जाती है उसके साथ एक गाने का आनंद लेते हैं और एक पॉज ले लेते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर उपुल। अब थोड़ा सा हम आपके प्रोफेशनल कैरियर की तरफ आते हैं, बातचीत करते हैं। आपने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर SMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तक की आपकी ये जो चिकित्सा यात्रा है, ये कैसी रही? कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे अनुभव रहे आपके इससे, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: कि जिंदगी ने जहां मुड़ा वहां मैं मुड़ी और बड़ी सहजता से मुड़ी। मतलब कहीं मैंने रेजिस्ट नहीं किया लाइफ को। तो इनिशियली मेरी शुरुआत एक गुनेड़ा नाम के छोटे से लास्ट गांव है राजस्थान का टुवर्ड्स हरियाणा, वहां पे शुरू हुई थी। और वो एक ऐसा गांव था जहां पे कि न तो पानी की कोई व्यवस्था थी और बिजली भी दिन भर में 2-3 घंटे ही आती थी। पर ठीक है, वहां पे भी अच्छे से काम किया और पूरी अपनी स्पिरिट को जिंदा रखा। वहां पे हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वहां पे एक OT एस्टेब्लिश किया, जबकि वो एक PHC थी। और वहीं पे हम लोगों ने 2 रिसर्च पेपर्स भी निकाले। तो कभी भी कोई परिस्थिति हमारे लिए रुकावट का साधन नहीं बन पाई। उसके बाद हम विभिन्न चिकित्सालयों में जिला स्तर पे भी रहे, फिर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में भी रहे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, डायरेक्टरेट में रहे। वहां पे एड्स कंट्रोल सोसाइटी में मैंने करीब 7-8 साल काम किया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा मेरी जिंदगी का। फिर NRHM जो प्रोजेक्ट है उसमें काम करने का मौका मिला मेरे को करीब 5 साल। तो वहां पे जो JSSY जो प्रोग्राम चलता है गर्भवती महिलाओं को, उसको लॉन्च करने में की रोल मेरा ही रहा वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे मेरे को अनुभव मिले। और इसके साथ ही जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे NACO है, NRHM है, ऐसी संस्थाओं में राज्य को कई बार रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला मुझे दिल्ली के अंदर। एक बार तो जैसे मैं आपको बताऊं कि सेफ अबॉर्शन की गाइडलाइंस बन रही थी फॉर सार्क नेशंस, एंड समहाउ ईश्वर की एक कृपा हुई कि सब मुझे इंडिया का जो टीम गई थी उसके अंदर भी भागीदारी निभाने का अवसर मिला। तो भगवान ने मौके तो हर लेवल के हर जगह बहुत दिए, और रिकॉग्निशन भी दिया और सेटिस्फेक्शन भी दिया।
0: बहुत खुशी है, बहुत बहुत ही सहजता से आपने बता दी इतनी सारी उपलब्धियों के बारे में। अब थोड़ा सा आपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम किया है, तो ये बताइए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं होती हैं, तो
1: जी
0: आपने उनको क्लोजली ऑब्जर्व भी किया होगा, तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई खास समस्या है जो आपने देखी है, जो खास तौर से
1: देखिए,
0: ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है?
1: हाँ जी हाँ जी, देखिए समस्याएं तो ग्रामीण और शहर को देख के नहीं आती। समस्याएं तो व्यक्ति में होती हैं, लेकिन गांव के अंदर जो एक एडिक्ट फैक्टर है, दैट इज इग्नोरेंस। उन्हें पता नहीं है चीजों के बारे में, उन्हें पता नहीं है ये सामान्य है या असामान्य है। वो उसको जिंदगी का पार्ट समझ के जीती हैं, तो इसलिए रोग भी बढ़ जाता है उनका। साथ ही अगर उनका कोई डायग्नोस भी हो जाता है, कुछ डायग्नोसिस हो जाता है, तो पहले तो डिनाइल फेज में जाती हैं बहुत ज्यादा, कि नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं है। फिर अगर फिर भी आप उनको किसी तरह कन्विंस कर लो, तो फिर वो इनडिफरेंस पैदा कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो तो प्रायोरिटी में हमेशा अपने आप को सबसे नीचे ही रखती हैं। तो ग्रामीण महिलाओं को मोटिवेट करना टू टेक ट्रीटमेंट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। भाई अवेयरनेस तो हम पैदा कर लेते हैं IEC के माध्यम से, लेकिन उनको मोटिवेट करना और उनको ट्रीटमेंट की कंप्लायंस एंश्योर करना, ये एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। ये थोड़ा फर्क है शहर वालों से।
0: अच्छा, मैं वैसे ही बाय द वे अब तक अब सवाल पूछ रहा हूँ, जो ग्रामीण महिलाओं को आप ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी मेडिसिन बताती होंगी, तो क्या ये किस तरह से इंश्योर कर पाते हैं कि ये उसको रेगुलरली ट्रीटमेंट को ले रही है, नहीं ले रही है? क्या इनके हस्बैंड्स को भी या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी एजुकेट करती हैं, को समझाती हैं कि भाई ये दवाई इस टाइम लेनी है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, क्योंकि
1: देखिए
0: वही
1: कोशिश,
0: इग्नोर।
1: जी
0: हाँ
1: कोशिश तो जनरली ये है कि जो साथ में आया है उसे भी समझाया जाए। और ग्रामीण परिवेश में जनरली हस्बैंड्स नहीं आया करते साथ में, उनके साथ में या तो उनकी सास आएगी या जेठानी आएगी या ननंद आएगी, इस तरह के रिश्ते आते हैं। तो उसमें कंप्लायंस इसलिए मुश्किल हो जाता है कि वो लोग उनके साथ नहीं रह रहे होते। हस्बैंड तो साथ रहता है, अगर उसको समझा दो और वो आ जाए, तो कंप्लायंस, एक बेटर कंप्लायंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ननंद है अपने घर चली गई, जेठानी अपने घर चली गई एक बार दिखा करके, तो कंप्लाइंस वहां पे मुश्किल है, काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब जागरूकता आ रही है धीमे धीमे, वो भी अवेयर हो रही है अपनी हेल्थ के लिए, तो पहले से तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं अब।
0: तो चलिए, इसी ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने सेवाएं दी हैं और जो आपके अनुभव रहे हैं, उसकी बात पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर अपनी बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर नूपुर। अब ये बताइए कि जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि आप एड्स और जो भी इस तरह के गवर्नमेंट के कैंपेन्स हैं, अभियान हैं, उनसे जुड़ी रही हैं, तो एड्स और मातृ स्वास्थ्य अभियानों में इतना काम किया है आपने, तो उस दौर में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या अवेयरनेस, क्या चैलेंजेस आपको फेस किए आपने?
1: देखिए, ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि एड्स आता है और मातृ स्वास्थ्य आता है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था की उपज हैं। मतलब हमारी व्यवस्था है, हमारी जो समाज है, हम जो जो हमारी मतलब हमारा जो जीवन है उसके अंदर जैसे महावारी है, गर्भावस्था है, यौन संबंध है, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है। तो इनसे रिलेटेड परिस्थितियां भी लगातार पैदा होती रहती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक चीज का उन्मूलन कर दिया तो वो आगे कभी नहीं होगी। जैसे साहब हमने कह दिया कि हमने चेचक का उन्मूलन कर दिया एक बार, तो वो प्रॉब्लम घूम के नहीं आएगी। ये तो ऐसी है क्योंकि ये प्रोसेसेस लगातार हैं, सतत प्रक्रियाएं हैं समाज की, तो इनमें प्रॉब्लम्स भी और परिस्थितियां भी नई आती रहती हैं। तो ये एक तरह का चैलेंज है कि इसमें रेगुलर आने वाली परिस्थितियों को हमेशा साथ के साथ डील करना पड़ता है। एक बार के निराकरण से इनका पूरा निराकरण नहीं होता। तो बेसिकली सिस्टम हैज टू बी ऑन टोज ऑलवेज। मतलब आप रिलैक्स नहीं कर
0: सिस्टम भी टोस पे होना चाहिए, और अवेयरनेस भी लोगों के अंदर,
1: हाँ जी,
0: समाज के
1: हाँ
0: अंदर
1: जी,
0: और पेशेंट्स
1: मतलब
0: के
1: बिल्कुल
0: अंदर।
1: जिसको बोलते हैं ना, पूरा समाज ही इसका निराकरण की जरूरत होती है। आप छोड़ नहीं सकते इसको। एक तो इसका ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आप रिलैक्स नहीं कर सकते, और दूसरी बड़ी चुनौती ये हमारी जो प्रचलित धारणाएं हैं, महिलाओं महिलाओं से जुड़े रोग, एड्स उससे जुड़ी धारणाएं, वो इस तरह से अंदर से गहरी जड़ों में समाई हुई हैं कि उनका भी निराकरण करना है और साथ में रोग का भी उपचार करना है। तो इन दोनों को साथ में डील करना भी एक चुनौती होती है, दोनों ही विषयों में।
0: अच्छा डॉक्टर नूपुर, आपका इतना लंबा अनुभव है, कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा मरीज, कोई ऐसी बात जो आपको उससे जुड़ी हुई याद रहती है, जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, आज भी आपको याद आ जाती है, अरे वो मरीज ऐसा था या वो ऐसा मेरा अनुभव था, कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे?
1: ऐसे किस्से तो काफी होते रहते हैं। कभी कोई इनफर्टिलिटी का केस होता है, सालों से उसने कंसीव नहीं किया है और वो कंसीव कर जाता है, तो आपको जो दिली खुशी होती है वो बयान नहीं की जा सकती। या कभी आप कोई अनयूजुअल चीज को डायग्नोस करते हो। पर एक चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा दिल में जिसने छुआ है वो ये है कि जब मैं पहली बार HIV पॉजिटिव बच्चों से मिली थी, जब उनसे मिली तो मैं अंदर से हिल गई। वो बेचारे इनोसेंट सफरर्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है उनकी, और वो भी बिना उनके किसी कसूर के। तो उनको जो जब देखा था तब रियली जिसको बोलते हैं ना, अंदर से हिलने वाली फीलिंग हुई थी। और पहले तो मैं RSEX के माध्यम से, और मेरी क्योंकि जॉब का पार्ट था, मैं उनसे जुड़ी हुई हुई थी और उनके लिए जो भी कर सकते थे वो हमने जॉब में रहते हुए किया। पर आज भी मैं उन संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जो कि HIV पॉजिटिव बच्चों की केयर करते हैं, और मैं यथासंभव उसमें सहयोग देती हूँ। तो वो एक ऐसा है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है।
0: नहीं, सही बात है, बच्चों को अगर ये बीमारी हो जाए जबकि बिना उनके किसी कसूर के, तो ये तो बहुत ही
1: जी
0: चिंताजनक है। तो अब आप रिटायरमेंट के बाद में चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे रही है, ये इतनी समर्पण और इतनी मेहनत आप कैसे करती हैं, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: ये कोई समर्पण नहीं है, ये तो एक्चुअली आपने पूरा अपना जीवन जिया है। आपने अपनी स्किल्स को पहले एज बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट, आपने वहां पे सर्विसेज दी हैं, अभी भी आपके पास स्किल है, आप में कैपेसिटी भी है, तो उसी से किसी को फायदा हो जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इट्स नॉट अ समर्पण, इट इज जस्ट कि भाई हम क्या दे सकते हैं समाज को, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समर्पण तो बहुत बड़ा बड़ा शब्द हो जाता है।
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये एक तरह की खासियत तो है ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद में ऐसे ऐसे जॉब्स में लग जाते हैं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जहां उनको सिवाय एक कमाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। अगर उस रास्ते को छोड़ के आप इधर मुड़ रही हैं तो ये एक तरह का एक बहुत बड़ा
1: नहीं,
0: डिसीजन
1: वो
0: है, ये
1: शायद
0: बात
1: मुझसे ज्यादा मेहनती लोग हैं, वो मुझसे ज्यादा मेहनती लोग
0: ये बड़ा लंबा विषय है।
1: हैं।
0: चलिए, तो इसी बात पे रुक के, जो आप में एम्पैथी है लोगों के प्रति, उस पे रुक के
1: जी
0: हम एक गाना सुनते हैं और फिर बातचीत को जारी रखते हैं।
1: जी

0: तो चलिए डॉक्टर नुपुर, अब एक आपके दूसरे रूप के बारे में बात करते हैं। आपका जो पर्सनालिटी का एक दूसरा आयाम है उसके बारे में बात करते हैं। आप एक प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना भी हैं, तो कथक सीखने की शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे इंटरेस्ट आया है इसमें?
1: देखिए, इसमें भी मेरे मैं अपने परिवार को ही इसका श्रेय दूंगी, क्योंकि जब 6-7 साल के हुए थे तब मम्मी डैडी ने ही हमको म्यूजिक स्कूल में डाला था, हम तीनों भाई बहनों को। हाँ, ये चॉइस उन्होंने हमको दी थी कि तुम्हें जो सीखना है तुम सीख सकते हो, पर म्यूजिक को वो बहुत जरूरी समझते थे लाइफ में, तो हम तीनों को उन्होंने म्यूजिक स्कूल भेजा। तो उसमें, क्योंकि कथक बहुत ही हाई एनर्जी डांस है, बहुत ही एक्सप्रेसिव डांस है, और उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन भी है। हमारे जो सर थे वो मथुरा प्रसाद संगीत विद्यालय, गांधर विद्यालय से कनेक्टेड थे वो, तो उसमें जो मतलब डिसिप्लिन मिला, जो हाई एनर्जी मिली, उसने मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। तो मेरे को बस उसमें फिर रुचि हुई, और हमारे सर भी बहुत अच्छा डांस करते थे वहां पे, जो ऑलरेडी पहले आते थे बड़े। उसमें हम लोगों के टाइम की जो एक नृत्यांगना है उसको आप सब लोग जानते हो, प्रेरणा श्रीमाली जी हैं, जो कि उस टाइम उन्होंने शुरू शुरू में वहां पे शुरू किया था, उनका बिल्कुल शुरुआत थी वहां पे। तो उनका उनके साथ भी हमें देखने का सौभाग्य मिला। तो ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे लाइफ में कि भाई इतने अच्छे अच्छे लोगों को देखा तो मन किया। जी,
0: अच्छा, तो इसके कथक के अलावा आप संगीत है, पेंटिंग है, कविता भी आप लिखती हैं और फिर कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं
1: ये
0: जैसा लोगों ने बताया है। तो ये जो शौक है आपको किस तरह से लगे और किस तरह से ये लाइफ को बैलेंसिंग कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: देखिए, ये सारी मेरी हॉबीज समय के साथ में धीमे धीमे डेवलप हुई हैं। मतलब जहां जिसकी जरूरत पड़ी उस चीज को डेवलप किया है। मतलब विवाह से पूर्व कुकिंग नहीं आती थी, पर बाद में मदर इन लॉ बहुत अच्छी कुक मिली, साथ में हस्बैंड ने भी बहुत जबरदस्त एक्सपोजर दिया, डिफरेंट होटल्स में ले जा करके। तो मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कुकिंग में, एंड डेफिनेटली अब कुकिंग में पूरा इंटरेस्ट है मुझे। और उसके साथ ही जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ भाव होते हैं लाइफ में, या कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनको हम शब्दों में कन्वे नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी को, या हम उनको किन्हीं कारणों से व्यक्त नहीं कर पाते, तो उनको अभिव्यक्ति देने के लिए फिर मैंने इसमें जैसे कविताएं लिखना शुरू किया, पेंटिंग शुरू करी। क्योंकि हर चीज को आप कह नहीं सकते, वो आपकी खुद की अनुभूति होती है, आपको समाज का भी डर होता है कहें कि नहीं कहें, और कहीं अभिव्यक्त भी करना होता है। तो उसमें फिर मेरे को ये कविता है, पेंटिंग है, ये बहुत अच्छे माध्यम मिले। ये बहुत ही रिलैक्सिंग है मेरे लिए, और लाइफ की जीवंतता भी बनी रहती है, थोड़ी गति भी बनी रहती है इससे, तो अच्छा लगता है लिखने में। बाकी
0: चलिए, बहुत बढ़िया।
1: प्रोफेशनली कभी ऐसा सोचा नहीं।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। तो इतने कम डॉक्टर्स होते होंगे जो अपनी स्किल सेट के अलावा, अपनी नॉलेज के अलावा, इस तरह की भी, जो मेडिकल नॉलेज के अलावा भी इस तरह की सब चीजों में उनको इंटरेस्ट होता है। अच्छा, कुकिंग पे थोड़ी मैं बात और करना चाहूंगा। कोई
1: जी
0: ऑफ द कफ सवाल है, कोई ऐसी कोई खास डिश हमारे लिस्टर्स के लिए बताना चाहें जो आपकी स्पेशलिटी हो, जो आप बहुत अच्छी बनाती हो और आपको लगता है कि, और
1: देखिए,
0: सिंपल भी हो बनाने में, ऐसी कोई डिश के बारे में बताइए।

0: हाँ डॉक्टर नुपुर, तो इस
1: जी
0: समय आप शास्त्रीय संगीत भी सीख रही हैं। अब ये बताइए कि ये इसके पीछे क्या ट्रिगर था, कोई खास व्यक्ति या कोई घटना आपको लगा कि मेरे को संगीत सीखना चाहिए, और कुछ कैसे रहा ये शास्त्रीय संगीत, और कौन
1: देखिए,
0: सी
1: जैसे मैंने
0: शास्त्रीय?
1: जी मैंने आपको बताया, जैसे बचपन में हम तीनों को म्यूजिक स्कूल भेजा गया था। मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, तो शी स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल। तो उस चीज ने मेरे को कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा मेरे मन में थी, और अब मेरे पास समय भी है रिटायरमेंट के बाद में, मुझे अच्छा पहले भी लगता था, और तो इसलिए मैंने जो है सीखना शुरू किया। फिर इसके साथ ही इस एज में थोड़ा फिजिकली फिट भी रखता है, लंग्स वंग्स को स्ट्रांग रखता है, तो मेरी जो फिजिकल हालत है उसके हिसाब से भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है म्यूजिक।

0: यही है इसका रीजन, तो और कोई खास नहीं।
1: तो श्रोताओं देखिए, ये खास बात जो एक डॉक्टर बता रही है आपको कि संगीत से बाकी चीजें तो जो होती हैं वो अच्छी होती हैं जीवन में, लेकिन आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, आपके लंग्स की पावर बनती है, बढ़ती है। तो ये एक खास बात है संगीत के, और जो एडवांटेजेस है, लेकिन कोलेटरल एडवांटेज एक ये भी है। तो चलिए डॉक्टर नूपुर, ये बताइए कि आपके प्रिय गायक या गायिका कौन से हैं, कोई खास गीत जो आपको याद आता हो उसके बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है?
0: हाँ, बड़ी पुरानी सी पसंद है मेरी, मेरे को तलत महमूद बहुत पसंद
1: हाय
0: है,
1: हाय
0: और उसकी उनका भी खास तौर से दिले नादान तुझे हुआ क्या है, ये मेरा पसंदीदा गाना है। इसके अलावा ये हवा ये रात, वैसे दो तीन गाने हैं, जलते हैं जिसके लिए,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुजाता
0: तो
1: का बहुत बढ़िया।
0: हाँ जी हाँ जी, तो ये कुछ गाने हैं जो मुझे पसंद है उनके, मैं सुनना पसंद करती हूँ जब अकेली होती हूँ तब।
1: बहुत बढ़िया, क्या मखमली आवाज है, तलत महमूद मेरे भी फेवरेट हैं और मैं भी बस उनको ही सुनना पसंद करता हूँ। और उनके
0: जी
1: जो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, अगर मिर्जा गालिब फिल्म का जो गाना था तो
0: जी
1: वो बहुत बढ़िया था। तो चलिए यहाँ रुक के गाना सुन लेते हैं, आप करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं, बस
0: हाँ जी
1: एक दो सवाल और फिर हम इसको रैप अप करते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी

0: हाँ डॉक्टर अनुपुर, अब देखिए आपने इतना अच्छा जीवन जिया है, इतने सारे अनुभव हैं आपके साथ में, मेडिकल फील्ड के भी हैं, मेडिकल फील्ड्स के परे के भी अनुभव हैं, तो आप ही बताइए कि जिंदगी में सक्सेस या सफलता को आप किस रूप में देखती हैं, उसको क्या आप उसके बारे में क्या सोचती हैं?
1: सफलता यानी देखिए, सफलता की सबकी परिभाषा अलग अलग होती है। मेरे निगाह में तो एक सहज, सुगम, थोड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड सी लाइफ अगर बीत जाए आपकी तो सफल जीवन है। और एक ऐसा जीवन जहाँ पे कि प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी एक सामंजस्य हो, और ना तो आप किसी तरह से डिप्राइव्ड फील करें, ना आपका कोई फैमिली मेंबर करे। क्योंकि अगर फैमिली में रह रहे हैं तो उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, और वो भी डिप्राइव फील ना करें। इससे अच्छा जीवन कुछ नहीं हो सकता।
0: ब्यूटीफुल, ये खास बात है, जो लोग सफलता को, सक्सेस को पावर, पैसे से जोड़ते हैं, उनके लिए कितना बहुत ही सटल संदेश दिया है आपने कि एक सहज जिंदगी जीना, एक नॉर्मल जिंदगी जीना, एक अनकॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जीना, वो है जो आपको सेटिस्फाइड रखता है, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको एक तरह से सफल भी माना जा सकता है। बहुत बढ़िया बात। तो अब अंत में डॉक्टर निपुर, हमारे श्रोताओं को कोई आपका संदेश हो वो दीजिए, आप कोई कविता की पंक्तियां सुनाना चाहें, कोई गुनगुनाना चाहें, तो आपका स्वागत है, मंच आपका है।
1: देखिए, एक जो गीत है वो मेरे को काफी पसंद है और मैं उस पे अमल करने की भी कोशिश करती हूँ। हालांकि गाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर गुनगुना के देखती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।

0: बेसिकली इस इन दो लाइनों ने मेरे को बहुत अफेक्ट किया है कि जीवन में जो भी पल, जो भी मौके या जो भी अवसर जब भी आए उनको पूरा 100% जी लो, क्योंकि अगर एक बार निकल गया ना वो समय तो वो वापस नहीं आएगा, और जो खुशी उस मोमेंट पे मिलती है वो शायद हमें बाद में ना मिल पाए, पर साथ ही में हम कुछ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव भी हो पाएंगे क्योंकि वो मौका हमको ऊपर वाले ने दिया है। तो कोई भी मौका छोड़ना नहीं है, वो मतलब लौट के नहीं आएगा। तो ये मेरी थोड़ा संदेश है, चाहे आप इसको संदेश समझ लें या मेरी लाइफ का मोटिवेटिंग सेंटेंस समझ लें, यही है। और क्योंकि अब अंत में नियति सबकी एक ही होनी है, और एक मेरे हिसाब से एक शाख के पत्ते के समान होती है जिसको मैंने कुछ पंक्तियों में ढाला है। हवा से हाथ मिला, हवा से हाथ मिला, उड़ चला बेपरवाह आवारा, पता देता रहा सदा दरख्त का जिससे वो था उगा। संग हवा के मटकता रमकता लहकता चहकता, रहा नापता अनगिनत दूरियां, कभी उलझता कभी संभलता, न था डर न थी मजबूरियां। पर रियलिटी ये, हवा तो हवा थी, कभी यहां तो कभी वहां थी, जाने कब कहां हो गई, क्यों और कैसे बेपरवाह हो गई। लड़खड़ा गया डगमगा गया, लड़खड़ा गया डगमगा गया, खोजता अपना पता वो अकेला पत्ता, पर अब न हवा थी न दरख्त था केवल एक स्तब्ध पत्ता, एक अकेला लापता पत्ता। दिस इज ऑल, थैंक यू।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। आपका पहला गीत आपने आपकी कसम का गाया था, वो मेरा भी फेवरेट गाना है। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर भी थी और ये खूबसूरत गाना था, और ये कविता तो बिल्कुल एक जीवन की एक ये यात्रा है जैसी हम सबकी है, उसके बारे में इतनी खूबसूरत तरह से आपने सारी बात बता दी है, तो मजा आ गया बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: तो डॉक्टर की बात बता दी है, तो मजा आ गया बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: तो डॉक्टर नुपुर जी, आज आपने जिस आत्मीयता से अपने अनुभव, संघर्ष, संवेदनाएं और जीवन दर्शन हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए हैं, उसके लिए हम आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
0: मेरा भी जीवन के रंग गीत के संग को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक अभिव्यक्ति का मंच दिया। धन्यवाद।
1: तो चिकित्सा सेवा के साथ साथ कला, संगीत और संस्कृति के प्रति आपका प्रेम वास्तव में जीवन को संतुलित और सुंदर बनाने की प्रेरणा देता है। हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह स्वस्थ, सक्रिय और प्रेरणादायी बनी रहें और समाज को अपनी सेवाओं तथा सकारात्मक ऊर्जा से निरंतर समृद्ध करती रहें। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आलोक कुमार आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो SN। थैंक यू
2: दोस्तों। जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक था भिखारी। रेलवे में सफर करते हुए भीख मांगने के दौरान एक बार एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे यार तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे पाऊं। सेठ बोला, देखो जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं भाई। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुमको बदले में कुछ दे पाऊंगा। तभी स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया।
उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए।

दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए खुद को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और समझने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान है वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, यदि लोग गलतियों से सबक लेते हैं तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है? हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

अथी क्रिकेट खेला, अखाड़ों में कुश्ती लड़ी, वर्जिश की। अपने उस्ताद के पैरों और पीठ पर सरसों का तेल मला, कुछ दाव लगाने सीखे और फिर उस्ताद के कहने पर पास के गांव में लगने वाले मेले में आयोजित दंगल में भाग लेने जाता था। उन दिनों तीन रंगों की लंगोट हुआ करती थी, लाल, सफेद और काली। उन तीन रंगों में से मैंने अपने लिए लाल रंग की लंगोट चुनी। लफंगों के साथ जंगल में खूब भटका, ज्यादातर दोपहरें पेड़ों पर गुजारी, कबूतरों के पीछे भागा, तीतर बटेर का पीछा किया, उन्हें कीटनाशक डीडीटी पाउडर खिलाकर मारा, फिर लकड़ी पर सेक के खाया। यही वो दिन थे जब मैंने बीड़ी पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट, फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं, बादलों का धुएं से क्या संबंध है। शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं। तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल

तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में ठूंस दिया जाऊं। खुले आसमान के नीचे मैं अपने घर की टीन की चादरों पर सोए हुए इन्हीं सारी कल्पनाओं में खोया रहता था। कभी आसमान का तारा बन जाता तो कभी जंगल का कोई कांटा। फिर एक दिन मैंने अपने पुरखों से सुना कि मरे हुए लोगों का पेट भरने और उनकी प्यास बुझाने के लिए कौवे छतों पर आते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की तीन बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी, ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा। ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की तीन बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया। दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं। किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था। अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा? राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका? मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान। जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब? राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों, खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993, यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में

सांप सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से
2: टूटा तारा देखकर दिल ने कहा, टूटा तारा देखकर दिल ने कहा, मांग ले तू फरियाद कोई। मैंने कहा जो खुद टूट रहा है, मैंने कहा जो खुद टूट रहा है, कैसे पूरी करेगा वो मुराद कोई। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो तांतिया भील के साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, संगीत का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये दूरियों को मिटाकर दो दिलों को एक धड़कन से पिरो देता है। आज की इस सुहानी शाम को हम एक बार फिर से निकल पड़े हैं फोन की घंटियों के जरिए एहसासों के एक नए सफर पर। देश के अलग अलग कोनों से हमारे दोस्त आज हमसे फिर से जुड़ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मिलाते हैं आज के सफर की पहली फोन कॉल। टन टन टन टन।
3: हेलो
2: हेलो गीता, हाउ आर यू?
3: या आरती जी, नाइस, सो नाइस टू हियर यू। बोलिए
2: कैसी हैं आप?
3: हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: मैं भी ठीक हूँ गीता। अपने फरमाइशी प्रोग्राम के लिए अब मैंने आपको नाम सिलेक्ट किया है। मैंने सोचा अपनी गीता से भी पूछा जाए कि उनकी कौन सी फेवरेट गजल और सिंगर है, तो आप हमें बताइए कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है।
3: मेरे तो आरती जी, मेरे तो एक सिंगर फेवरेट ऐसा नहीं है, सारे सिंगर फेवरेट हैं। पर आज मैं फरमाइशी जो करूंगी वो मेहंदी हसन साहब की एक गजल के लिए।
2: बहुत जरूर। तो आपके आज के फेवरेट गजल सिंगर हैं मेहंदी हसन साहब, राइट? तो आप मेहंदी हसन साहब की कौन सी गजल आपको पसंद है?
3: ये गजल जो है ये रोशन जमाल यार, ये हसरत मोहानी जी की, उनकी वो है लिरिक्स हैं।
2: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो गीता जरा गा के तो सुनाओ इतनी खूबसूरत गजल।

0: ऐसा कुछ है
1: बहुत
0: मैंने ऐसा गाया नहीं, गुनगुनाया।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेहदी हसन को ऐसे गा लेना ये सबके बस की बात नहीं है गीता, बहुत सुंदर गाया। ये तो बताओ गीता के ये गजल आपको इतनी क्यों पसंद है?
0: ये राग पटदीप पर आधारित है ना, जैसे हमारा फिल्मी सॉन्ग है ना,
1: जी
0: फिल्मी सॉन्ग जैसे मेघा छाए अंधेरा बन गई, सेम राग पटदीप, वेरी स्वीट मेलोडिक सॉन्ग।
1: सुंदर गाया आपने, बहुत खूबसूरत। तो ये इस राग बेस्ड है इसलिए आपको पसंद है, तो इससे आपका रागों के बारे में हमें समझ में आ गई कि आपका बहुत नॉलेज है आपको। बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा गीता इतनी खूबसूरत फरमाइश के लिए। तो फिर चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की ये गजल, और अपने सुनने वालों को भी सुनाते हैं, अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं। थैंक यू सो मच गीता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू
0: आरती जी फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। आइए दोस्तों सुनते हैं अब ये गजल।

सीख ली।

0: शहनशाह गज़ल खान साहब मेहती हसन साहब की ये तारीखी गज़ल रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। और कमाल की बात ये है कि चेन्नई से जुड़ी हमारी बैंकर दोस्त गीता मनी जी को क्लासिकल म्यूज़िक की इतनी गहरी समझ है दोस्तों कि उन्होंने अपनी कॉल के दौरान ये भी कहा, उन्हें ये भी मालूम है कि ये गज़ल राग पटदीप पर आधारित है। अभी हाल ही में आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों हमने गीता जी की खूबसूरत गायकी का जादू तो सुना ही था। गीता, आपकी गायकी की तरह आपकी पसंद भी बहुत शानदार है। आपने तो हमारी आज की महफिल में आते ही चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया गीता हमारी महफिल में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब चेन्नई से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी अगली फोन कॉल, देखते हैं कौन है उधर। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो राकेश जी, मैं आरती रॉय बोल रही हूँ।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार नमस्कार राकेश मुंशी देसाई।
1: हाँ मुझे मालूम है, गीता गीता मनी ने आपका परिचय दिया था, आपका नंबर भी दिया था कि आप हमारे प्रोग्राम में अपनी फरमाइश की गजल सुनना चाहते हैं, और इसलिए मैंने आपको फोन किया। आप गीता मनी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो अब आप हमारे भी दोस्त हुए। तो ये बताइए राकेश जी, आप दिल्ली में रहते हैं ना?
2: हाँ हाँ, हम दिल्ली के पास ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, वहीं पे ही रहते हैं। एनसीआर पार्ट भी है ये।
1: ठीक है,
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये बताइए राकेश जी, आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: मेरा गजल फेवरेट तो बेगम अख्तर है, बेगम अख्तर की।
1: अच्छा,
2: यस।
1: तो आज आप बेगम अख्तर साहिबा की गजल सुनना चाहेंगे, लेकिन कौन सी?
2: वो उनकी एक गजल है, फिर मुझे दीदाए तर याद आया।
1: वाह वाह, बहुत
2: वो एक तरह, वो बहुत ही टचिंग गजल है, बहुत इमोशन है उसमें, इसे वंडरफुल पीस। हालांकि उनकी नंबर ऑफ गजल्स है, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है, मतलब कितनी मैं गजलें बताऊं उनकी, लेकिन ये पर्टिकुलरली ये तो बहुत ही
1: आपको बहुत पसंद
2: बहुत,
1: है?
2: बहुत, बहुत बहुत पसंद है।
1: तो राकेश जी जरा फिर हो जाए एक लाइन गा के तो सुनाइए, आप इतने डाई हार्ड फैन लग रहे हैं बेगम अख्तर साहिबा के।
2: बिल्कुल, एक एक एक लाइन सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आई डोंट नो
1: कोई नहीं
2: कैसा गाता हूँ, फिर कोशिश कर लेता हूँ।
1: हाँ हाँ, बस और क्या।
2: फिर मुझे दीदाए तर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तश्नाए तर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया।
1: वाह,
2: कैसी वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के

0: क्या? क्या बात है, आप कहते हैं आप गाते नहीं, आप खूबसूरत गाते हैं, यानी बेगम अक्तर साहिबा की गजल को अटेम्प्ट करना बिना गाना जाने नहीं हो सकता।
1: बेगम अक्तर की मतलब मैं एक्चुअली बेगम अख्तर, केएल सहगल, मतलब इनको बहुत सुना है, मतलब क्या टैलेंट था, क्या टैलेंट, मेहदी हसन साहब, क्या टैलेंट था हमारे पास,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन बेगम अख्तर तो बिल्कुल इट इज जस्ट क्लोज टू माय हार्ट, मतलब एक एक गजल क्या था, क्या अंतरा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त,
0: बहुत खूब। तो फिर अब आइए सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, आते रहिएगा। और
1: श्योर श्योर श्योर, रेगुलरली आई विल बी अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर एंड लिस्टनर आल्सो।
0: थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों फिर हम सुनते हैं राकेश मुंशी जो दिल्ली से हैं और गीता मणि के दोस्त हैं, उनकी पसंद की ये गजल बेगम अख्तर साहिबा की आवाज में। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच।
1: थैंक्स थैंक्स थैंक्स।

अरे वाह, दिल्ली से हमारे एक और बैंकर दोस्त जो कि गीता मनी के रेफरेंस से हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश मुंशी जी की क्या कमाल की पसंद है। मिर्ज़ा गालिब का लिखा ये तारीखी कलाम और उस पे मलिका ए गज़ल बेगम अख्तर साहिबा की वो मखमली दर्द भरी आवाज़, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। बहुत खूब, बेगम अख्तर जी की आवाज़ में जो खास हरकत और लोच है वो सीधे रूह को छू जाती है। राकेश मुंशी जी, इतनी नफीस और शानदार गज़ल हमारी इस महफिल में शामिल कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे SN फैमिली के मेंबर बन गए हैं और हमारे प्रोग्राम में आते रहिएगा। बहुत बहुत खुशामदीद है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब मिलाते हैं हमारी अगली कॉल और फिर उसके बाद गजल। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन, ट्रन।

0: हेलो
1: हेलो अनूप,
0: हाय,
1: कैसे हो अनूप?
0: बहुत बढ़िया। आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ अनूप। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे एसएन रेडियो पे गजल का प्रोग्राम चल रहा है, फरमाइशी वो भी। और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी गजल गाते भी हो और गजल के बहुत शौकीन हो, तो मैंने
0: जी,
1: सोचा
0: बहुत
1: कि
0: शौकीन हूँ जी।
1: चलो। बोलो।
0: मैं जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ,
1: ओ वाह, मैं यही
0: और
1: पूछने वाली थी
0: पिछले
1: आपसे कि
0: पिछले
1: आपका
0: बहुत
1: फेवरेट गजल सिंगर
0: सालों
1: कौन है।
0: से मेरा मेरा सबसे फेवरेट, और मैं ये मानता हूँ कि जगजीत सिंह जैसा गजल सिंगर जिसने की गजल आम आदमी को सिखा दी, सुनना समझना और इतना आसान बना दिया कि जगजीत सिंह साहब की गजलें आप सुनो तो आप कभी बोर नहीं हो सकते हो। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने गजल को इतना मशहूर कर दिया, इतना पॉपुलर, और मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कभी भी कोई दूसरा जगजीत सिंह आएगा। ऐसे तो तमाम गायक आए चले गए, लेकिन जगजीत सिंह का जगह कोई नहीं ले पाया। उनकी डेथ को आज कितने साल हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे तो तमाम सारे लोग गए, उनकी जगह किसी न किसी ने ले ली, लेकिन जगजीत सिंह को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया।
1: बिल्कुल, आप
0: उनका
1: बिल्कुल सही कह
0: स्थान
1: रहे हैं।
0: अपनी जगह पे ऐसा है जो कि इरिप्लेसेबल है,
1: बिल्कुल
0: उनका कोई
1: बिल्कुल।
0: मुकाबला नहीं है।
1: अब आप ये
0: और
1: बताइए कि आपको इनकी कौन सी गजल पसंद है?
0: देखिए, गजल तो जगजीत सिंह साहब की एक से एक गजलें हैं। आप
1: जी
0: कोई एक गजल नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक गजल है जो शायद मैं बहुत बहुत मन से सुनता हूँ, गाता भी हूँ। वो है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त
1: वाह
0: तो लगता है,
1: वाकई
0: और
1: बहुत
0: ये
1: सुंदर है।
0: गजल मैं चाहूंगा कि आप इसको प्ले करें और आपके सुनने वाले भी इस गजल को एंजॉय करें, जिसका कि एक एक लाइन मीनिंगफुल है और इतनी मेलोडी है इस गजल में, इतना इतना स्वाद है कि आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं, आप चाहे कई बार सुने आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप दो एक लाइन गा के सुनाइए इसकी।
0: जी, मैं बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको दो लाइनें इसकी सुनाऊं।
1: जी श्योर।
0: प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप इस गाने को, इस गजल को लोगों को सुनाएं और मेरे साथ साथ सब लोग इसको एंजॉय करें
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और अपनी दुआएं दें और याद करें जगजीत सिंह साहब को।
1: यस एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, सुना आपने, मेरे बहुत खास फ्रेंड हैं ये अनूप, जो कि लखनऊ से हैं, और इनकी पसंद की गजल तो चलिए फिर हम सब मिलकर सुनते हैं। थैंक यू अनूप, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू आपकी कॉल का। आपने भी मुझे बहुत बहुत खुश किया। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।
1: बाय।
0: बाय बाय बाय।
2: प्यार का पहला खत लिखने में

0: वाह, नवाबों के शहर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े मेरे खास बहुत अजीज दोस्त अनूप श्रीवास्तव जी ने तो जगजीत सिंह साहब की इस मखमली गजल ने महफिल में मोहब्बत की ताजगी भर दी है। दोस्तों, प्यार का पहला खत लिखने को वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। अनूप जी जग्गी साहब की सादगी और इस गजल की मिठास ने हर दिल को छू लिया। लखनऊ की नफासत आपकी इस पसंद में साफ झलक रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं लखनऊ से दक्षिण भारत की तरफ और सुनते हैं हमारी अगली कॉल और फिर गजल। टन टन टन टन।
1: हेलो
0: हेलो रेखा, हाउ आर यू डार्लिंग?
1: हाय आरती जी, आई एम फाइन, आप कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। तो रेखा, गजल के फरमाइशी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं आप?
1: हाँ।
0: तो बताइए मुझे भी और हमारे सुनने वालों को भी के आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
1: मेरे फेवरेट गजल सिंगर, मैं जब कॉलेज में थी तो तलत अजीज जी को लॉन्च किया था जगजीत सिंह जी ने। तो उनका फर्स्ट एल्बम में वो पहला गाना था
0: जी,
1: कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल गाऊं तुम्हें देखने के बाद।
0: अरे बहुत
1: बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद तलत जी को मैं फॉलो करती थी, ऑल हिज सॉन्ग्स आई यूज्ड टू लिसन टू। तो आई ही हैज अ यूनिक वॉइस एंड इन वे ऑफ सिंगिंग इज वेरी सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल।
0: गा के सुनाइए ना ये गजल की दो लाइनें।
1: हाँ जरूर।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे भी तलत अजीज बहुत पसंद है, मैं मिली भी हुई हूँ उनसे बहुत साल पहले। आपको इतनी क्यों पसंद है रेखा?
1: बिकॉज ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उनका जो जो प्रेजेंटेशन है और उनकी आवाज एंड उनके गाने का वो तरीका है, सॉफ्टनेस इन हिज वॉइस एंड द रोमांटिक feeling that he brings, expressions that he brings into the puzzle.
0: Yes, yes, you are absolutely right.
1: So that's why I like his puzzle so much.
0: Okay. ठीक है रेखा, तो फिर आइए आपके साथ हम भी सुनते हैं और अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं आपकी पसंद की तलत अजीज साहब की ये गजल, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, राइट? थैंक यू सो मच रेखा, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू
1: थैंक यू थैंक यू बाय।

kana faset. Var kan makhmalien das tha? Bangalore se hamari SN family ki khas dost Rekha Natkar Nikamachi ka ye intekhab dil jeet lene wala hai. Talat Aziz sahab ki awaaz mein jo ek khas mithas hai aur romani thehrav hai. कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद रेखा जी आपकी इस पसंद ने महफिल का माहौल और भी हसीन बना दिया बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों इत्तफाक देखिए कि बेंगलोर से हमारी अगली घंटी भी

0: उसी घर में बज रही है, जरा गेस कीजिए क्या हो रहा है। टन टन टन टन।
1: हेलो हेलो सुभाष जी,
2: नमस्कार,
1: कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे, आप कैसे हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुभाष जी, अभी मैंने रेखा जी की पसंद की गजल रिकॉर्ड की, अब आप बताइए कि आपका पसंदीदा गजल सिंगर कौन है?
2: हाँ ओके, गजल सिंगर मेरा तो दो है शायद एक तो मोहम्मद रफी साहब
1: जी,
2: और दूसरे हैं तलत महमूद साहब।
1: अरे वाह,
2: ये दोनों दोनों फिल्म से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैंने उनकी काफी गजलें सुनी हुई है
1: जी,
2: और अच्छी भी लगती है।
1: कौन सी फेवरेट है आपकी और किसकी सुना रहे हैं आप?
2: ओ अच्छा रफी साहब की काफी गजलें हैं, जैसे तोड़ दो ऐ दे मोहब्बत ये तुम्हारी मर्जी एक है, बाद में दूसरा है वो उन्होंने गाया था ये इतनी राहत दिल टूट जाने के बाद, इतनी राहत दिल टूट जाने के बाद जिंदगी मिले मौत आने के बाद।
1: हम
2: क्या होता है ये जनरली गजल में प्रिय व्यक्ति के बाद साथ बात करने का लाइक, और उसके सौंदर्य और प्रेम और वियोग उनकी ज्यादा उनके ज्यादा बयान होते हैं गजल में, आप जानते हैं
1: जी।
2: तो ये तो बहुत अच्छा रफी ने रवि साहब ने गाया था, इतनी राहत दिल टूट जाने के बाद जिंदगी से मिले मौत आने के बाद।
1: बताइए, ऐसे नहीं समझ आ रहा हमें।
2: अच्छा मैं नहीं बताऊंगा, और तेरी तो चांद सितारों में बात होती है, चमन चमन बहारों में होती है, वो भी है। और मैं जो आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ, एक दो दो लाइनें में कहना चाहूंगा, गाना चाहूंगा, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है।
1: गा के सुनाइए ना।
2: तो जरूर जरूर जरूर, ये रफी जी की काफी मशहूर गजल है, अब गीत भी है, ये फिल्म का था ये। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी

0: हाल है तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा।
1: क्या
0: तो ये रफी जी का है। वैसे जैसे मैंने कहा तलत मुसा भी मुझे काफी दिलचस्प ये उनकी गजलें, जैसे मैं पागल मेरा मनवा पागल मेरी ती तेरे पगले।

0: ये गलत नवल जी का है, बहुत जुड़ी गजल है।
1: चाहेंगे अब आप कौन सी चाह रहे हैं कि हम एयर करें, आपकी कौन सी प्ले करें?
0: आप तो इनके पास गलत नवल जी और बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस।
1: आपने अभी जो दो गाई ना, इसमें से कौन सी सुनाए गलत नवल?
0: मुझे क्या सुना? हाँ रवि जी का ये सुनाइए ना प्लीज,
1: क्या सुनाऊ मैं जो आपने बाद में बोला?
0: हाँ तुझे क्या सुनाऊं,
1: ये तो गलत महमूद साहब की है।
0: नहीं ये रफी साहब की है, गलत महमूद जी की है वो मैं पागल मेरा मनवा पागल एक है, और दूसरी सुजाता की फिल्म के लिए जलते हैं जिसके लिए।
1: तो अब आप कौन सी सुनना चाहेंगे ये तो बताइए।
0: ओके मैं पागल मेरा मनवा पागल, आप
1: मैं पागल मेरा मनवा ठीक हो गया,
0: करण जी मोदी का शहरी है
1: ठीक है।
0: ओके
1: थैंक यू सो मच सुभाषिश। आइए फिर आपके साथ हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं मैं पागल मेरा मनवा पागल। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच, बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।

0: क्या बात है, बेंगलोर से रेखा जी के घर से ये कौन बोले? हमारे सुभाष कामत जी, उनके हस्बैंड बेहतरीन गायक हैं। सुभाष कामत जी तो हम सब जानते हैं, और उनकी इस मखमली गजल ने तो महफिल लूट ही ली। दोस्तों, कॉल के दौरान जब सुभाष जी अपनी इतनी सुरीली आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब की इतनी राहत, दिल टूट जाने के बाद तुझे क्या सुनाऊँ मैं दिलरुबा, और तलत महमूद साहब की तेरी एक निगाह की बात है गुनगुना रहे थे, तो मानो सुरों की बारिश हो रही थी। और दोस्तों, अभी हाल ही में आपको याद होगा किशोर कुमार साहब के जन्मदिन पर जब सुभाष कामत जी की गायकी हमने सुनी, तो सुनकर मज़ा ही आ गया था। उन्होंने जिस तरह किशोर दा के गानों में समा बांधा था, ठीक वैसे ही आज तलत महमूद साहब की गज़ल मैं पागल मेरा मनवा पागल से हमारी इस महफिल में भी रूहानी रंग घोल दिया। सुभाष कामत जी इतनी सुंदर गजल सुनाने और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चेन्नई की सरजमीन से गीता मनी जी के साथ शुरू हुआ हमारा ये सुहाना सफ़र। दिल्ली में राकेश मुंशी जी की अख्तरी बाई की गज़ल यानी बेगम अख्तर साहिबा की गज़ल, और फिर लखनऊ से हमारे अनूप श्रीवास्तव जी की जगजीत सिंह जी की गज़ल, और फिर बेंगलोर में रेखा नाटकर्णी कामत जी और सुभाष कामत जी के सुरीले नगमों से होता हुआ आज यहाँ आकर ठहरता है। देश के अलग अलग कोनों से आए इन फोन कॉल्स ने आज साबित कर दिया है कि दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दूर क्यों ना हो, संगीत और एहसासों का धागा हम सबको एक साथ पिरो देता है। चलते चलते आज की इस सुहानी महफिल के नाम दो सत्रे नजर करती हूँ। की घंटियों से शुरू हुआ ये सफर दिल तक पहुंच गया, फोन की घंटियों से शुरू हुआ ये सफर दिल तक पहुंच गया, अल्फाजों का हर एक नगमा एहसासों में ढल गया। दूर होकर भी आज हम सब कितने पास आ गए, दूर होकर भी आज हम सब कितने पास आ गए, संगीत का ये रिश्ता हर एक दिल को छू गया। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ अब आपकी हम नफस, आपकी रेडियो दोस्त, आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय आपसे लेती है इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए अल्फाज, कुछ नए एहसासों और आपकी पसंद के सुरीले नगमों के साथ। तो सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील। लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने के साथ बहुत मोहब्बत से रहिएगा। शबा खैर, शुभ रात्रि, रब रखा, फिर मिलेंगे।
1: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
2: तो दोस्तों, कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगी आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए।

0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM को। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तलहनी फसलों के ऊपर। तो तलहनी फसलों का अगर नाम आया है तो हमारा जो झाबुआ जिला है उसमें अधिकतर हम देखते हैं हमारे यहाँ का किसान जो है मूंगफली की, सोयाबीन की और तिल्ली की खेती करता है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मूंगफली का हम तेल निकालते हैं, साथ ही हम उसको स्नैक्स में भी खा रहे हैं, बाजारों में छोटे छोटे पैकेट्स में सिंगदाने हमको मिलते हैं, हम उसको रोस्टेड करके भी खाते हैं, साथ ही हम मूंगफली का बटर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूंगफली से बनी हुई चीज़ों का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम मूंगफली की अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं और कौन सा बीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मूंगफली की खेती में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए आदि जानकारियों को जानेंगे। तो किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं।
2: हमारे देश में तिलहन की खेती की विशेष भूमिका है क्योंकि हमारे रोजमर्रा के खान पान में खाने वाले तेल का इस्तेमाल खूब होता है। और तिलहनी फसलों की बात जहां तक आती है, हमारे देश में मुख्य तौर पर मूंगफली, सोयाबीन, तिल आदि तिलहनी फसलों की खेती होती है। इनमें मूंगफली की क्या खास भूमिका है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि मूंगफली का तेल जहां तेल के रूप में इस्तेमाल होता है, वहीं इसके दाने जो हैं वो नमकीन के रूप में खाए जाते हैं। और साथ ही आपको तो पता ही होगा कि आजकल मूंगफली के बटर की मांग भी खूब बढ़ने लगी है। तो ऐसे में मूंगफली की खेती से किसानों को क्या फायदा हो सकता है, इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किसान क्या करे ताकि उनकी मूंगफली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इन सभी पहलुओं पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात से बेहतर जगह और भला क्या हो सकती है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम ये पूरी बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर राधाकृष्णन, साथ ही हमारे साथ है राष्ट्रीय कृषि सलाहकार श्री एस के दलाल, इनके साथ ही विशेष मेहमान डॉक्टर एस डी सावलिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि सहायक तकनीकी अधिकारी हैं, साथ ही डॉक्टर आर ए जाट वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान और डॉक्टर रिंकू डे वरिष्ठ वैज्ञानिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान की। और साथ ही बहुत सारे किसान जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप सभी का स्वागत है अपनी तरफ से और इन सभी विशेषज्ञों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बिल्कुल, और इसी तालियों की गूंज के साथ आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
3: हमारे देश में तिलहन की 7 बड़ी फसलें हैं और मूंगफली का इनमें प्रमुख स्थान है। खाना बनाने में मूंगफली के तेल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। एक अनुमान के अनुसार सरकार को हर साल करीब 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल आयात के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। मूंगफली समेत दूसरी तिलहनी फसलों की उपज में बढ़ोतरी उपज और मांग के अंतर को पा सकती है। सरकार और वैज्ञानिक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इस बार मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार बोनस भी दे रही है। दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक ज्यादा उपज वाले बीज तैयार कर रहे हैं, साथ ही वो किसानों से वैज्ञानिक विधि से मूंगफली की खेती करने पर जोर दे रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार और वैज्ञानिकों की ये कोशिशें रंग लाएंगी और मूंगफली भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी।
2: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या वजह है कि अनाज के उत्पादन में हमने जो सफलता हासिल की है, तिलहन के मामले में वो बात अभी तक नहीं हो पाई है, क्या वजह है इसकी?
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
4: તિલન જહાં તક મૂંગફલી કે બાત હૈ વો રેઇનફેડ હૈ જો બારિશ કે ઉપર નિર્ભર હૈ, કરીબ 80

0: 100% ग्राउंडनट जो है बारिश की वजह हेल्प से ही उगाया जाते हैं। जो बारिश का जो कमियां आते हैं, जो टाइम पर नहीं आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम, जो बारिश कम होने का, ये मेजर कारण है। इसके अलावा कुछ कीट वगैरह भी होते हैं जिसका नियंत्रण का अभी अच्छे तकनीक अवेलेबल है। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम जो है वो ड्राउट का है, जो कम पानी होने का होता है।
1: बिल्कुल दलाल जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ये खाद्य तेल आयात जो है, इसे लेकर सरकार को करोड़ों खर्च करना पड़ता है। ऐसे में केंद्रीय कृषि विभाग जो है वो क्या कदम उठा रहा है ताकि जो घरेलू तेल उत्पादन है उसे बढ़ाया जा सके?
2: आपने बिल्कुल सही सवाल किया। भारत के अंदर हम खाद्यान्न तेल जो आयात करते हैं वो उसके ऊपर भारत सरकार का करीब करीब 73,000 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है। हमारी जो पैदावार है, जो तिलन की फसलों से होता है, उससे जो हम अपने घरेलू तरीके से जो पैदा कर सकते हैं तेल, वो करीब करीब आधा होता है, 50% के करीब हम यहाँ करते हैं और 50% हमको आयात करना पड़ता है। करीब 14-15 के आंकड़ों के मुताबिक 17 केजी हर एक इंसान जो है पर कैपिटा कंजम्पशन है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि WHO के मुताबिक 10 केजी काफ़ी होता है। तो हमारे यहाँ तेल का जो खपत है बहुत ज़्यादा है, जिसको हम इस माध्यम के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि लोग तेल कम खाएं, ये स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मूँगफली, जैसे हमने 5,000 करोड़ की पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया है। टोटल हम करीब करीब जो तिलन फसलों के जो हैं वो 19,800 करोड़ का निर्यात भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को काफ़ी इसके जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च करनी पड़ती है। इसलिए हम लोगों को तेल की कम खपत करनी चाहिए। तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई एक कार्य किए हैं, जिसके अंदर ऑयल पाम एक ऐसा वो हमने निकाला है जिसका पोटेंशियल देश के अंदर करीब 19.33 लाख हेक्टर है, जहाँ पे हम पाम ऑयल जो है वो पैदा कर सकते हैं, जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और हमारे खाने की जिसकी कमी है उसको काफी हद तक पूरा कर सकती है।
1: जी बिल्कुल। तो तिलहन उत्पादन की बात जब हो रही है, राधा कृष्णन जी आप बताएं हमें कि इसमें मूंगफली खास तौर पर इसकी भूमिका कितनी है?
0: मूंगफली का भूमिका बाकी जो तिलहन है, जैसे राई है या मस्टर्ड या सोयाबीन है, उसके तुलना में अभी कम है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो उस क्रॉप के हिसाब से ये तीसरे स्थान पर है।
1: जी,
0: तो ये तीसरे स्थान पर है अभी।
1: और निदेशालय की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है मूंगफली उत्पादन को बढ़ावा देने?
0: ये निदेशालय नया नया किस्में डेवलप करने का, और इसका जो भारत में जितनी जहाँ ग्राउंडनट उगाते हैं और उसमें जो संशोधन चलते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का ये काम मेनली करते हैं। इसके अलावा जो मूंगफली का उगाने में जो भी समस्याएं आते हैं उसको सुधारने का और उसको हल करने का जो तकनीकें वो बनाने का भी हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा एक और कोशिश है जो अच्छे गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करने का वो प्रोग्राम, ब्रीडर सीड प्रोग्राम है, वो भी हम करते हैं।
1: जी डॉक्टर दे, ऐसे में आप बताइए कि कुछ खास उपलब्धियां निदेशालय की जो है मूंगफली उत्पादन को बढ़ावा देने की, वो क्या उपलब्धियां हैं?
3: निदेशालय में काफ़ी सारी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डेवलप किए गए हैं एग्रोनॉमिक रिलेटेड। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा कंट्री में जितने हमारे कोऑर्डिनेटेड रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ से काफ़ी सारी उन्नत किस्में डेवलप की गई हैं, ग्राउंडनट की वैरायटीज रिलीज हुई हैं। और इस निदेशालय में जो ब्रीडिंग के द्वारा जो अच्छी प्रजातियाँ निकली हैं उसमें से 3 उन्नत ग्राउंडनट की वैरायटीज निकली हैं, जैसे गिरनार 1, गिरनार 2, गिरनार 3। और इसमें इसके अलावा काफ़ी सारे प्लांट प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं, जिसके द्वारा जैसे ग्राउंडनट के जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज पेस्ट हैं, डिजीजेज में जैसे स्टेम रॉट है, कॉलर रॉट है, और इसके अलावा और भी कुछ सॉइल बोन डिजीजेज हैं जिनके कंट्रोल मेजर्स डेवलप किए गए हैं, जिसके द्वारा ये जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं या बीमारियां जो मूंगफली के पौधे में लगती हैं इसका कंट्रोल किया जा सकता है। और मूंगफली में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट, कीड़े मकोड़े लगते हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप को, उनके कंट्रोल मेजर्स के लिए भी बहुत सारी नई तकनीकें डेवलप की।
1: कीड़े मकौड़ों और रोग बीमारियों के रोकथाम पर आगे बात करेंगे। डॉक्टर जाट से यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो मूंगफली का जो उत्पादन है उसके लिए जो आपने बताया कि जो वैज्ञानिक विधि है वो अगर अपनाया जाए तो वो बेहतर है, तो जो प्रचलित विधि है और जो वैज्ञानिक विधि है इनमें कितना अंतर है?
4: इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारा उसमें पोषक तत्व प्रबंधन। जैसे कि हम किसानों को सजेस्ट करते हैं कि वो 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश दें, लेकिन आमतौर पे किसान क्या करता है कि वो बहुत कम मात्रा के अंदर पोषक तत्व डालता है। साथ ही जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि राइजोबियम, जो क्योंकि ये मूंगफली फसल है तो उसमें राइजोबियम जो बायोफर्टिलाइजर है वो लगाना आवश्यक है, लेकिन किसान या तो लगाता नहीं है या अगर बायोफर्टिलाइजर वो लगाता भी है तो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। तो इसकी वजह से मूंगफली की फसल में पोषक तत्वों की कमी के कारण उपज में काफ़ी कमी आती है। दूसरा, फिर हम उनको बताते हैं कि जैसे खरपतवार की काफ़ी समस्या है, क्योंकि मूंगफली की जो फसल है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम रहती है तो इसकी वजह से इसमें खरपतवार की काफ़ी समस्या रहती है। तो हम किसानों को हमारा रिकमेंडेशन है कि भी जो जब वो बुआई करता उस समय पेंडी मेथालिन नामक खरपतवार नाशी आता है उसकी 900 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर उसकी मात्रा हम बताते हैं, लेकिन कई किसान हैं जो वो नहीं लगाते, इसकी वजह से शुरू में ही खरपतवार आ जाते हैं। फिर बाद में हमारा रिकमेंडेशन है कि बुआई के 20 और 40 दिन बाद वो खरपतवार निकाले, या तो जैसे मजदूर लगा के निकाले या इंटरकल्चरिंग करें, लेकिन कई बार किसान वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि आजकल मजदूरों की काफ़ी कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी हम मूंगफली की उपज में काफ़ी कमी आती है। तो ये कुछ जो इसके अलावा मूंगफली में एक बड़ा जो मुद्दा है वो है पौध संख्या पर हेक्टर की।
1: अब अच्छा, इसमें तो उसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से जो उत्पादकता है और उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर सावलिया से यहाँ पर मैं जान लूं कि जैसे कि बातचीत में कई बार ये बात आई है जो कीड़े मकौड़े हैं उससे काफी फसल को नुकसान हो जाता है, ऐसे में किस तरह की वैज्ञानिक विधियां हैं जो किसानों को अपनानी चाहिए?
5: ज्यादातर मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप जो पंचामृत पंचगव्य करके है, जीवामृत है, ऐसी जो घरेलू उत्पादन हो सकता है जो गायों की पालन पोषण के साथ साथ उसको दुगना फायदा होता है, दूध भी मिलता है, अपने चारे का भी सही तरह से इस्तेमाल करता है, गोबर मिलता है, तो अपनी जो जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको भी वो मेंटेन कर सकता है और खुद अपने हाथों से पंचामृत बना के वो अपने खेत में छिड़काव करने से कीड़े मकोड़े भी कीट आते हैं नुकसान करने वाले उसकी संख्या भी कम कर सकते हैं, उससे नुकसान भी कम कर सकते हैं और जो ये सब जीवामृत है वो सब वातावरण के लिए अनुकूल है और हेल्थ के लिए अनुकूल है, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है और जो कुदरती परोपजीवी परभक्षी कीट है लेडीबर्ड बीटल है, क्राइसोपा है और जो दूसरे कई है उसको भी नुकसान नहीं करता और पूरी मात्रा में उसकी संख्या रहने देते हैं और ताकि दवाइयां का छिड़काव कम हो और किसान को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो।
1: तो इसके उपाय हम आगे आपसे और भी जानेंगे। दलाल जी से इस बीच हम जान लेते हैं कि यहाँ बात हो रही है कि जो मूंगफली का उत्पादन है हमने देखा बातचीत में कि उसमें चुनौतियां काफी है, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाए तो इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है, तो किसानों को दलाल जी तभी प्रोत्साहित किया जा सकता है किसी भी खेती से ज्यादा जोड़ने के लिए अगर उसे उसमें फायदा नजर आए, तो किसानों की आय दुगनी करने की जो बात हो रही है उस दिशा में उस नजरिए से अगर देखा जाए तो मूंगफली की जो खेती है वो कितना फायदा पहुंचा सकती है किसानों को?
2: देखिए, जैसे राधाकृष्णन साहब ने बताया कि मूंगफली तीसरे नंबर की फसल है जो तिलहन की फसलों के अंदर, हम सबसे पहले सोयाबीन लेते हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है देश में, दूसरे नंबर पे रेप एंड मस्टर्ड आता है, तीसरे नंबर मूंगफली आता है, इसका एरिया भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है, कंट्री एज ए होल देखते हुए मूंगफली की फसल को आपको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार मिनी किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। हमने 17-18 में करीब 16.11 लाख सीड मिनी किट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांटेंगे किसानों को, ताकि इन मिनी किट के अंदर हम जो है किसान को जो सबसे 10 साल से कम उम्र वाली जो नई तो ये होती हैं आपकी वैरायटीज होती हैं वो हम देते हैं ताकि उनको पॉपुलराइज किया जा सके, ताकि ज़्यादा उपज देने वाली जो जो किस्में हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन अगर अगर आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी तो उत्पादन ऑटोमेटिकली उसके जो है बढ़ जाता है। जैसे कि अब जहाँ तक उत्पादन का हिसाब है उसके अंदर उत्पादन गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है देश में, दो नंबर पे राजस्थान आता है, लेकिन उत्पादकता के अंदर राजस्थान ज़्यादा उत्पादकता देता है। तो इसलिए हम वो ये सीड मिनी किट जो है पॉपुलराइज करने के लिए बांटते हैं। दूसरा, हम ICR के करीब 515 जो हमारे KVKs हैं उनके थ्रू फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि नई जो जो टेक्नोलॉजी है, नई जो जो बातें बताई जाती हैं काश्तकार को
1: जी,
2: वो अडॉप्ट करे और नई तकनीक के साथ अगर वो खेती करेगा तो पैदावार उसकी बढ़ती है
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये
1: पैदावार बढ़ेगी तो फायदा भी होगा, मुनाफा भी होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन, हमें ये बताएं कि बात सिर्फ खेती और उत्पादन बढ़ाने की नहीं है, आय भी प्राप्त करने की है ज्यादा से ज्यादा, तो मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या निदेशालय की तरफ से, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय की तरफ से इसकी भी जानकारी किसानों को दी जाती है कि वो किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकें?
0: वैल्यू एडिशन पर ये निदेशालय बहुत कम काम कर रहे हैं अभी। जैसे जो जो टेबल प्रोडक्ट्स है
1: जी,
0: लेकिन हम दूसरे जो डायरेक्शन में जो काम कर रहे हैं, जो मूल्यवर्धित वैरायटीयां डेवलप करें
1: जी,
0: जैसे जो हाई ओलिक एसिड वाला, जो ओलिक एसिड जो है जैसे ओलिव ऑयल का जो क्वालिटी है वो ओलिक एसिड से आता है, हम ऐसे किस्म में और डेवलप करने में अभी लगे हुए हैं जिसके ओलिक एसिड कंटेंट उसकी बराबर हो जो ओलिव ऑयल का
1: जी,
0: तो उसी उसमें काफी कामयाबी अभी हुआ है, वो वैरायटी अभी आ जाएगा बहुत ही कम समय में। और दूसरा है जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो वैरायटीज चाहिए
1: जी,
0: जैसे बड़े दाने का हो या यूनिफॉर्म कर्नल का हो, उसी टाइप का किस्में विकसित करने में भी हम काफी कामयाबी हुआ है, अब उसी डायरेक्शन पर हम काम कर रहे हैं।
5: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी सरकार भी मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यों में लगी हुई है। साथ ही हम अपने व्यवसाय इसको व्यवसाय के तौर पर भी कर सकते हैं और इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है और हम क्या कर सकते हैं ये जानेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूंगफली से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: अगर किस्मों की बात करते हैं तो हमारे निदेशालय से जो वैरायटीज है गिरनार 2, ये वैरायटी उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए निकाली गई है। इसी प्रकार से इसी निदेशालय से एक दूसरी वैरायटी है गिरनार 3, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए निकाली गई है। फिर अगर गुजरात की बात करें तो जो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से GG20 वैरायटी है। इसके अलावा एक और अभी नई वैरायटी आई है GJG22। इस वैरायटी के अंदर जो कोलर रोट और स्टेम रोट की समस्या है तो इसमें काफ़ी सहनशीलता इस वैरायटी में। इसके अलावा फिर अगर एक स्पेनिश जो ग्रुप है बंच ग्रुप, उसके अंदर TG37A वैरायटी है ट्रॉम्बे की, तो वो खरीफ और समर दोनों ऋतु में उगाया जा सकता है। फिर ऐसे ही एक और वैरायटी है GJG31, ये भी स्पेनिश ग्रुप वैरायटी है और ये भी किसानों में काफी प्रचलित हो रही है।
2: जी ठीक है डॉक्टर दे, अब आप मुझे ये बताएं और हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को बताएं कि खाद उर्वरक को लेकर के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को।
3: जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मूंगफली एक लिग्यूम क्रॉप है, तो ये जो लिग्यूम क्रॉप है इसमें राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल रहता है
2: जी।
3: राइजोबियम की तरह और भी कुछ सूक्ष्म जीव है जिनका पौधे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी तरह राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है और इसी तरह से कुछ फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फॉस्फोरस की उपलब्धि को बढ़ाता है पौधे के लिए। तो हमारा यही रोल है कि हम पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचाए। तो इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है जैसे यूरिया है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, DAP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इसके साथ साथ अगर हम पौधे को नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराना चाहते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन है, तो इसके लिए राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग इस निदेशालय में कुछ जैविक खातर या बायो फर्टिलाइजर बनाया है जो पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है।
2: राइजोबियम कितनी आती है?
3: इनकी लागत बहुत कम है। एक पैकेट बायो फर्टिलाइजर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपये होती है और लागत के हिसाब से बहुत ही कम कीमत पे ये उपलब्ध होता है, लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि राइजोबियम और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो बायोफर्टिलाइजर के पैकेट के द्वारा या लिक्विड बायोफर्टिलाइजर के द्वारा किसानों तक पहुँचाए जिससे उनका लाभ वो ले सकें।
2: जी बिल्कुल, ये तो खाद उर्वरकों की बात हुई डॉक्टर सावलिया। अब कीड़े मकौड़े उनके रोकथाम और निदान की बात करें तो वहाँ भी लागत की बात आ जाती है। रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई नुकसान होते हैं, लागत भी ज्यादा होती है, ऐसे में क्या उपाय आप सुझाएंगे किसानों को?
4: मूंगफली में जो फफूंदी रोग आते हैं ज्यादातर वो स्टेम रोट करके और कोलर रोट करके आता है, उसमें उसके कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा करके एक दूसरा फफूंद आता है जो किसान का मित्र है। अगर सोने से पहले सीड को ट्रीट किया जाता है उसे और बाद में 30-35 दिन का पाक होता है, जब फसल होती है तब ट्राइकोडर्मा या तो इरंडी के खल के साथ या तो जो डीकम्पोस्ट फर्टिलाइजर FIMA फर्टिलाइजर है उसके साथ मिक्स करके जब उपलब्ध मात्रा में भेज बिन पानी हो जमीन में उसी समय दिया जाए और बाद में तो उसका हम रोग की मात्रा कम कर सकते हैं और उसकी वजह से जो किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सब जो ट्राइकोडर्मा वो सब आता है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, 50 या 100 रुपए के करीब 1 kg आता है और एक एकड़ के लिए पर्याप्त है।
2: बिल्कुल, तो कम कीमत में कम लागत में अच्छा उत्पादन हासिल करने के कुछ आप लोगों ने यहाँ पर विशेष सलाह दी है, उपाय सुझाए हैं। मैं किसानों के पास जाना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग मूंगफली की खेती करते हैं, किसी तरह की समस्या या चुनौती आप लोग के सामने होती है तो उसका निदान, उसका हल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर विशेषज्ञ मेहमान मौजूद है उसका हल देने

0: लिए, तो कौन सवाल पूछना चाहेंगे आप में से? जी सबसे पहले अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल।
1: मेरा नाम नारायण जी है, मैं गांव का रहने वाला किसान हूं और वर्षा ऋतु में हमारा मुख्य पाक मूंगफली है और मैं यहाँ 4 साल से सजीव खेती कर रहा हूँ, गाय आधारित सजीव खेती करता हूँ। जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत वो हमारे खेत पे ही तैयार करते हैं और नीम का ऑयल और नीम का अर्क, ऐसे वो कोई कीटनाशक आता है और जब हम मूंगफली बोते हैं पावनी में तो उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है। मैं कई सालों से राष्ट्रीय मगफली संशोधन केंद्र से और कृषि यूनिवर्सिटी जूनागढ़ से जुड़ा हुआ हूँ। वो ये सभी लोग हैं उसका मार्गदर्शन के नीचे ही मैं खेती करता हूँ और मेरे गांव के सभी किसान भाइयों को उसका मार्गदर्शन देता हूँ। परेशानी में ये हम जे पाक तैयार करते हैं, मेरे पास भी है सजीव खेती का पाक, पर अभी कोई लेने के लिए कोई ये भी उसको क्या रिसर्च करने है कि भाई ये पेस्टिसाइड के रासायनिक खातर दवा वाला नहीं है, वो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये यहाँ और किसानों को वो परीक्षण कराए और सरकारी तौर पर उसके खरीदी करे।
0: ठीक है, राधा कृष्ण जी क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे?
2: ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस आते हैं उसको पूर्ण रूप से उसका जो रिटर्न मिलना है तो उसका सर्टिफिकेशन का जरूरत है। अभी सर्टिफिकेशन का एजेंसीज तो वैसे कम है और फार्मर को इसके बारे में जानकारी का भी थोड़ा कमी है, तो सर्टिफाइंग एजेंसीज अगर बढ़ जाते हैं और इसका थोड़ा और इसका पॉपुलराइजेशन का जरूरत है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती अभी पिकअप हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आया है, उसके साथ साथ ये भी इम्प्रूव होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे
0: जरूर। जी चलिए कुछ और सवाल यहाँ पर। जी
3: मेरा नाम जंतीलाल वेकरिया है, हूँ भरवाड़ा गांव में रहवासी हूँ। मगफली उत्पादन में मेरी बड़ी समस्या है उकसुक का रोग। उकसुक का रोग आ गया बाद उसके इलाज अच्छी नहीं मिलते के उत्पादन के बहुत ज्यादा घाटी पड़ते, तो उस उकसुक का रोग के लिए क्या नया उपाय है ये हम जानता मांगते हैं।
4: उकसुक का रोग मुख्यतः फफूंद से आता है, उसके लिए एस्परजिलस नाइजर करके फफूंद है जो काली देखने में काली होती है, उसकी शुरुआत बीज से ही होती है। वो पहले से किसान भाइयों को ही ख्याल रखना पड़ेगा, जब आप पूरा हार्वेस्ट करते हो तब जो पॉड जो थ्रेसर से थ्रेश करते हो उसी टाइम पॉड टूट जाता है, तो वो फफूंद है वो हवा में भी रहती है और जमीन में भी रहती है। उसके बीज है वो उस टाइम अगर जो डैमेज पॉड है जो भी उसका जो छिलका टूट गया उसी में वो फफूंद घुस जाती है, आपको देखने से पता नहीं चलेगा। वो आप उस वैसे बीज की आप बुआई करोगे तो वो सड़ जाएगा। दूसरा कि आप जो बीज है वो तो बारिश के समय सीधा मार्केट से खरीदते हो, आप गवर्नमेंट एजेंसी से या तो खुद गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदो या खुद का बीज रखो, और खुद का बीज रखने में भी आपको तकेदारी रखनी पड़ेगी। छान के अच्छी क्वालिटी के बीज रखो और पूरा उसको पहले सूखने दो। 9% भेज से कम भेज होनी चाहिए, 9% के करीबी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भेज है और आपने गोडाउन में डाल दिया तो उसमें फफूंद आ सकती है। दूसरा जहाँ आपने संग्रह किया है वो जगह में बिना भेज वाली मीन्स बिना मॉइस्चर होना नहीं चाहिए और अच्छी तरह से उसको कीड़े भी नहीं लगना चाहिए, उसको सही तरह से रखना है और टाइम टू टाइम उसको फ्यूमिगेशन करना है और बाद में अच्छी तरह से छीलने के टाइम अगर आप ज़्यादा भेज दे देते हो और मॉइस्चर ज़्यादा देते हो तो भी हवा में से वो लग जाता है, तो उसको कम से कम भेज दे के छिले और अच्छे जो सोइंग के लिए सीड अलग करते हो हैंड पिकिंग करते हो तो उसमें जो भी सीड आपको डिसकलर मिले दूसरा कलर वाला भी मिले तो उसको भी निकाल दो, टूटे हुए सीड को भी निकाल दो। उसका अगर टेस्ट जो मीन्स और लाल कलर वाला जो छाल बोलते हैं वो भी अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो उसको निकाल दो और अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीड ही चुन के रखो और सेम साइज के रखो ताकि।
0: चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। जी पूछिए।
5: मेंदड़ा तालुका ना बरवाड़ा गांव से हूँ, खेतूत बोल रहा हूँ। हमारा गांव ने अंदर सौराष्ट्र ने अंदर जूनागढ़ जिला ने अंदर बहुत मुंडा से जीवात आती है, तो ये पान बड़ डोडवा खाई जाए, मगफली का अंदर दाना खाई जाए, तो आने माटे हमारे क्यों संशोधन करूँ, कई दवा वापरवी, इनो इलाज छू। हमारे गई साल बहु मांडवी में मोटा नुकसान हो गया। उठा नुकसान हो गया, कोई उत्पादन नहीं मिला, सारा पीर बिगड़ गया, सारा पण खादा देवानो हो गया। तो एना माटे जानवा मांगू के आने माटे शू करवानो,
0: क्या वजह है इसकी और क्या निदान?
4: मूंगफली में जो बता रहे वो उसमें हिंदी में गिटार बोलते है, गुजराती में मुंडा बोलते है उसको। तो वो जीवात है वो पूरे साल तक जमीन में रहती है, एक फीट से ज्यादा रहती है। उसका जो जीवन चक्र है पूरे साल, एक साल लगता है जीवन चक्र पूरा करने में। और जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश के बाद ही उसका जो पुख्त है वो जमीन से बाहर आता है, और जो खेत के अगल बगल में जो पौधे पेड़ है, खेजड़ी है, पीछे नीम है, बेर है, और दूसरा जो पेड़ है उसके ऊपर वो उसका पुख्त है, वो रात भर रहता है, चार पाँच दिन रहता है, वो उसके पौधे पत्तियाँ खाता है, और वहाँ प्रजनन वो मेटिंग करने के बाद चार पाँच दिन के बाद वो अर्ली सुबह 5 से 8 बजे के बीच खेत में जाता है और 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक वो अपने इंडे छोड़ देता है, एक एक एक एक करके, कभी एक साथ देता है।
0: उपाय क्या है, क्या क्या निदान है इस समस्या का?
4: समस्या का निदान के लिए बारिश होने के बाद तुरंत 3 दिन तक खेत के अगल बगल वाले पेड़ पौधों को दवा छिड़काव करे, इमिडाक्लोप्रिड 70.5 SL करके आता है, वो 1.5 ml प्रति लीटर, या तो कार्बोक्सिल वो आता है उसी का स्प्रे, या मोनोक्रोटोफोस उसको आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और शाम के समय वो लैंप जला के, शाम के समय लैंप जला के उसके नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें पानी भर के केरोसिन या मिट्टी का तेल जो कि केरोसिन बोलते हैं उसी को डाल के रखना पड़ेगा, ताकि वो जो जीव है वो रात को लाइट को आकर्षित होता है और उसमें आके गिर के मर जाएगा। और सभी किसानों को ये साथ मिलकर करना पड़ेगा, एक दो करेगा तो उसका कंट्रोल नहीं है। और दूसरा उसका एक फेरोमोन आता है, वो हर 15 square meter के बीच आपको उसको लगाना है, ताकि वो आकर्षित होकर वहाँ आए और उसे उसे हम मार सकते हैं।
0: ठीक है, तो बड़े पैमाने पर जब नुकसान हो रहा है तो बेहतर है कि सभी किसान मिलके इसका उपाय करें। कुछ और सवाल इधर आप लोग जो बैठे हैं कुछ करना चाहेंगे बताएं अपने बारे में, जब आप मूंगफली की खेती करते हैं तो इससे क्या आप लोगों को लाभ होता है, क्या और सवाल पूछना चाहेंगे?
6: मेरा नाम समीर वगासिया है। हम जो मूंगफली की खेती करते हैं उसकी जो लागत आती है उसका समर्थन मूल्य हमको नहीं मिलता। अच्छा। सरकार जो योजनाएं चलाती है भावांतर की, उसका लाभ किसानों को कम और व्यापारी को ज्यादा मिलता है, इसका क्या कारण है?
0: ठीक है दलाल जी, यहाँ पर आपसे जरूर मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकार ने अभी समर्थन मूल्य बढ़ाया भी है और हमने देखा है कि दलहन को किस तरह से सरकार ने बढ़ावा दिया है, वहां पे भी समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ साथ बोनस भी दिया है। आपको लगता है कि इस तरह के उपाय तिलहनी फसलों की जो खेती है उसको बढ़ावा देगी?
7: जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, भारत सरकार हरेक जो फसल होती है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालती है, उसमें वैज्ञानिक जाते हैं और जो CPC हमारी है कॉस्ट प्राइसेस वाले, वो उसका मूल्यांकन करते हैं, कीमत निकालते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग जो MSP उसकी डिटरमिन करते हैं। अभी इस बार हमने जो बोनस को मिला के 4450 रुपया इसका MSP रखा है। ये आप जो बात कह रहे हैं, ये किसान कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। जब फसल ज़्यादा आ जाती है तो जो जो ट्रेडर है वो मूल्य गिरा देता है, तो उस केस के अंदर भारत सरकार ने कुछ एक एजेंसीज NAFED और ये जो है स्टेट को भी चाहिए कि इसके अंदर ज़रा सहयोग दे और समर्थन मूल्य के ऊपर वो खरीदारी करे।
0: डॉक्टर राधाकृष्णन बताएं हमें कुछ ऐसे उपाय जिससे किसानों को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है मूंगफली की खेती के लिए।
2: तो जहां तक प्रोक्योरमेंट और प्राइसिंग का है वो पॉलिसी इश्यूज है, और जो प्रोक्योरमेंट है स्टेट और NAFED वगैरह करते हैं कुछ काफी हद तक, लेकिन जो प्रोड्यूस ज्यादा होते हैं उस टाइम पर खास करके ये प्रॉब्लम होते हैं। और जो हाईली रेम्यूनरेटिव जो एग्रीकल्चर है उसमें एक ऑप्शन ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कुछ हद तक गुजरात में चलते हैं। अच्छा। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया में है या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ग्राउंड नट बनाना है, जैसे कोई इंडस्ट्री हो, चॉकलेट इंडस्ट्री हो, पीनट बटर हो, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करे फार्मर्स के साथ, फार्मर को अच्छा रिम्यूनरेशन भी मिलेगा, वो जो अच्छा फसल भी आ जाएगा और जो इंडस्ट्री का नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगा।
0: तो अगर निर्यात के लिए किसान मूंगफली का उत्पादन करना चाहे तो जाहिर है उसकी गुणवत्ता पर उसको खास ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे में किन बातों का ध्यान रखे अच्छी गुणवत्ता के लिए?
2: इसमें मैडम दो चीजें हैं, एक तो जो फील्ड में जो उगाते हैं उस टाइम, क्योंकि हमारा मेजर ट्रेड बैरियर है अफ्लाटॉक्सिन का, जो पहले बताए गए थे अफ्लाटॉक्सिन का दो स्टेज में उसका प्रॉब्लम होता है, एक जो जब फसल उगाते हैं, दूसरा है? उसके बाद वो स्टोरिंग और प्रोसेस में। तो फसल उगाते हैं उसके लिए जो अच्छा एग्रीकल्चर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो पॉपुलराइज भी कर रहे हैं, वो करने से इसका जो मात्रा बहुत ही कम होता है या नील भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो स्टोरेज है, जैसे इसका ड्राइंग है, प्रोसेसिंग है, जैसे इसका शेलिंग का वेटिंग, वेट शेलिंग, ड्राई शेलिंग, उसी चीज़ों पर इसका फर्क पड़ता है। ये एक कॉम्पोजिट चीज है जो इसको फार्मर को और खेती को अलग कर सकते हैं और इंडस्ट्री को अलग कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये खेती और इंडस्ट्री मिलकर करना है। इसलिए मैंने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कोई कंपनी करते हैं तो ये दोनों चीजें साथ में ले सकते हैं।
0: डॉक्टर जाट, हमें बताएं, आप पौध संख्या को मेंटेन रखने की बात बता रहे थे, उस जानकारी को आप पूरी कीजिए, कैसे जो किसान है वो जो पौध संख्या है उसको बरकरार रख सकते हैं।
8: जी, जैसे कि मूंगफली में तीन प्रकार की जो किस्में होती है, एक होती है फैलने वाली, दूसरी अर्ध फैलने वाली, और तीसरी होती है बंच टाइप गुच्छे वाली। तो इसमें जो फैलने वाली है उसके अंदर हमारा जो रिकमेंडेशन है कि उसके अंदर जो 60 जो स्पेसिंग है 60x10 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से इसको इसमें बुआई करनी है। दूसरा है अर्ध फैलने वाली किस्में, तो उसकी 45x10 के हिसाब से बुआई करनी है, और उसकी पौध संख्या होनी चाहिए 2,64,000। और जो गुच्छे वाली है उसकी 30x10 उस हिसाब से 3,33,000 पौध संख्या पर हेक्टर में होनी चाहिए। लेकिन इस मूंगफली के अंदर एक तो क्या है कि जर्मिनेशन की समस्या है। आमतौर पे फील्ड में हम देखते हैं कि 75-80% ही जर्मिनेशन होता है जो बीज डालते हैं, तो उसकी वजह से जो पौध संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। दूसरा, मूंगफली के अंदर जो कोलर रोट आता है उसकी वजह से काफी प्लांट्स मर जाते हैं, तो उसकी वजह से और भी पौध संख्या कम हो जाती है। फिर इसके अंदर मूंगफली में जो बीज की साइज है वो काफी वेरी करती है।
0: अच्छा,
8: तो उससे अगर मान लो अगर बीज की साइज छोटी है तो सीड रेट कम हो जाएगी।
0: अच्छा,
8: और अगर बीज उसी वैरायटी का जो अगर दाना बड़ा है तो उसकी सीड रेट बढ़ जाएगी। तो किसान को चाहिए कि जो सीड साइज और जर्मिनेशन परसेंटेज कितना, ये दो बात को ध्यान में रखते हुए बीज की दर निर्धारित करें।
0: अच्छा,
8: तो अगर बुआई से पहले 5-7 दिन पहले आपके बीज में से थोड़े से बीज लेके और उसको जो न्यूज़पेपर होता है उसमें डाल के थोड़ा पानी डालें और उसको आपको 48 या 60 घंटे के अंदर उसमें कितना जर्मिनेशन परसेंटेज आपको पता चल जाएगा, तो उस जर्मिनेशन के परसेंटेज के हिसाब से और सीड साइज के हिसाब से आप बीज दर का निर्धारित करके उचित जो पौध संख्या है वो खेत में रख सकते हैं। और अगर उचित पौध संख्या होगी तो उसी अनुपात में आपको उपज भी ज्यादा मिलेगी।
0: जी बिल्कुल। डॉक्टर जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो मूंगफली के किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागत की हम बात करते हैं, खाद उर्वरक डालने की बात करते हैं, तो अंधाधुंध न दे करके जिसकी जरूरत हो उतनी ही मात्रा में हम उसका इस्तेमाल करें, इस दृष्टि से अगर देखें तो मूंगफली के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या बनवाना चाहिए, कितना जरूरी है?
9: हाँ जी, बिल्कुल बनवाना चाहिए, क्योंकि सॉयल हेल्थ कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मूंगफली एक तिलहन फसल है
0: जी,
9: और इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए राइजोबियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
0: जी।
9: तो जैसे जो सीरियल क्रॉप्स है उनकी तुलना में इसमें नाइट्रोजन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जनरली 25 किलो नाइट्रोजन 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम दें तो हम काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन खाद की उसका कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो सॉयल हेल्थ कार्ड हमने यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दिया है, और हमारी संस्थान की वजह से काफ़ी जो आसपास के गांव हैं उनके फार्मर्स को हमने सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किया है गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से। और इसमें से जो फार्मर्स हैं उनको फायदा भी हुआ है, उनको पता चल रहा है कि उनकी जो उनका जो फार्म है, उनके जो खेत हैं उसकी फर्टिलिटी लेवल क्या है, और हम ये भी बता रहे हैं कि आपको नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी है, फास्फोरस की मात्रा कम देनी है और इतनी खाद देने से ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस हिसाब से भी फार्मर्स को पता चल रहा है कि हमें कितना खाद देना है और उससे ज़्यादा हम नहीं दे तो हम जो हमारी खाद की पूर्ति भी कम कर सकते हैं और हमारी काफी सेविंग भी हो सकती है। तो ये दोनों तरफ से फार्मर्स
0: ये बात लागू होती है। ठीक है राधा कृष्ण जी, ये बताएं हमें कि बीज की बात अक्सर आई है, कई तरह की समस्याओं के निदान के तौर पर देखा हमने कि बीज अच्छी गुणवत्ता का हो ये बहुत जरूरी है, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देते हैं किसानों को, बीज कहाँ से प्राप्त करें और बीज का जब चुनाव करें तो किन बातों का ध्यान वो रखें?
2: बीज जो है जहाँ तक संभावना है शक्यता है आप जो स्टेट का बीज का एजेंसी से खरीदिए एक। दूसरा, अगर एक बार आप अच्छे वैरायटी का लिया है आप उसको आगे सीड के लिए जो रखना है उसको प्यूरिटी से, उसके साथ दूसरे मिलावट ना हो उस हिसाब से करिए और आगे उसको रखिए। ये जो मार्केट में जो आते हैं जो अलग अलग कंपनियों का उस सीड का जो है हमारे पास उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ये कहाँ से बनाया है, क्या बना है, कैसे होगा, इसके बारे में मैं पता नहीं है। तो जब आप कुछ सीड कंपनियों का भी चलता होगा उसमें अच्छा भी चलता होगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा जो आपके जो सीड जो सर्टिफिकेशन एजेंसी जो बीज निगम है या यूनिवर्सिटी है वहीं से खास करके सीड अपना खरीदिए ताकि आपको अच्छा सीड हमेशा मिले।
0: और किसान क्या बीज उत्पादन पर भी यहाँ पर करते हैं, गुजरात के जो किसान है
2: यहाँ करते हैं और उस पर हमने काफी तालीम भी दिया है किसानों को
0: जी।
2: हर साल हम तो दो तीन बैच को मिनिमम तो करते हैं, अच्छा सीड कैसे बनाएं और उसको कैसे स्टोर करें इसका हम ट्रेनिंग भी देते हैं।
4: किसान साथियों, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर ट्रेनिंग्स के माध्यम से भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कैसे नया बीज बनाया जा सकता है। साथ ही आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना और इस जानकारियों का सिलसिला आगे चलता रहेगा। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छाबवा की आवाज। किसान साथियों, हम सुन रहे थे मूंगफली की खेती को लेकर, मूंगफली की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों, चर्चा के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और मूंगफली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को।
1: चलती हूँ और अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल।
2: कपिल वेकरिया मारू नाम। हवे सौथी वधारे प्रश्न मोटो ए है आफला टॉक्सिन जे फूग बराबर आपने जे मार्केटिंग मा सौथी वधारे नड़े है, तो एक फूग क्यारे आवे, केटलो समय मांडवी सुकोवी, आ ते बधी खेडूतोने खरेखर एटली बधी जाण नथी, तो एक खेडूतोने जाण करे, एक ये प्रश्न है।
1: ठीक है, तो कौन जवाब देना चाहेंगे आप में से?
3: वो किसान जानना चाहता है कि जो अफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम है, वो अफ्लाटॉक्सिन क्या है, वो कैसे आती है, कब आती है और उसको मैनेज कैसे करना है। मैं तो बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अफ्लाटॉक्सिन एक एस्परजिलस फ्लेवस करके एक फफूंद आती है, उसकी वजह से लगता है। वो फफूंद जब लगता लग जाती है तो बीज में वो एक जहर बना देती है, और जो खाने के लिए उसके लग जाने के बाद खाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो वो न आए इसीलिए आपको पहले से ही जो आप खरपतवार करते हैं या तो इंटरकल्चरिंग करते हैं, तभी से किसानों को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो पॉड है, मीन्स मूंगफली का जो पॉड है, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। वो जमीन में से भी आ सकती है और हवा में से भी वो फफूंद आ सकती है, तो पॉड डैमेज नहीं होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के टाइम भी पॉड डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर डैमेज हुआ तो उसको तुरंत ही अलग करके मार्केट में बेच देना है। और फफूंद हार्वेस्टिंग के बाद,
1: आपका कहना है कि जो दाने हैं मूंगफली के, उसमें किसी तरह का नुकसान उसे नहीं होना चाहिए।
3: देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें फफूंद लग गया है।
1: अच्छा,
3: बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर वो जब लग जाता है तो वो अपने आप ही वो पॉइजन शुरू कर देता है।
1: ठीक,
3: तो उसको आने ही नहीं देना। या तो जब आप स्टोर करो, तो पहले से मैंने बता दिया था कि जो 9% से कम नमी होनी चाहिए तभी आप उसको स्टोर कर सकते, तब तक आपको फील्ड में उसको सुखाना है, और सुखाने के टाइम जो गोडाउन है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो सब ख्याल रखना है। और बीज
1: बचाव ही जो है वो बेहतर उपाय है। चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। कि एक सवाल आप भी पूछना चाहते हैं?
4: हाँ, मगफली की खेती में हमने मगफली पाकते समय सफेद फूग आती है, उसका क्या कारण होता है, उसका क्या इलाज है?
3: जो पाकने के समय आप बता रहे हैं, वो पाकने के समय जब मूंगफली में ड्रॉट पानी की कमी आ जाती है और वो उसकी फफूंद है वो जमीन में ही रहती है, या तो बीज से आती है, जो ड्रॉट ड्राई स्पेल मार देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ये जो फफूंद है वो ऑक्सीजन लविंग, उसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिला और ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि किसान हमारे यहाँ सौराष्ट्र के किसान ज़्यादातर इंटरकल्चरिंग करते हैं, और मैंने देखा है कि कभी कभी तो 62 डेज तक इंटरकल्चरिंग करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि 50 दिन के बाद मूंगफली में इंटरकल्चरिंग न करें तो अच्छा है, और जब ड्राई स्पेल आता है तो फैला के पानी दे दे, और जैसे जमीन दबी रहेगी वैसे कम आएगी, और सोइंग के बाद आप उसे प्लेंकर चला के जमीन को दबा दे।
1: ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर जाट से मैं जानना चाहूंगी, जैसे बातचीत में बात आ रही है कि जो मूंगफली है उसमें उचित नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ऐसे में सिंचाई को लेकर हमें जरूर बताएं किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अंतराल होना चाहिए, या फिर जल की जैसी उपलब्धता है इन क्षेत्रों में जहां पर मूंगफली की खेती होती है, ऐसे में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है?
5: जी, वैसे तो मूंगफली एक सूखा सहन करने वाली फसल है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए हमें कुछ ऐसी फसल अवस्थाएं हैं, उस समय पे पानी की कमी नहीं आनी चाहिए।
1: जी,
5: तो शुरू में तो जैसे फसल की बुआई है उस समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए, ताकि उसका जो अंकुरण अच्छे से हो और हमें पौध संख्या सही मात्रा में मिले।
1: जी,
5: फिर उसके बाद में से फूल बनते हैं, फिर सुइयां बनते समय, फली बनते समय और दाना बनते समय, ये ऐसी अवस्थाएं हैं जब जमीन के अंदर जो मॉइस्चर है, नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जिससे कि हमें ज्यादा उपज मिले। फिर जैसे इसमें ड्राई स्पेल जब बीच में सूखा आ जाता है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से हम अगर इसमें इरिगेशन देते हैं तो कम पानी में हम ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर इरिगेशन कर सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल ले लेते हैं किसान भाइयों से, कुछ और पूछना चाहेंगे आप सवाल? जी आपने बताया था आपके पास और भी सवाल है, तो बता पूछिए अपना दूसरा सवाल।
2: જે આપણે આગળ વાત થઈ થોડી વાર પહેલા કે તેલ આપણે આયાત કરવું પડે છે બહારથી, અને અહીંયા મગફળીનો એરિયો ઘટતો જાય છે, એની પાછળના કારણો એવા કંઈક મને દેખાય છે કે ખાતર અને જંતુનાશક દવા બધું બહુ મોંઘું મળે છે, તો એના માટે સરકારને બે સોલ્યુશન કરવાની જરૂર છે. એક તો જે ગમે એ દુકાન માંડીને બેસી જાય, ગમે એ પ્રોડક્ટ લઈને બેસી જાય છે, એ બંધ કરાવવું જોઈએ, અને જે એગ્રીકલ્ચરની અંદર ભણેલા વિદ્યાર્થીઓ જે અત્યારે એમનેમ રખડે છે, બેકાર બેઠા છે, એને એને લાયસન્સ આપી અને વ્યવસ્થિત દવાઓ પેસ્ટિસાઇડ જે મળે છે માર્કેટમાં, જે ખાતરો મળે છે એ બોગસ કંપનીના ન હોવા જોઈએ, એવું બધું સરકારે થોડુંક ધ્યાન રાખવું જરૂરી દેખાય છે મને.
3: ઇનકા સવાલ થા કે જો હમારે ગવર્નમેન્ટ બતા રહે, સભી એજન્સીયા બતા રહે કે હમારા ઉત્પાદન કમ હો રહા હૈ, લાગત જ્યાદા લગ રહી હૈ, તો ઉસકી વજહ એક હૈ કે જો જીસકે પાસ નોલેજ નહીં હૈ એગ્રીકલ્ચર કા, વો લોગ દુકાન માંડ કે મીન્સ કો શોપ ખડા કરકે પેસ્ટિસાઇડ બેચતે હૈ, દવાઈયા બેચતે હૈ, ઓર કિસાનો કો કોઈ મિલતી જુલતી દવાઈયા દે રહે,
1: ઠીક હૈ,
3: તો ઉસકી વજહ સે જો કિસાનો કો લાગત જ્યાદા આ જાતી હૈ, તો ઉસકા સુજાવ હૈ કે ગવર્નમેન્ટ કોઈ એસા વો સુજાવ લગાએ કે જો બીએસસી એજી હૈ વો જિસકો નોલેજ હૈ ઉસી કોઈ લાઇસન્સ મિલે.
1: તો ઇનોને જો સવાલ પૂછા હૈ ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણ, ઉસકા ક્યા જવાબ દેના ચાહેંગે આપ?
6: ये जो एग्रीकल्चर इनपुट जो है खास करके केमिकल्स, वो जो है इसके एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसमें कई अच्छे कंपनियां भी है, नए कंपनियां भी है, जो लेस पॉपुलर कंपनियां भी है. अब इस पर जो फार्मर को ये जो मिलते हैं ज़्यादातर ये खरीदी होते हैं जो इनपुट ट्रेड डीलर जो बोलते हैं उसके बेसिस पर है. अभी उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इनपुट डीलर जानबूझ के भी कर सकते हैं, या दूसरा उनका अनजान होने के वजह से भी. तो अभी उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में इनपुट डीलर्स के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है जो छुट्टी के दिन चलते हैं, जो इसके पूरा जानकारी देते हैं. इसके अलावा अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो इनपुट डीलर्स को इसको ट्रेनिंग देने के लिए. लेकिन ये जो खरीदी है इसमें एक और चीज़ भी है, किसान का जो क्रेडिट है उसे रिलेटेड भी है, उसमें भी इनको जो कुछ प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ट्रेडर जो बोलते हैं वो उसको खरीदना पड़ते हैं कई लोगों को. लेकिन इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने का काफी श्रम चल रहे हैं, और दूसरा इसमें कुछ पॉलिसी चेंज भी जहां तक मैं जानता हूं वो सरकार लाने वाला है.
1: जी बिल्कुल, तो सरकारी प्रयासों के बारे में हमें जरूर यहाँ पे दलाल जी बताएं, और साथ ही जो राष्ट्रीय तिलहन मिशन है सरकार का, ये जो बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसके तहत किसानों को किस तरह की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके बारे में भी हमें बताएं.
7: भारत में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम शुरू किया गया, NMOP शुरू किया गया 14-15 में, उससे पहले 13-14 का तिलन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने किसानों की मदद से 32.75 मिलियन टन तिलन फसलों की प्रोडक्शन हमारी हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है. उसके बाद जैसा कि राधाकृष्णन साहब ने बताया था कि ये एक क्योंकि एक शुष्क एक कृषि के अंदर उगाने वाली फसल है, तो ये बहुत ज़्यादा उस पर बारिश पे डिपेंडेंट रहती है. 13-14 के बाद 14-15-15-16 में बारिश कम रही और टाइम से नहीं आई, इसकी वजह से इसका एरिया घट गया, जो कि 28 मिलियन टन हेक्टर से वो गिर के 25-26 के करीब आ गया. उधर प्रोडक्टिविटी भी गिर गई, क्योंकि सूखा पड़ा तो प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है वो कम हुई, जो कि 1168 से गिर के ये 968 आ गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा कट के 25.25 मिलियन टन रहा. इसको रिकवर करने के लिए अभी 16-17 में हमारा फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि हमारी उम्मीद है कि 32.10 मिलियन टन प्रोडक्शन होने की संभावना है. एरिया हालांकि उतना ही है 26, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है, क्योंकि 1225 किलो पर हेक्टर हो गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे जो तिलन की फसलों में उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ा है. इसके अलावा जो किसानों को मदद देने के लिए हम सरकार ने डेमोस्ट्रेशन जो है जो हमने चलाए हुए हैं इनपुट से लेके, क्योंकि जैसा कि अभी सभी और विशेषज्ञ बता रहे थे, सीड एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी फसल के लिए, तो एक अच्छी किस्म की फसल का बीज होना बहुत जरूरी है, तो इसकी वितरण पे और इसकी प्रोडक्शन के ऊपर ये हमारे इस NMOP प्रोग्राम के अंडर हम इसके अंदर असिस्टेंस देते हैं, सीड एजेंसीज को बढ़ावा देते हैं, ताकि अच्छी किस्म की फसलों का बीज चेन के अंदर आ सके और किसानों को उपलब्ध हो सके. इनपुट के अंदर हम और इनको प्लांट प्रोटेक्शन की जो दवाइयां हैं, जैसा कि अभी कितने किसान पूछ रहे थे कि उनकी फसल के अंदर बीमारी लगती है, उसको उसका समाधान के लिए हम इसके लिए उसको अनुसंधान अनुदान देते हैं। इसके अलावा मैकेनाइजेशन के लिए
1: अच्छा।
7: हम लोग इरिगेशन के लिए पावर जो स्प्रे वगैरह पंप है उसके लिए भी अनुदान दिया जाता है। इन
1: ठीक है, यानी कि कई रूप में जो सरकार है वो मदद पहुंचाती है किसानों तक, ताकि वो जो मूंगफली की खेती या अन्य तिलहनी फसलों की खेती की तरफ उनका रुझान बढ़े।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, छावा की आवाज। खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान भाइयों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 की ऐप के माध्यम से भी आप खेती बाड़ी कार्यक्रम को सुन सकते हैं, साथ ही आप आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9425413603 पर। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। કિસાન સાથીઓ, જૈસા કી ખેતીબાડી કાર્યક્રમ મે હમ હર રોજ એક નયે વિષય પર આપકો જાણકારી દેતે હૈ, કુછ મહત્વપૂર્ણ જાણકારીઓ કો આપ તક લેકર આતે હૈ, ઓર સાથ હી હમ હમારે જો કિસાન હમસે જો તે હૈ આગ્રહ કરતે હૈ उस पर हम कोशिश करते हैं कि उनके जो समस्याएं हैं उन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने हमारे एक किसान ने कड़कनाथ के ऊपर हमें कुछ जानकारियों के लिए हमें आग्रह किया था, इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हम कड़कनाथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है, आज भी हम बात करने वाले हैं खेती संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो आज हम आपसे मिलवाते हैं झाबवा ब्लॉक के कलीपुरा गांव के रीता मेड़ा से, जो कि अपने गांव में अपने एक छोटे से घर में उन्होंने कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और आजीविका को चलाने के लिए कड़कनाथ पालन शुरू किया। अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियां हैं और अभी वो मुर्गियों के अंडों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाती है। आपको मिलवाते हैं रीता जी से, उससे पहले आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहू बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से बेली गीत को सुना। आइए सुनते हैं अब रीता जी से, जो कि झावा ब्लॉक के अंतरवेला के पास स्थित कलीपुरा गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपनी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ है। और आइए जानते हैं कैसे वो उन मुर्गियों का देखभाल करती है, उनके लिए क्या खाना पानी देती है और क्या उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां वो बरतती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
1: नाम क्या है?
2: रीता।
1: अच्छा अच्छा, ये कड़कनाथ आप पालती हैं?
2: हाँ।
1: कैसे पाले जाते हैं?
2: मैं इसको सुबह में पानी देती हूँ।
1: हाँ।
2: और खाना देती हूँ।
1: हाँ।
2: और चावल भी बना के देती हूँ इसको।
1: अच्छा अच्छा, इसको कहाँ से भी इनके वो आए थे बच्चे?
2: बच्चे झाबुआ से आए।
1: झाबुआ से? कितने बच्चे आपने पाले थे शुरुआत?
2: मैंने शुरुआत में तो 50 पाले।
1: अब कितने हो गए?
2: अब तो उनके हो गए, ये तो बहुत सारे हो गए, गिन नहीं पाते। ये बड़े बड़े तो
1: कहाँ पे बेचते हैं इसको?
2: ये इधर टेम्पल लेने आया था।
1: अच्छा, कितने का जाता है?
2: 18,000 का तो ले गए थे वो।
1: अच्छा अच्छा,
2: 18,000।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वर्तमान सरकार हमारी सहूलियत के लिए अनेकों योजनाएं हमारे लिए लेकर आती रहती है और इसकी अधिकतर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। योजनाओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को।
3: खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में करीब 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आगे आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
4: जैसे कि ये कहा जाता है कि पूरे भारत में भी हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे जो जिला है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उसका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काशीपुर में स्थित है। जहाँ तक इनके उद्देश्यों की बात है, उसके उद्देश्य ये होते हैं कि जो भी तकनीकी जो शोध संस्थान द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, ICAR के द्वारा जो विकसित की जाती है, उनको किसानों तक कैसे पहुँचाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हम अपने यहाँ किसानों के प्रक्षेत्र पर भी और कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि कृषि में जो नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त हम कृषकों के प्रक्षेत्र पर जाकर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जो भी नवीनतम तकनीकी है वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें हम वहाँ हम करके दिखाते हैं। हम इसमें कुछ कृषकों का चयन करते हैं और उन्हें करके बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे बुआई करनी है और कैसे इसकी कटाई करनी है और कैसी ये तकनीक जो है उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्रक्षेत्र पर जो भी हमारे पास लगभग 20 हेक्टेयर का फॉर्म है, इस फॉर्म पर हम लोग उन्नतशील प्रजातियों के, जैसे गेहूं के, धान के, सब्जियों के और लेग्यूम्स के, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के बीज बनाते हैं और हम उनको उचित रेट पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी ये उन्नतशील हमारे पास सब्जियों की पौध होती है या उन्नतशील फल पौध होती है हमारी, वो भी हम किसानों को समय के अनुसार और उनकी ऐसे एज पर देयर नीड्स उनको हम किसानों को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह से किसान भी आते हैं जो डिमांड भी करते हैं कि सर हमको फलानी वैरायटी का ये बीज चाहिए, तो वो हम बीज को हम अपने आप बनाकर किसानों को देते हैं। इस तरह से हम अपने जो उद्देश्य हैं उसको हम कार्य कर रहे हैं।
3: केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहे हैं बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवीके अब किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं कड़कनाथ पालन को लेकर कुछ और विशेषज्ञों की राय। कैसे कड़कनाथ पालन हम कर सकते हैं, कहां से हमें लेना चाहिए और कड़कनाथ पालन में हमें कितना खर्चा लगता है और कड़कनाथ पालन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कड़कनाथ पालन कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या खाना हमें देना चाहिए, क्या दवाई हमें उन्हें देना चाहिए और कैसे रखना चाहिए कड़कनाथ मुर्गी का ख्याल, जानेंगे इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
6: खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियां, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20-24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है RB ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है।
7: इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5-6 महीने लगते हैं, तो 5.5-6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक। पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियां होती है मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है ताकि मुर्गियां बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियां खा सके, खुले में खा सके, और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते जिससे अंडा भी हेल्दी होता है।
6: कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे, खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो।
7: कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया जरूर रखें, जहां आपके बड़े बच्चे बड़े होते रहेंगे उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला

0: रहे हैं राजा सिंह, अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
1: युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है, 100% बच्चों का देखरेख करनी पड़ती है, वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है, उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, अगर करें 100% करें।
0: राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
3: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। मुर्गी पालन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आप लो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। आइए चर्चा करते हैं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर।
2: मुर्गी कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 1951 के दौरान भारत में मुर्गियों की संख्या 7 करोड़ 35 लाख थी, जो 2019 में बढ़कर 85 करोड़ को भी पार कर गई। अकेले अंडा उत्पादन की ही बात करें तो सालाना 10.19% की दर से बढ़ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि मुर्गी पालन कारोबार में 75.32% हिस्सा मांस का और 24.67% अंडों का है। अंडा उत्पादन के मामले में भारत 5वें नंबर पर है, जबकि मांस के क्षेत्र में मुर्गी मीट का कारोबार पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय लोगों को भी मुर्गी का मीट काफी पसंद है। यही वजह है कि यहाँ जितना भी मांस उत्पादन होता है उसका आधा मुर्गियों से आता है। 2018-19 के दौरान मुर्गी मीट का उत्पादन 40 लाख टन था। मुर्गी कारोबार में तेज बढ़ोतरी के पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। खासकर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के बाद लोगों का रुझान अच्छे खान पान की तरफ गया है और मुर्गी उत्पादों के भाव में कमी ने भी इस कारोबार को फलने फूलने में मदद की है। अंडा और मांस में अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए मुर्गी व्यवसाय कुपोषण के खिलाफ जंग में अहम हथियार साबित हो सकता है।
3: हमारे देश में जो प्रोटीन की उपलब्धता है वो WHO के हिसाब से अभी भी बहुत कम है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अभी हमें 3 अंडे एक हफ्ते में खाना चाहिए और वो 3 अंडे

0: हमारी अगर लेते हैं तो बहुत लगभग लगभग 200 बिलियन अंडा प्रोडक्शन की होना चाहिए देश में। वहाँ हम तो हमने पहुँचाए अभी तक इस साल की आंकड़े के हिसाब से 122 बिलियन तक। तो मुर्गी जो किसान अपने घर पे रखते हैं, लगली मान लीजिए किसी किसान 50 मुर्गी रख ली, 50 मुर्गी से रोजाना एक अंडा अगर निकालते हैं तो हिसाब से लगभग लगभग 80 40 30 से 40 अंडा डेली निकालते हैं। 30 से 40 अंडा तो किसान खुद खा नहीं सकते हैं, बाकी अंडा वो बाजार में बेचते हैं।
1: सिर्फ अंडा और मांस ही नहीं बल्कि मुर्गियों की बीट से भी पैसा बनाया जा सकता है। बीट में मिट्टी के लिए जरूरी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो खेतों में बेहतरीन खाद का काम करते हैं, बल्कि मशरूम पालन में मुर्गियों की बीट की जरूरत पड़ती है। इस तरह मशरूम उत्पादकों और किसानों को बीट बेचकर भी अलग से कमाई की जा सकती है। मुर्गियों की बात चली है तो कड़कनाथ का नाम कैसे भूल सकते हैं। काले रंग के इस मुर्गे का मीट और अंडा दोनों ही बहुत महंगे बिकते हैं। एक वयस्क सफेद मुर्गा जहां करीब 200 रुपए में बिकता है, वहीं कड़कनाथ की कीमत 500 से 600 रुपए तक हो सकती है। दूसरी ओर आम मुर्गों के मुकाबले कड़कनाथ पोषण के लिहाज से भी बेहतर है, इसलिए कड़कनाथ की बढ़ती मांग को देखते हुए आज के युवा भी इसके कारोबार से जुड़ने लगे हैं।
2: मुर्गी पालन आज के दौर में अच्छा और सफल व्यवसाय बनता जा रहा है।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, आइए चलते हैं कल्लीपुरा गांव में और मिलते हैं अरविंद भाई से और जानेंगे कैसे अरविंद भाई अपने फार्म में मुर्गियों का दाना पानी करते हैं, उनका देखरेख करते हैं, उन्हें समय समय पर भिन्न भिन्न दवाइयों के माध्यम से उनमें आने वाले रोगों और उनमें उनको क्या दवाइयां देनी चाहिए, उन सारी चीजों को हमें बतलाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
5: अरविंद भाई, आप हमने कल्लीपुरा में आप उभा है ते ये आपर कड़कनाथ नो बिजनेस शुरू करियो है ते ये कांती कुकड़ा लायन केर थी शुरू करियो है।
6: मैं 2 साल पहलखो तो चालू करे लो यो बिजनेस पहलखो हो कुकड़ा लावे लो अनुभव ले दो।
5: अच्छा,
6: ते तीने डॉग ताहर का जो वेटनरी डॉक्टर साहब रे,
5: अच्छा
6: तीने ये बताड़ियो के तो एक फटो मारो वशे है तो 500 ले जाऊं। पर मैं वैसे तीने कह दू के तू तीने एक राय बता रही के तू हो पाली देख बिल्कुल कितरो फायदो मले कितरो नहीं तीने बात तू वधारे ले जे एम करे। तो फिर मारा मन में एम थायो के सालो हो ली ली हाउ इंसान ने थोड़े लालच रहे मतलब कमावा ने
5: बिल्कुल बिल्कुल।
6: तो 500 एक हटवा ना तो फिर मारा मन में एम थायो कि हो पाली देख एम तो हो पाड़वा बाद फिर मन बेनिफिट थायो फायदो थायो तेर फेर में हमना 500 कुकड़ा पाले से
5: हमने 500 पाले हैं। ते कितना साल थी गया तो पालतो कितना टाइम थी गया था
6: बे बे ढाई साल थी गया
5: बे ढाई साल थी गया। ते कदी कदी एवो समय आयो जो एक खटा कुकड़ा मरवा सालिया है ने वह फेंकवा पड़े एवो कदी एवो समय आवेलो कदी
6: नहीं नहीं मैं एक ट्रेनिंग ले देली।
5: अच्छा,
6: ये कड़कनाथ ना ऊपर तो तीन माह जैसे ऊंगा वाला लगी जाए तीनी दवा है।
5: अच्छा,
6: अने हेले कई अचानक बीमारी थई जाए तीनी दवा है।
5: अच्छा,
6: फिर कई वायरस जे भी वो है तीनी दवा है तो वो तीन समय समय ऊपर उपयोग करूं तो कुकड़ो एक भी नहीं मरे।
5: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब केवानो मतलब एम है कि आप समय समय पर अगर सही बीमारी धरीन सही दवा दी आप तो ते आप वसड़ी सके। ते मतलब हमने तारो हूँ होशियार से अगाड़ी तू कितना कुकड़ा पड़वाना होशियार है
6: हमना मार एक हेचरी लगाड़वानी से।
5: अच्छा,
6: जो इंडा मिले ते डायरेक्ट चेला निकाले हेचरी।
5: अच्छा, हेचरी हाँ
6: हेचरी लगाड़वानी से और थोड़ो मोटो लोन लेवानो सरकार थे कहीं आग्रह करूँ।
5: अच्छा अच्छा अच्छा,
6: थी जाए तो मार जमीन से तार को बना दी मोटू फार्म।
5: अच्छा अच्छा,
6: 2000 सुजानु।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने मतलब हमने सरकार इसमें हूँ मदद करी रही फिलहाल रू
6: सरकार ते हमना एक लोन ना बारा में इस साल ही मतलब आयु से पशुपालन विभाग में गेलो।
5: अच्छा,
6: ते ताहर की ये जानकारी मिली के तुम लोन ली सको।
5: अच्छा,
6: है ना, लोन ली सको, कुकड़ा पाली सको, ते बदा डॉक्यूमेंट बताड़िया से ते मैं तैयार करी रहो से।
5: अच्छा,
6: अने कराऊं पढ़ाई लोन ताकि ये तेरते आप आगे बढ़ी सकें। मतलब अनुदान भी से
5: अच्छा
6: ते अनुदान हरु मतलब आप करी सकी
5: कई बिल्कुल तो इन हरु कौन कौन आदमी आगाड़ी आवीन यो लोन कौन कौन ली सके इन हरु कई मतलब हेमते नहीं के खाली मतलब जगह जो या हूं इनो प्रावधान है अगर अगर कई नो लेवा मांगे तीन हरु
6: हमना मतलब एम है कि अपड़ हमना हेली केवानो मतलब जिना जगह है ने
5: हां
6: जगह हो है किसान बने लो है तो ली सके
5: बिल्कुल
6: और फिर दिन में एम है के એટલે વધારે અગર મોટો લોન લેવો હોય ને તે પૂરો પ્રોજેક્ટર તૈયાર કરવું પડે
5: અચ્છા
6: હા તેમાં હું કે ત્રણ લાખે ખાવાનું
5: અચ્છા બિલકુલ બિલકુલ
6: લાવો સબ લખવું પડે
5: બિલકુલ અગર આપો કોઈનો ગામનો કોઈ નિવાસી અગર એના પ્રોજેક્ટને કરવા માંગે તો કોની મદદ લઈ શકે યો
6: એ પશુપાલન
5: પશુપાલન પશુપાલન
6: વિભાગ વેટરનરી ડોક્ટર થી મળે
5: અચ્છા
6: અને તાહરકુ સેશન કરાવવું પડે તાહરકુ ફોર્મ ભરાવવું પડે ઔદ્યોગિક વિભાગમાં જવું પડે
5: બિલકુલ બિલકુલ હા તો સબીના મેડમ હમ તારથી હમળવા માંગી કે તું ભી હાથે હાથે અરવિંદ ભાઈ ની હાથે હાથે તમે ભી કુકડા પાળી રહ્યા હે તો એમાં મતલબ કેટલો ફાયદો થઈ રહ્યો અને તમારો શું વિચાર છે એના કડકનાથ ને લઈને
7: ફાયદો તો છે એના મતલબ નાના સુજા આલે તે તેના મોટા કરવાના અમારા હાથમાં
5: બિલકુલ
7: મતલબ બીમાર તે અચાનક થી થઈ જાય એના આંખો માં મતલબ આંખો થી બીમારી થાય દિખાઈ નહીં દેતા
5: દિખાઈ નહીં
7: હા દિખાઈ નહીં દેતા બાકી અચ્છા હે બિઝનેસ બિઝનેસ કરને દો મતલબ દો સાલ હો ગયે હમ બિઝનેસ કર રહે તો હમકો અચ્છા લગ રહા
5: બિલકુલ
7: બાકી ઇનકો બડે કર રહે મતલબ ઇતે મતલબ એક એક દો એક દો બિકતે રહેતે બાકી મેરા વિચાર હે કે યે પૂરે ક્યું નહીં બિક રહે
5: અચ્છા થોડા સા બડે લેવલ પે ઉસકો બે બેચે
7: હા બડે લેવલ પે બેચે તો તાકી હમકો ભી થોડા ફાયદા મિલે
5: બિલકુલ બિલકુલ
7: ઇનકો મતલબ હા વો કર બિઝનેસ કરને સે ફાયદા મિલના ચાહીએ યું
5: બિલકુલ મતલબ જેતરા મોટા થઈ રહ્યા એતરા આપણો વૈસે જવા દો
7: ફિર
5: મોટો મોટા કરી નો કરે હે ને
7: અબે કરીબ 150 બડે બડે મુર્ગે મુર્ગિયા હે પર વો મે બેચના ચાહતી પર અભી બિક નહી રે વો
5: અચ્છા ઓર
7: છોટે સુજે અભી 200 ખેયું
5: બિલકુલ તમારા કાફી ફાયદા હો ગયા
7: તો અમારા ક્યા હે મુર્ગા ફાર્મ અંદર થોડા છોટા બના રખા થા
5: હા હા હા
7: તો હમને એસા મતલબ સોચા કે ક્યું નહી હમ રોડ પે લે જાય
5: બિલકુલ
7: તાકી યે બિઝનેસ અમારા અચ્છા ચાલે યું કરકે હમને રોડ હાઈવે રોડ પે લાયે હે તાકી બિકે યું કરકે તો બિઝનેસ કરને સે અચ્છા હે
4: किसान भाइयों जैसे कि अभी हम सुन रहे थे सबीना जी बता रहे थे कि उनका जो पोल्ट्री फार्म है उसमें काफी उनके पास अभी काफी मात्रा में मुर्गी मुर्गियां है और पोल्ट्री फार्म का गांव के अंदर होने की वजह से लोगों में ज्यादा पता नहीं था इस बारे में लोगों को थोड़ी सी समस्या होती थी वहां तक पहुंचने में तो अभी उन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म को रोड के एकदम करीब अपना खुटाया स्कूल के जस्ट पास में उन्होंने अपनी नया घर उन्होंने बनाया है और साथ में एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी रखा है जहां पर उनकी एक छोटी सी दुकान है और वो वहां पर अंडे और मुर्गियां दोनों वहां पर बेचते हैं। दोस्तों आप अपना अंतरवेलिया से भगोर वाले रास्ते पे अगर आप जा रहे हैं तो आप जरूर इनके अपने कड़कनाथ फार्म पे विजिट कर सकते हैं। इनसे इन कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को ले भी सकते हैं और अगर आपको अधिक मात्रा में या कम मात्रा में अगर आपको कड़कनाथ लेना चाहते हैं तो आप अरविंद भाई से संपर्क भी कर सकते हैं। हम इनका नंबर आपको दे देंगे और आप भी खुद उस रास्ते से निकल रहे हैं तो आप उन कहीं पे पास की किसी भी दुकान से पूछ कर अरविंद भाई के यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन सब जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं अरविंद भाई से कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों को लेकर सचेत होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। तो आपको इस ये बिजनेस आप कर रहे हो, आपको क्या ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब ऐसा लगा कि हमको मतलब किसानों को सचेत रहना चाहिए इस चीज को करने से पहले, क्या क्या चीजें जरूरी होती है ये पालने के लिए और क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है कि हम इसको अच्छे से पाले और अच्छे स्तर पे इसको ले जा सके।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
2: देखो मेरा ये सुझाव है कि जैसे 100 मुर्गे पालें पहले, अभी 100 मुर्गे पालने से अपने को अनुभव हो जाएगा
1: बिल्कुल
2: कि अपने को फायदा कितना हो रहा, घाटा कितना हो रहा,
1: बिल्कुल
2: कितने बिक रहे हैं
1: बिल्कुल
2: है ना,
1: बिल्कुल
2: और कितना खा रहे हैं,
1: कितना खा रहे हैं,
2: वो सब अनुमान लग जाएगा।
1: हाँ।
2: तो उसके पहले अपने को ये फॉर्म बनाना पड़ेगा,
1: फार्म बनाना पड़ेगा
2: उसको
1: बिल्कुल,
2: और थोड़ा ऊंचाई में रहना है चाहिए वो।
1: अच्छा, ऊंचाई में होना चाहिए
2: कम से कम 13-14 फीट।
1: बिल्कुल।
2: उससे क्या है कि गर्मी नहीं लगेगी उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और फिर उसके पहले बनने के बाद फिर ये लकड़ी का भूसा रहता ना, छुरी को डाल देने के नीचे
1: बिल्कुल,
2: और इसके बाद लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी
1: बिल्कुल, इनको लाइट की जरूरत रहती है,
2: लाइट बहुत गर्मी उसको चाहिए।
1: अच्छा, गर्मी ज्यादा चाहिए।
2: हाँ। और ठंडक में गर्मी और गर्मी में ठंडक होनी चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना
1: है। वातानुकूलित उनके हिसाब से रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
2: और क्या है कि इनको मतलब ज्यादा हवा में नहीं छोड़ने का।
1: अच्छा,
2: इससे क्या है कि वायरस आ जाए,
1: वायरस आने के डर,
2: और जो बाहर जो फार्म है वहाँ पे मतलब बाहरी व्यक्ति को भी अंदर नहीं जाने देने का।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: क्या है इससे अगर आए तो वो क्या है, ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के पास में चूना लगा के रखना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो चूने से क्या है कि वो सारे जो कीटाणु रहते हैं ना, चप्पल से है,
1: अच्छा सारे
2: वो उसको ऊर्जा के कारण वो नीचे गिर जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और चूने में गिर जाते हैं, मर जाएंगे।
1: ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने अरविंद भाई हमको कि किस तरीके से हमें चूना सामने रख के किस तरीके से इनका बचाव कर सकते
2: हैं। और अपन एक ये भी बात है कि जैसे लाइट,
1: अच्छा लाइट,
2: लाइट को मतलब लगातार जलाना चाहिए उसको।
1: बिल्कुल, लगातार उसको जलाते रहना चाहिए।
2: जैसे गर्मी में वो वाले बल्ब ले आओ,
1: बिल्कुल
2: वो छोटे वाले।
1: किसान भाइयों, अरविंद भाई ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया, कैसे हमें उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं उन्हें देनी चाहिए, साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक नए आदमी को फॉर्म में जाने से पहले हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से लाइट का उपयोग होना चाहिए, कैसा वातावरण कड़कनाथ मुर्गियों के लिए अनुकूलित होता है, साथ ही अन्य जानकारियों को भी हमने जाना।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे थे कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे हमें सचेत रहना चाहिए, हमें किस समय पर किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आदि जानकारियों को आपने जाना। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए सुनते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांट्याबिल 90.8 एफएम के साथ। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे अरविंद भाई की कलीपुरा के सफल किसान की दास्तां। आइए सुनते हैं एक और सफल किसान की दास्तां।
1: अच्छा। मुनाफा कितना हुआ?
2: मुर्गी पालन का व्यवसाय मैंने इसलिए अपनाया, जैसे आप देख सकते हैं, आप हमारे ये पास ये जमीन है मेरे दादाजी की ली हुई, तो दादाजी को मुर्गी पालन का बहुत शौक था। पर जब दादाजी मुर्गियां लेके आते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश, तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे क्यों ना इनको बचाया जाए, तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स किया। तब पता लगा हम क्या गलतियां कर रहे हैं और फिर वहां से शुरू किया। तो जब मैंने उसी कोर्स के दौरान मैंने कड़कनाथ ब्रीड के बारे में पढ़ा, तो ये बड़ी नई ब्रीड लगी, बड़ी एक्साइटिंग ब्रीड लगी। सो हम लोग जाके फिर शुरुआत में 5 मुर्गियां 2 मुर्गे लेके आए और एक छोटे से कमरे पालना शुरू किया, और करते करते वो 40 हो गई और उनको देख के लोग डिमांड करने लगे, तो डिमांड करते करते इसको एज अ व्यवसाय कर लिया एंड हम लोग मुनाफा कमाने लगे।
3: बड़े पैमाने पर मुर्गी उत्पादों का निर्यात करता है। 2020-21 के दौरान ही 2.5 लाख टन से ऊपर के उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। इससे 435 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई। अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, तो मुर्गी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन न सिर्फ आसान है, बल्कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है, साथ ही लाभ भी अच्छा है और लगातार आमदनी होती रहती है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना कम रहेगी। हमारे देश में खुले आसमान के नीचे भी मुर्गी पालन का रिवाज है, लेकिन इस विधि में अंडा उत्पादन कम और पक्षियों के बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए बेहतर है कि इन्हें आवास में ही पाला जाए। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1,000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छे मुनाफे के लिए 4 किस्में प्रमुख हैं। इनके नाम हैं बैबकॉक, हाईलाइन, बोवंस और लोमैन। बैबकॉक की 80-85% किस्में भारत में पाई जाती हैं।
5: ने एक मुर्गी से एक हैचिंग पीरियड बोलता है, लेइंग पीरियड बोलता है, उसी लेइंग पीरियड में कम से कम 200 से 250 अंडा निकाल सकते हैं। अगर 200 से 250 अंडा एक मुर्गी निकालते हैं तो हमने ये देखा गया है जो 200 मुर्गी से कम सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपया उनकी किसान की आमदनी होती है। तो अगर 4 लाख से 5 लाख रुपया साल में आमदनी होती है तो लगभग आप देख लीजिए उनसे कितना महीने में कितना अंडा आ रहा है। और ये जो आमदनी होती है ये रोज का आमदनी है।
3: कौन सी किस्म आपको चुननी है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस उद्देश्य से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अंडा उत्पादन के लिए अलग किस्में चुननी होंगी और मांस उत्पादन के लिए अलग। अंडे देने वाली मुर्गी 20 हफ्ते में ही आमदनी देना शुरू कर देती है। 20 हफ्तों तक करीब 200 रुपए प्रति मुर्गी की लागत आएगी। इसके बाद करीब 2.5 रुपए हर रोज का खर्च एक मुर्गी पर करना होगा। आप घर पर दाना तैयार करके लागत 20% तक घटा सकते हैं।
2: देखा जाए तो अभी हम बहुत अच्छे मुनाफे में है। हमारे पास जो अभी हम जैसे हमारा साइकिल कैसे चलती है वो है कि हम बच्चे पालते हैं, बच्चे में से जो मुर्गियां होती है मुर्गी हम रखते हैं अंडे की प्रोडक्शन के लिए और मुर्गा बेच देते हैं। मुर्गा तो जल्दी निकल जाता है, तो हम क्या करते हैं लोगों को हम इसी बहाने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से मुर्गियां खरीदते हमारी खुद की रहती, मुर्गे खरीदते और हर महीने मुर्गा बेच देते। तो हम हर महीने पूरे हिंदुस्तान से कम 200 से 500 मुर्गे मंगा के बेचते रहते हैं पूरी दिल्ली एनसीआर में। तो ऐसे हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है, हमारी मुर्गी की प्रोडक्शन भी चलती रहती है और दूसरे किसान भाइयों की भी हम मदद कर देते हैं।
3: सर्दियों में अंडे की खपत ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, इसलिए चूजे ऐसे समय पर खरीदें जिससे सर्दियों के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा अंडे मिल सकें।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्रकृति में हमेशा से बदलाव आते रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण फसलों में और जीव जंतुओं में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कैसे हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, बदलते वातावरण में कैसे हम हमारे पशुओं को, हमारे चूजों को वातानुकूलित रख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखकर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
3: मुर्गी पालन के लिए आपको चूजे हैचरी से लेने होंगे, वहां से सिर्फ एक दिन के चूजे दिए जाते हैं। 6 हफ्तों तक इन्हें अलग आवास में रखेंगे, ये आवास चारों तरफ से बंद हो ताकि बाहर की हवा अंदर न जाने पाए। 6 हफ्ते बाद ग्रोअर स्टेज शुरू हो जाएगी। अब चूजों को दूसरे आवास में ले जाएंगे। याद रहे कि हर मुर्गी को 1 से 1.5 वर्ग फुट की जगह चाहिए, यानी अगर आप 1000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो 1000 से 1500 वर्ग फुट के आवास की जरूरत पड़ेगी। सर्दियों में खिड़कियों को बोरों से ढककर रखना होगा और अंदर का तापमान बढ़ाने के लिए उपाय करने होंगे, जबकि गर्मियों में उन्हें अधिक तापमान से बचाने के लिए पंखे या कूलर का इंतजाम करना होगा। गर्मियों में दाने की खपत काफी कम हो जाती है, उसे बढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे या 5 बजे से ही दाना खिलाना शुरू कर दें। उसके बाद 1-2 बजे तक दाना न दें। गर्मियों में पानी ज्यादा पिलाएं। बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें ताकि बारिश का पानी अंदर न जाने पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन करनी होगी। ध्यान रहे बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अंडों के लिए आवास में बक्से जरूर रखें। हर 10 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 1 बक्से की जरूरत होगी। मुर्गी इसी में जाकर अंडा देगी। मुर्गी की 3 स्टेज होती है, चूजे, ग्रोअर स्टेज और परिपक्व मुर्गी। तीनों के लिए अलग अलग तरह के दाने की जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के दाने में कम से कम 17% प्रोटीन और 27 से 28% कैलोरी होनी चाहिए, साथ ही 3 से 4% कैल्शियम भी हो, वरना अंडों के छिलके बहुत पतले रह जाएंगे।
5: जो भी किसान भाई मुर्गी को पालेंगे उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करके पाले। और मुर्गी के लिए सारे टीका उपलब्ध है, सारे के सारे मुर्गी को सब टीका लगा सकते हैं और वो सरकारी में भी उपलब्ध है और बाहर से भी खरीद सकते हैं। वो खरीद के सारे टीका लगा लीजिए। मान लीजिए आपकी छोटे उम्र से गांबोरो लगा लीजिए, रानीखेत लगा लीजिए, उसमें रानीखेत दो बार लगाते हैं, और उसमें हमने फाउल कॉलेरा लगा लीजिए, फाउल टाइफाइड लगा लीजिए, जो सारे बीमारी। और हमने जो किसान को बोलते हैं, आप देसी के साथ जो विदेशी वैरायटी का जो क्रॉस होता है उसको पालिए, तो उसके रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है।
3: मुर्गियों में आमतौर पर रानीखेत, ब्रुसेल संक्रामक रोग और मैरेक्स जैसी बीमारियां लग सकती हैं। कभी कभी फाउल पॉक्स भी लग जाती है। आजकल रेबिल इन्फ्लुएंजा की भी शिकायत मिलने लगी है। सभी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये टीके 2-3 बार लगाने होंगे। टीके सही वक्त पर लगवाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं होगा। वैसे हैचरी से मैरेक्स और रानीखेत का टीका लगाकर ही आता है। हाँ, कुछ हैचरी सिर्फ मैरेक्स का ही टीका लगाकर देती हैं। ऐसी स्थिति में रानीखेत का टीका 2 से 3 दिन बाद आपको अपने फार्म पर लगवाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 अंडे पर 50 पैसे से 1 रुपए तक का फायदा मिलता है। इस हिसाब से 1000 मुर्गियों से हर महीने 20,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालकों को लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है, इसमें कुक्कुट पालन के लिए भी कई घटक शामिल किए गए हैं। खासकर ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए मुर्गी का आवास, आहार, दवाई और जरूरी यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य और व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए जिला प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज आपने मुर्गी पालन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। मुर्गी पालन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, साथ ही हमें मुर्गियों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन से टीके लगाने चाहिए, समय समय पर क्या खाना पानी देना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अगर आप कड़कनाथ मुर्गी लेना चाहते हैं या कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे लेना चाहते हैं, तो आप कल्लीपुरा के अरविंद जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8770939905। किसान साथियों, आप उन्हें कॉल करके या फिर उनके घर जाकर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के साथ।

0: हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम के कलाकार हैं अजय अनंत पनगंती जी। अजय जी पुणे से हैं, बाकी सारी जानकारी इन्हीं से सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका जन्म स्थान क्या है, आप कहां पैदा हुए थे, उस जगह के बारे में हमें कुछ बताइए जिससे हमें पता चले कि आपकी आवाज में ये सुरूर किस जगह से आया है।
1: मेरा जन्म स्थान पुणे है। पुणे के बारे में कुछ रोचक जानकारी अगर दी जाए तो किसी जमाने में ये साइकिल का शहर हुआ करता था। काफी मात्रा में साइकिल, कहा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा साइकिल पुणे में ही थे। फिर बाद में टू व्हीलर का जमाना आया, टू व्हीलर की संख्या भी काफी हो गई, शायद टू व्हीलर भी ज्यादा ही थे पुणे में, है अभी भी। कार की संख्या भी काफी बढ़ी हुई है पुणे में।
0: तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को अजय जी के गाए हुए इस सुरीले से गीत से।

0: तो अभी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या कुछ रोचक है वो बताइए।
1: अभी मैं पुणे में रहता हूँ, मेरा जन्म स्थान कर्म स्थान यही है। और कुछ जानकारी दी जाए तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गढ़ किले फोर्ट जिसे हम कहते हैं वो आते हैं, जो हमारे वंदनीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। और भी बहुत सारे रोचक जानकारी है, अभी जिसे वर्णन किया जाए तो काफी समय लग जाए।
0: तो फिर चलिए दोस्तों, सुनते हैं इनकी आवाज में एक और गीत।

0: आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं, व्यवसाय में हैं या नौकरी में हैं, जॉब में हैं और कब से हैं?
1: हमारे फैमिली का कला क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान रहा है। धातु से जुड़े हुए काफी सारे कलाकृतियों का निर्माण हमारे यहाँ से हुआ है। फिलहाल हम उसी से जुड़े हुए ट्रॉफीज, मेमेंटोस, कप, शील्ड्स आदि मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए है। मैं इसी फैमिली से 7 जनरेशन से हूँ, 7वीं पीढ़ी है मेरी।
0: तो फिर चलिए दोस्तों, सुनते हैं इनकी आवाज में एक और गीत।

0: आपको गाने का शौक कब से हुआ? मतलब आपको कब लगा कि आप गाना गाना चाहते हैं, गाना गाना अच्छा लगता है, लोग भी आपकी तारीफ करते हैं? कब महसूस हुआ आपको ऐसा और फिर आप चल निकले?
1: जैसे कि कला से हम बचपन से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही संगीत का भी, संगीत से भी लगाव रहा है।
0: तो लीजिए दोस्तों, हो जाए इन्हीं की आवाज का एक और सुरीला नगमा।

0: आपको संगीत में क्या क्या पसंद है, म्यूजिक में क्या पसंद है, किस तरह के गाने पसंद हैं, किस तरह की रचनाएं पसंद हैं, किस तरह का संगीत आपको पसंद है?
1: संगीत में बचपन से ही फिल्मी गाने पसंद करते आया हूँ और उसी को गाना उसी को गुनगुनाते रहना बचपन से ये आदत लग गई। वैसे मैंने तबला सीखा हुआ है, गाना तो मैं सीख नहीं पाया, गाने सीखने की काफी इच्छा थी, लेकिन जितना भी सुन सुन के समझ पाया वही गा लेता हूँ।
0: तो फिर चलिए दोस्तों, सुनते हैं इनकी आवाज में एक और गीत।

0: आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन है या गायिका कौन है, और वैसा क्यों क्यों पसंद करते हैं आप उन्हें?
1: वैसे तो सभी गायक मुझे पसंद है, सभी गायकों के गायिकाओं के गाने सुनते रहता हूँ, लेकिन मेरे फेवरेट बचपन से रहे हमारे सभी के प्यारे किशोर दा, किशोर कुमार जी, और उन्हीं के गाने खास करके मैं गाता हूँ।
0: तो फिर चलिए दोस्तों, सुनते हैं इनकी आवाज में एक और गीत।

0: और सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत या रचना कौन सी है आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: हमारे सभी के पसंदीदा गायक, प्यारे गायक किशोर दा, इन्हीं को ज्यादा सुनते आया हूँ, उन्हीं के गाने ज्यादा पसंद करता हूँ और उन्हीं के गाने ज्यादा करके गाता हूँ। उनके लगभग सभी गाने मैं पसंद करता हूँ, उनमें से एक गाना के दो बोल आपको सुनाना चाहता हूँ।

0: वैसे तो किशोरदा के काफी सारे गाने मैं पसंद करता हूँ, लेकिन अभी जो गाना मैंने सुनाया बस वो एक गाना ऐसा कि जिसमें जीवन के बारे में का सार पूरा आ जाता है उसमें।
1: तो लीजिए दोस्तों, हो जाए इन्हीं की आवाज का एक और सुरीला नगमा।

0: क्या हैं? जब भी आपको वक्त मिलता है तो आप क्या करते हैं उस वक्त में?
1: हॉबीज के बारे में बताया जाए तो काफी सारे हॉबीज मेरे हैं। उसमें से अगर खास करके दो का नाम लिया जाए तो रीडिंग मैं पसंद करता हूँ, पढ़ना, और घूमना मुझे बहुत पसंद है, वो भी खास करके बाइक पे, मोटरसाइकिल पे। और इसी शौक के वजह से मैंने ऑल इंडिया सोलो एक्सपीडिशन किया है मोटरसाइकिल पे। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम भी है मेरा। ये 1998 में मैंने किया हुआ है रिकॉर्ड।
0: बेहतरीन दोस्तों, बेहतरीन। तो हमारे अजय जी रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। इन्हें बाइक पर पूरी दुनिया घूमने का शौक है। आइए सुनते हैं इसी शौकीन व्यक्ति की आवाज का एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुनने वाले आपके जैसे सिंगर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें उत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि गाना गाना है, अगर वो भी अगर फिल्मी गाना गाते हैं, तो जो सिंगर का आप गाना गाना चाहते हैं, उसे कम से कम 50-100 बार सुनिए, गाने को समझिए, जब जाके आप उसे ठीक तरह से गा पाओगे।

0: हमारे श्रोतागण जो आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने आपका प्रोग्राम आज सुना है, जिन्होंने आपकी गायकी आज सुनी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें?
1: सभी सुनने वालों को इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा संगीत सुनते रहिए। संगीत जीवन का एक ऐसा अंग है कि जब कभी आप सुनते हो तो आपको आनंद ही मिलेगा।
0: तो लीजिए दोस्तों, हो जाए इन्हीं की आवाज का एक और सुरीला नगमा।

0: आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे श्रोताओं को आपके गीत सुनकर जरूर बहुत मजा आया होगा, और मुझे तो जाहिर सी बात है आपसे बातचीत करके भी बहुत मजा आया। मुझे उम्मीद है हम लोगों की मुलाकात फिर होगी और आपके गाने आपके गीत हम सुनते ही रहेंगे। धन्यवाद।
1: हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप सभी से जुड़कर आपके इस प्रोग्राम में आकर। धन्यवाद। थैंक यू।

तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए।